मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में प्रातः के 5:57 होने जा रहे हैं। आरंभ हो रही हमारी आज की सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात

0: बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में मिट्टी की जांच का महत्व विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, मिट्टी में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हों तभी हमारी फसल बिल्कुल स्वस्थ एवं अधिक उपज देने वाली हो सकती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और वह बीमार ना होने पाए, इसीलिए हम मिट्टी की जांच करवाते हैं ताकि यह निश्चित हो जाए कि जमीन में किस तरह की कमी है। मिट्टी की जाँच के लिए सबसे पहले जिस खेत की मिट्टी की जाँच करवानी हो उससे नमूना लेते हैं और फिर इस सैंपल को जांच के लिए भेजा जाता है। मिट्टी की जांच का सबसे उपयुक्त समय क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। मिट्टी की जांच कराने का सबसे अच्छा समय फसल काटने के बाद या बुआई से पहले है, लेकिन यदि परती या ऊसर जमीन है तो मिट्टी का नमूना किसी भी समय ले सकते हैं। वैसे इसके लिए मार्च से लेकर के जून तक का समय उपयुक्त रहता है। अगर खेत में फसलें खड़ी हैं तो फसल की दो लाइनों के बीच से भी नमूना ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि बुआई के कम 30 दिन पहले आप नमूना जांच के लिए अवश्य भेज दें ताकि समय से रिपोर्ट प्राप्त हो जाए और उस अनुसार आप उर्वरकों का प्रयोग करें। ये तो कुछ बातें हुई कि कब मिट्टी का नमूना भेजना है, और अब कुछ मुख्य बातें नमूना लिया कैसे जाए। चूंकि मिट्टी के परीक्षण की सफलता मिट्टी के नमूना की प्रकृति पर निर्भर करती है, अतः यह आवश्यक है कि जिस खेत की मिट्टी का परीक्षण करना है उसका ऐसा नमूना एकत्र किया जाए जिसमें उस पूरे खेत की प्रमुख किस्म की मिट्टी का अंश आ जाए। अब बात यह आती है कि किसी खेत से कितने नमूने लिए जाएं।

0: यद्यपि नमूनों की संख्या, किसानों की जोतों के आकार, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की क्षमता तथा विशेष प्रकार की मिट्टी की समस्याओं पर निर्भर करती है, फिर भी मोटे तौर पर 5 एकड़ तक के खेत से हमें एक सैंपल ही लेना चाहिए। फसलों की जड़ें प्रायः मिट्टी में 6 इंच की गहराई में ही होती हैं, अतः ज़्यादातर नमूने इसी 6 इंच की गहराई में ही लिए जाते हैं। हाँ, यदि गन्ने का खेत है या ऊसर जमीन है तो 9 इंच की गहराई तक तथा वृक्षारोपण के लिए आवश्यकता अनुसार 1 मीटर की विभिन्न गहराई तक, जैसे 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर की गहराई तक भी नमूना ले सकते हैं। पहले जिस खेत का नमूना लेना हो उसे ढाल, संरचना, रंग को ध्यान में रखकर अलग अलग खंडों में बांट लेते हैं तथा वहां पर प्रत्येक खंड से अलग अलग मिट्टी लेना चाहिए। जहां की मिट्टी लेना हो वहां की घास फूस साफ करके 6 इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा एवं 6 इंच गहरा गड्ढा खोदना चाहिए और उसकी मिट्टी अलग कर देनी चाहिए। फिर इस गड्ढे की लंबवत दीवारों से 1 इंच मोटी परत खुरपी से काट लेते हैं और इस प्रकार इस मिट्टी को ले लेते हैं। इसी प्रकार 8-10 स्थानों की मिट्टी पॉलीथीन पर रखकर मिला लेते हैं और फिर इसे गोलाई में फैलाकर 4 हिस्सों में बांटकर आमने सामने के 2 हिस्सों को लेकर बाकी मिट्टी को फेंक देते हैं। अब इस मिट्टी को फिर गोलाई में फैलाकर 4 हिस्से में बांटकर आमने सामने की आधी मिट्टी ले लेते हैं। ये क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि मिट्टी 500 ग्राम तक नहीं रह जाती। अब यही 500 ग्राम मिट्टी ही नमूना है। इसे पॉलीथीन की थैली में भरकर कपड़े की थैली में बंद कर देते हैं। फिर पहचान के लिए थैली के अंदर एवं थैली के ऊपर अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम, विकास खंड, जनपद, खेत का नंबर तथा बोई जाने वाली फसल का नाम लिखना चाहिए और जांच हेतु जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। नमूना लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि खेत की मिट्टी गीली ना हो। नमूना लेने की जगह कंपोस्ट या खाद के ढेर नहीं होने चाहिए तथा मेड़ के पास से भी मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। सड़क, नाली तथा पेड़ के पास से भी नमूना नहीं लेना चाहिए। मिट्टी की जांच के बाद उसकी संस्तुतियों के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ती है तथा फालतू उर्वरक देने से बचा जा सकता है। संतुलित उर्वरक देने से पौधों की बढ़वार सुचारू रूप से होती है, उसमें किसी प्रकार की बीमारी आदि नहीं होती तथा फसलों से अच्छी पैदावार मिलती है।
1: मिट्टी की जांच का महत्व विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जब हनुमान जी भगवान राम से मिलते हैं, उनके समर्पित अनुयायी बन जाते हैं और अपना पूरा जीवन राम के चरणों में उनके नाम का जप करते हुए, भक्ति करते हुए उनके साथ बिताने का संकल्प लेते हैं।

कृष्ण राधा के पास नहीं थे, फिर भी राधा कभी अकेली नहीं थी। राधा का नाम लेते ही कृष्ण का ध्यान आता है, और कृष्ण की बात हो तो राधा बिना अधूरी लगती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। गायक कलाकार थे हरिओम शरण, नितिन मुकेश और चंद्रु आत्मा। आराधना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय है चरित्र बल।
1: मनुष्य के पास अनेक प्रकार के बल होते हैं, धन बल, जन बल, बाहुबल, ज्ञान बल, विद्या बल, राजबल इत्यादि। इन सब की अपेक्षा चरित्र बल सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रशंसनीय है, क्योंकि चरित्र के बिना ये सभी बल व्यर्थ हैं। चरित्र के द्वारा ही मनुष्य इन सभी बलों का अपने जीवन में उचित एवं न्याय संगत उपयोग कर सकता है। चरित्र के बल से वो अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर लेता है, विपत्तियों के बीच से वो अपना मार्ग निकाल लेता है। चरित्र के प्रकाश से पथ का अंधकार अपगत हो जाता है तथा चरित्रमान के सामने परिस्थितियां अपने घुटने टेक देती हैं। सच्चरित्र व्यक्ति के पार्थिव शरीर को काल भले ही समाप्त कर दे, लेकिन उसका यशः शरीर उस वसुधा पर हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाता है। जन जन कंठ से उसकी चरित्र गाथा बड़े आदर से गाई जाती है। धन से क्षीण व्यक्ति किसी प्रकार क्षीण नहीं होता, किंतु चरित्र से क्षीण व्यक्ति तो नष्ट हो जाता है। एक बड़ी ही प्रसिद्ध अंग्रेजी सदुक्ति का तात्पर्य है कि यदि धन नष्ट हो गया तो समझना चाहिए कि कुछ नहीं नष्ट हुआ, यदि स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो समझना चाहिए कि कुछ नष्ट हो गया, और यदि चरित्र नष्ट हो गया तो समझना चाहिए कि सर्वस्व नष्ट हो गया। हमारे देश का इतिहास चरित्रवानों के जीवन

0: ना दर्श से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने आचरण की शुद्धता से तथा चरित्र बल से विश्व में देश का मस्तक तो समुन्नत किया ही, अपनी आगामी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय आदर्श मानदंड बन गए। तपस्वी महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से पूछा कि इस लोक में इस समय गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, दृढ़व्रत तथा चरित्रवान कौन है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे बड़ा कौतूहल है, आपके सिवा दूसरा कौन जान सकता है? त्रिलोकज्ञ नारद ने कहा कि इस समय इस लोक में आपके द्वारा बताए गुणों तथा अन्य अनेक विशेषताओं से युक्त राम हैं। वस्तुतः मुनि श्रेष्ठ ने जैसा बताया वैसे चरित्र बल संपन्न वे थे, यही कारण है कि राम आज भी सारे संसार के लिए सच्चरित्रता के प्रतीक बने हुए हैं। सारा संसार उन्हें पूछता है। भरत का चरित्र त्याग, बलिदान तथा भ्रातृ प्रेम का निदर्शन बना है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय इत्यादि महापुरुषों की चारित्रिक विशेषताओं पर भारतीय जनता आज भी गर्व गौरव का अनुभव करती है। इन्होंने अपने चरित्र बल से असंभव को संभव कर दिखाया तथा यह प्रमाणित कर दिया कि चरित्र बल ही सुख एवं समृद्धि का सर्वोत्तम साधन है। राष्ट्र का समष्टि चरित्र ही उसके सर्वविध उत्कर्ष का सोपान है। सच्चरित्र व्यक्ति अपना कल्याण करता हुआ देश और समाज का भी कल्याण करता है। दुष्चरित्र व्यक्ति स्वयं तो नष्ट होता ही है, अपने पूरे परिवेश को भी ले डूबता है। यही कारण है कि हमारे महान नेताओं ने कूटनीतिक चातुर्य को बड़ा नहीं समझा, बुद्धिबल, सैन्य बल या धन बल को बड़ा नहीं माना, चरित्र बल को ही महत्व दिया, जिससे देश स्वातंत्र्य तथा उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। अतः प्रत्येक व्यक्ति को वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायात याति च, अर्थात चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, का अनुपालन करते हुए चरित्र बल के उत्थान का प्राणपण से प्रयत्न करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु, आज का विषय था चरित्र बल। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। गर्मी के मौसम में होने वाले रोग और होम्योपैथिक उपचार, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी।
2: आप सभी को नमस्कार जी। विगत ये 3 वर्षों से मौसम का तापमान जो गर्मियों में देखा जा रहा है निरंतर बढ़त पर ही है, तो इस तापमान में, बढ़ते हुए तापमान में मूलतः जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारे जो वर्ष होते हैं वो अलग अलग सीजन में अलग अलग बीमारियां होती हैं। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है ये मौसम की बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए और जो गर्मी बढ़ रही है इसमें कुछ बीमारियां बहुत जल्दी आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए। मूलतः अगर देखा जाए तो इस पूरे गर्मी के सीजन में 4-5 बीमारी ऐसी है जो बहुत ही कॉमन है, जो वर्षों से चली आती हैं, ज्यादा हीट की वजह से, ज्यादा गर्मी की वजह से। तो ऐसी 4-5 बीमारियां हैं जिसे सबसे पहले जो है आपका है वो हीट स्ट्रोक है। गर्मी जैसे 43 से ऊपर तापमान जाता है, 44-45 के बाद, तो सदन जो वो हीट स्ट्रोक है उसमें ज्यादातर हमारे युवा, हमारे गांव में काम करने वाले किसान, तमाम ऐसे श्रमजीवी जो अपना खेत खलिहान में काम कर रहे हैं या बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग ज्यादा उससे पीड़ित होते हैं। तो हीट स्ट्रोक का सबसे पहला लक्षण है डिजीनेस। कोई भी व्यक्ति है अचानक उसको चक्कर, घुमटा आ रहा है, गिर बेहोश भी हो सकता है, गिर भी सकता है, इनफेक्ट उसकी

0: मृत्यु भी हो सकती है। तो हीट स्ट्रोक एक बहुत बड़ा कारण है गर्मियों में होने वाले मृत्यु के लिए। इससे बचने के लिए हमेशा अपने आप को छांव में रखें, अपने आप को ठंडा रखें और वातावरण के अनुकूल रखें। सर्वप्रथम हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आजकल विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हर जगह पेड़ पौधे हैं। जहां जी बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए ज्यादातर घर में रहने वाले व्यक्ति लू से शिकार नहीं होते हैं, बाहर समानता जो बाहर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, मैंने बताया कि श्रमजीवी हैं, रिक्शा चलाने वाले, हमारे खेतों में काम करने वाले किसान और तमाम ऐसे मजदूर जो बाहर खुली छत के नीचे जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा शिकार होते हैं। तो लू से बचने के लिए सबसे जरूरी यह है कि जो थपेड़े आते हैं लू के, जो गर्मी के, उससे बचना जरूरी है। तो पेड़ की छांव में जब भी ऐसा कभी लगे कि शरीर बहुत गर्म हो रहा है, हाइड्रोथर्मिया कंडीशन हो, तो उस समय तत्काल जो है किसी छांव में आ जाए। पेड़ की छांव सबसे अच्छी है, अगर नहीं है तो घर के अंदर आ जाए किसी कमरे में, ठंडे कमरे में, कूलर के नीचे, एसी के नीचे, और अपने आप को पूरा हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि शरीर में अगर पानी की मात्रा पर्याप्त रहेगी तो लू लगने का चांस काफी कम रहेगा। तो कोशिश ये की जाती है लू से बचने के लिए कि सबसे ज्यादा आप शरीर में लिक्विड पदार्थ दिन भर खाएं, फलों का सेवन करें, कोशिश करें कि कैफिनेटेड या गर्म चाय या कॉफी से बचें। तो आज के समय में गर्मियों में भी हमारे पास रसेदार फल हैं, जैसे कि आम आएंगे, ये पपीते हैं, संतरे हैं, आपके ये तरबूज है, खरबूज है, तो इन फलों का सेवन करने से शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। शरीर के अंदर हमारे जो पानी की जो कमी होती है उसी की वजह से ज्यादातर दिक्कतें आती हैं और लोगों की समस्याएं बढ़ती हैं। तो लू से बचने के लिए हमको ऐसे उपाय करने पड़ेंगे। नहीं है विद्यालय से निकलते समय कोशिश ये करें कि छाते का उपयोग करें, गमछे का उपयोग करें, इससे हम लोग हीट से बच सकते हैं। हमेशा कोशिश ये करें, कार अगर आप घर के अंदर भी हैं 10 से 12 ग्लास पानी अवश्य पिए। अगर बाहर है, ज्यादा धूप में काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आपके काम हो, हर एक आधे आधे घंटे, एक घंटे पे निरंतर पानी पीते रहें, उसकी कोई सीमा नहीं है। जितना पानी पियेंगे उतना आप हाइड्रेटेड रहेंगे। तो कोशिश ये करना चाहिए जो व्यक्ति बाहर है उनको हर आधे एक घंटे पे निरंतर पानी पीते रहे, क्योंकि हम जब बाहर रहते हैं गर्मी के प्रभाव से शरीर के अंदर पसीना होता है, पसीने से हमारा सोडियम भी निकलता है और पानी तमाम शरीर के अंदर का जो हमारा पानी होता है वो निकलता रहता है वाष्प के रूप में। तो ऐसे समय में जितना भी पसीना निकल रहा उस अनुपात में हमको पानी पीना चाहिए। और एक बहुत आवश्यक चीज है, आमतौर पर लोग गर्मियों में भी कपड़े काफी चुस्त पहनते हैं, तो कोशिश ये करना चाहिए कि गर्मियों में ढीले कपड़े पहने। ढीले कपड़े पहनने से पसीने कम होंगे, तो पसीना कम होगा तो जो वाटर का जो शरीर के अंदर से हमारा जो निकलता है पसीना, वो जो पानी का एक रूप है, तो बचत होगी। तो कोशिश ये करना चाहिए कि लूज वियर पहने और सूती कपड़ों का प्रयोग करें, जिससे हम लू से भी बच सकते हैं और अपने पसीने से भी बच सकते हैं। धन्यवाद।
1: गर्मी के मौसम में होने वाले रोग और होम्योपैथिक उपचार, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है।

श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है। राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

अभी आप सुन रहे थे श्रीराम चरितमानस से संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में आज हम आपको सुनवाएंगे विदुषी किशोरी अमोनकर का गायन रात्रि 10:30 पर, सुबह 7:31 पर और दोपहर 12:45 पर रवि कुमार प्रजापति का बांसुरी वादन। खेल दर्पण कार्यक्रम होगा रात 10 बजे से हमारे लखनऊ केंद्र से।

गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम होगा अंजुमन रात 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रसमाधुरी रात 8:15 पर और रसरंग का समय रहेगा शाम 7:31 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा रात 8 बजे मनहर उदास की आवाज़ में गजल और दोपहर 12:30 पर चारुलता मुखर्जी के स्वर में भजन।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा कृषि जगत शाम 6:30 पर। अन्य कार्यक्रमों के अलावा किसान भाई सुनेंगे मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि विषय पर डॉक्टर योगेश कुमार यादव से सतीश कुमार यादव की बातचीत। अलावा इसके राजकुमार तिवारी के स्वर में लोकगीत भी होगा। इन्हीं के गाए हुए लोकगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 1:45 पर और सुबह 9:50 पर भी।

युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। शाम 5 बजे आप सुनेंगे धरती के गीत।

सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड, ये कार्यक्रम होगा दिन 2:30 पर। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा अंगनैया दोपहर 1:15 पर। गीत संगीत के अलावा महिलाएं सुनेंगी स्वयं सहायता समूह और रोजगार के अवसर विषय पर प्रिया सिंह से बातचीत।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा दोपहर 12 बजे। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम होगा दिन 11 बजे से। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा मधुरिमा सुबह 8:45 पर। और अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोक्तवान यत् केंद्र प्रशासनस्य निरंतर प्रयास ही भारतम पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः। तेन अनपेक्षित विदेश यात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां

हेलो हाय नमस्कारम सुप्रभातम गुड मॉर्निंग बनारस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मस्त जबरदस्त और चकाचकना। हाँ जी, मैं भी आपकी आज की मॉर्निंग साथी शुचि एकदम मस्त और बढ़िया हूँ। दोस्तों, ये मई का महीना ऐसे शुरू हुआ था जैसे लग रहा था कि कैलेंडर से पन्ने आगे बढ़ गए और सावन का पन्ना खोल दिया हो भगवान ने। हवा में ठंडक, आसमान में बादलों की हल्की शरारत और गंगा किनारे बनारस अपनी उसी पुरानी मुस्कान के साथ जाग रहा है जैसे। मगर ये बताइए कि आपकी सुबह हुई या नहीं? सूरज भगवान ने आपके दरवाजे पे दस्तक दी या नहीं? अभी भी अलार्म से बातचीत चल रही है कि उठूं या नहीं, या फिर 5 मिनट और सो दूं? देखिए, 5 मिनट में सुबह के 7 बज गए हैं, तो उठ जाइए जनाब, क्योंकि बज गए हैं सुबह के 7 और शुरू हो गया है आपका फेवरेट और नंबर 1 मॉर्निंग शो द वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस।

हाँ जी दोस्तों, जाग गए हैं तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आजकल हम बात कर रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस में अपने बनारस के घाटों की, है ना दोस्तों। बनारस जहाँ हर घाट सिर्फ सीढ़ियों का सिलसिला नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और कहानियों का एक जीवंत दस्तावेज है। इसी कड़ी में आज हम रुख करते हैं उस घाट की ओर जिसकी पहचान सिर्फ गंगा किनारे होने से नहीं बल्कि उसके शौर्य, संघर्ष और इतिहास से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं

एक ऐसा घाट जहां गंगा की लहरों के साथ साथ इतिहास की गूंज भी सुनाई देती है। ये घाट काशी के उन खास घाटों में से एक है जहां सिर्फ पूजा और शांति ही नहीं बल्कि वीरता और संघर्ष की कहानियां बसी हुई हैं। यहाँ स्थित किला आज भी उस दौर का साक्षी है जब सत्ता, स्वाभिमान और संघर्ष की एक बड़ी कहानी यहीं लिखी गई थी। तो आइए घाटों की इस श्रृंखला में आज जानते हैं चेत सिंह घाट का इतिहास, उसकी अनकही कहानियां और वो प्रसंग जिसने इसे काशी के सबसे विशिष्ट घाटों में शामिल कर दिया। चेत सिंह घाट का निर्माण काशी के तत्कालीन राजा बलवंत सिंह द्वारा किया गया था। इस घाट के साथ ही एक विशाल किले का भी निर्माण हुआ जिसे चेत सिंह किला कहा जाता है। ये किला राजा चेत सिंह का निवास स्थान था। सन 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के आदेश पर राजा चेत सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों की एक विशाल सेना आई थी। इन अंग्रेजों और चेत सिंह के मध्य युद्ध हो गया जिसमें राजा चेत सिंह पराजित हो गया और उन्हें ये किला तत्काल छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के अंत में काशी के महाराज प्रभु नारायण सिंह ने अंग्रेजों से इस किले को पुनः प्राप्त किया। वर्तमान में ये किला महाराज काशीराज ट्रस्ट के अधीन है। इस किले के उत्तरी भाग को महाराजा प्रभु नारायण ने नागा और साधुओं को दान कर दिया। इसे शिवाला घाट के नाम से भी जाना जाता है। बात करें किले की संरचना और वास्तुकला की तो चेत सिंह घाट का किला अपने स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। इस किले के दक्षिणी भाग में गंगा तट से कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद विशाल दीवार है। उत्तरी भाग में किले का प्रवेश द्वार है जिसके ऊपरी भाग में दो बुर्ज हैं। किले के इसी हिस्से में 16वीं और 17वीं शताब्दी की राजपूत शैली में निर्मित 12 धरी का निर्माण भी हुआ जो अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए मशहूर है। इस किले में शिव मंदिर भी स्थित है। चेत सिंह घाट के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की बात करें तो 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ये घाट काशी के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में से एक था। काशी का प्रसिद्ध बुढ़वा मंगल मेला यहाँ हर साल चैत्र माह के पहले मंगलवार से शुरू होकर एक सप्ताह तक आयोजित किया जाता था। हालांकि पिछले कुछ दशकों से ये मेला रामनगर किले में आयोजित होता है और कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं इसे दशाश्वमेध घाट पर भी मनाती हैं। ये चेत सिंह घाट जिसे शिवाला घाट के नाम से भी जाना जाता है ये चार प्रमुख घाटों में भी विभक्त है। चेत सिंह घाट और निरंजनी घाट के मध्य में स्थित श्री स्वयंभू प्रकट सुप्त हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। स्वयंभू अर्थात स्वयं से प्रकट हुई हनुमान जी की मूर्ति यहाँ है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की ये मूर्ति प्राकृतिक है एवं हनुमान जी ने ही राजा चेत सिंह की रक्षा अंग्रेजों से की थी। चेत सिंह घाट काशी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका किला, मंदिर और स्थापत्य कला काशी की समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। ये घाट न केवल धार्मिक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है बल्कि इतिहास, कला और संस्कृति में रुचि रखने वाले यात्रियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर है। तो दोस्तों, जब भी आप बनारस आइए तो मैं यही कहूंगी कि आप जरूर से चेत सिंह घाट पर जाइए और यहाँ के चेत सिंह किला में स्थित मंदिर का और यहाँ की स्थापत्य कला, वास्तुकला का दर्शन जरूर करिए। हे बनारस, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। और अब चलिए दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के खास दिन की बात करते हैं। खास दिन इसलिए क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस

पर प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 12 मई को ये दिवस मनाया जाता है। क्रीमिया युद्ध के दौरान नाइटिंगेल ने घायल सैनिकों की देखभाल की और स्वच्छता की स्थिति में व्यापक सुधार किया, जिससे आज की पेशेवर नर्सिंग की नींव पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ICN ने विश्व भर में नर्सों के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करने की आवश्यकता को पहचानते हुए सन 1974 में इस दिवस की आधिकारिक रूप से स्थापना की। दोस्तों, नर्सें हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की रीढ़ होती हैं, जो जीवन बचाने, रोगियों के उपचार में सुधार लाने और समुदायों को सशक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। और इस वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। ये लेख नर्सों को उनकी पूरी क्षमता से काम करने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है। ये इस बात पर प्रकाश डालती है कि जब नर्सों को शिक्षा, नेतृत्व के अवसर और सहायक कार्य वातावरण के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है, तो वे समय पर प्रभावी और जीवन रक्षक देखभाल प्रदान करने में बेहतर रूप से सक्षम होती हैं। तो आप भी बनाइए आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और अब बनारस चलिए, अब रुक करते हैं अपने देश, दुनिया और शहर बनारस के हाल समाचार पर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट आस्था की गौरव गाथा के अवसर पर सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह काशी पहुंचे। उन्होंने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। सोमनाथ तथा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चकों ने एक साथ पूजन अर्चन सम्पन्न कराया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सोमनाथ से आए जल से काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया और बाबा के दरबार में माथा टेक कर लोक मंगल व प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में राज्यपाल को अंग वस्त्र और रुद्राक्ष की माला भेंट की। मंदिर प्रांगण में पीत वस्त्र धारण किए मंदिर के शास्त्रीगण बालिकाओं महिलाओं ने शंख ध्वनि तथा वाद्य यंत्र कलाकारों ने डमरू आदि के जरिए राज्यपाल व मुख्यमंत्री का स्वागत किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हर हर महादेव की जयकार संग हाथ जोड़कर श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने इससे पहले 6 मई को भी काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया था। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर, दयाशंकर मिश्र दयालु, हंसराज विश्वकर्मा, महापौर अशोक तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, नीलकंठ तिवारी, अवधेश सिंह, त्रिभुवन राम, सुनील पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य आदि की उपस्थिति रही। मातृ दिवस पर वृद्धाश्रम में छलका अपनापन। मातृ दिवस के अवसर पर सारनाथ स्थित वृद्धजन आवास वृद्धाश्रम में महिला भूमिहार समाज द्वारा भावनात्मक और सेवा भाव से ओतप्रोत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज की सदस्याओं ने वृद्ध माताओं के साथ समय बिताकर उन्हें सम्मान, स्नेह और अपनत्व का एहसास कराया। कार्यक्रम में माताओं के चेहरे पर मुस्कान लाने और उन्हें परिवार जैसा माहौल देने का प्रयास भी किया गया। महिला भूमिहार समाज की संस्थापिका डॉ राजलक्ष्मी राय ने कहा कि माँ ईश्वर का सबसे सुंदर स्वरूप होती है और मनुष्य जीवन भर मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि माँ केवल जन्म ही नहीं देती बल्कि वह अपने निस्वार्थ प्रेम, त्याग और संस्कारों से पूरे परिवार को संवारती है। जीवन के अंतिम पड़ाव में जब कई माताएं अपनों के साथ और स्नेह की कमी महसूस करती हैं, तब उनके बीच बैठकर कुछ पल बिताना ही सच्ची सेवा और मानवता है। कार्यक्रम के दौरान समाज के सदस्याओं ने वृद्ध माताओं को भोजन कराया और उनके साथ भजन कीर्तन कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वाराणसी को योगी कैबिनेट में मिला एक और प्रतिनिधित्व। MLC हंसराज विश्वकर्मा बने राज्य मंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में वाराणसी को एक और बड़े राजनीतिक सौगात मिली है। वाराणसी से जुड़े भाजपा MLC हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जनभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भूपेंद्र चौधरी, सोमेंद्र तोमर, अजीत पाल, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान और मनोज पांडे शामिल हैं। वहीं सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल को प्रमोशन भी मिला है। एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा के मंत्री बनने

से वाराणसी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व योगी सरकार में और मजबूत हुआ है। इससे पहले वाराणसी से अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर सरकार में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में तेजवीर सिंह यादव ने जीता रजत पदक। चिरेगांव क्षेत्र के विरलोरिक व्यायामशाला के पहलवान एवं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत तेजवीर सिंह यादव ने नंदिनी नगर गोंडा में आयोजित 3 दिवसीय ओपन सीनियर नेशनल फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने 70 किलोग्राम भार वर्ग में बेहतरीन मुकाबले खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की। तेजवीर की इस सफलता से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनकी उपलब्धि पर संजय सिंह बबलू, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के महासचिव सुरेश उपाध्याय, वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव सिंह रानू तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोरखनाथ यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। विकास प्राधिकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले फील्ड कर्मचारियों को सोमवार को सम्मानित किया गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने 5 जोन में कार्यरत फील्ड स्टाफ के कार्यों की समीक्षा करते हुए बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुल 8 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान अधिकारियों ने कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी जिम्मेदारी और सक्रियता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि प्राधिकरण की योजनाओं और व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से जमीन पर लागू करने में फील्ड स्टाफ की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की तत्परता, ईमानदारी और जिम्मेदारी पूर्ण कार्यशैली से न केवल विभागीय कार्यों में तेजी आती है, बल्कि आम जनता का प्रशासन पर भरोसा भी मजबूत होता है। सम्मानित कर्मचारियों को ये प्रशस्ति पत्र प्रवर्तन कार्यों, अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, नियमित क्षेत्रीय निरीक्षण और प्राधिकरण की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान उपाध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक नए मानचित्र आवेदन जमा कराए जाएं तथा आमजन, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को भी किसी भी प्रकार के अनावश्यक परेशानी न होने दी जाए। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं आज के दिन यानी 12 मई में क्या है खास।

सन 2002 में आज ही के दिन मिस्र, सीरिया और सऊदी अरब ने पश्चिम एशिया मामले में शांति समझौते की इच्छा जताई थी। बात करें आज जन्मे व्यक्तित्व की, तो सन 2002 में आज ही के दिन भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी का जन्म हुआ था। सन 1989 में आज ही के दिन भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शिखा पांडे का जन्म हुआ था। सन 1982 में आज ही के दिन भरत राजमुद्री लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश की ये 17वीं लोकसभा की सांसद थी। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। सन 1980 में आज ही के दिन भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता ऋषि सुनक का जन्म आज ही के दिन हुआ था। सन 1945 में भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता घनश्याम नायक का जन्म भी आज ही के दिन सन 1944 में हुआ था। पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल खिताब जीता, नंदू नाटेकर का जन्म आज ही के दिन सन 1933 में हुआ था। प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने हिंदू दर्शन पर अध्ययन किया, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का जन्म सन 1875 में आज ही के दिन हुआ था। और बात करें आज जिन्होंने हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, तो सन 2015 में बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार सुचित्रा भट्टाचार्य का निधन आज ही के दिन हुआ था। सन 1984 में भारत की कथक नृत्यांगना अलकनंदा का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। तो ये थी इतिहास में आज के दिन की खास बातें। और अब दोस्तों, हर बार की तरह अब समय हो गया है आप सब से टाटा बाय बाय करने का। मिलूंगी जल्दी आपसे कुछ और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
5: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
5: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और

0: पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: इस बीच केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुए मंत्री समूह की बैठक में यह जानकारी दी गई। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर सहित अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं।
2: सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है। सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसके पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं।
3: मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
4: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा।

0: नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अयोध्या में 2 दिवसीय श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभी कार्य 30 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में स्थित अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के 2 विशेषज्ञ अगले 3 वर्षों तक स्थानीय कर्मचारियों को संरक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे।
2: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने 2 अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं, लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
1: राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से कल जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
5: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
6: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रवि कुमार प्रजापति का बांसुरी वादन, राग है भैरव। आपके साथ तबले पर संगत की है ज्ञान स्वरूप मुखर्जी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रवि कुमार प्रजापति का बांसुरी पर बजाया राग भैरव। आपके साथ तबले पर संगत की थी ज्ञान स्वरूप मुखर्जी ने। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुने, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है।

0: संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज चार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
2: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की

0: सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
2: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमरीका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
4: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक।

0: के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
3: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होता है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
2: प्राइम मिनिस्टर सेड दैट इंडिया स्पेंड्स लाख्स ऑफ करोड़ रुपीस इन फॉरेन एक्सचेंज टू इंपोर्ट मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड द क्राइसिस हैज लेड टू स्टीप राइज इन इंपोर्टेड गुड्स इन severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
2: सीनियर बीजेपी लीडर हिमांता बिश्व शर्मा विल बी स्वॉन इन

0: to have a downside. They are alienating a large section of society, senior citizens who find it difficult to cope with evolving technology and changing time. Suvendu government begins to implement key pledges, notice the Asian Age. New Delhi, all set for first summit of International Big Cat Alliance in June, writes the Economic Times. And finally, the Beatles' first official London museum, called the Beatles at 3 Savile Row, is set to open next year in the Mayfair building, where the band recorded its final album and played its last gig, reports the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products and bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF, to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Domdom Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मग़रिबी एशिया के बहरान के पेश नज़र आवाम से ज़रे मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमराह चार वज़रा भी हलफ लेंगे, जिनमें बीजेपी के दो, एजीपी और बीपीएफ के एक एक वजीर होंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्यूनिसिपलिटी भर्ती घोटाले मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहिदा अरब इमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बामुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मग़रिबी एशिया के बहरान के दौरान ज़रे मुबादला बचाने के लिए आवाम से ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। कल शाम गुजरात के वडोदरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कोरोना के वक्त के तौर तरीकों जैसे घर से काम करने, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स, नीस पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल को दोबारा अपनाने की अपनी सबका अपील को दोहराया। दरामदात में कमी लाने और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इज्तमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम सभी को मिलकर मुल्क के वसाइल पर बोझ कम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
3: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
2: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत बैरूनी मुल्क से बहुत सी मसनूआत दरामद करने पर ज़रे मुबादला की मद में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि मौजूदा बहरान के बाईस दरामद होने वाली अशिया की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है और आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि इस बहरान के असरात मुल्क के शहरियों पर कम से कम पड़े।
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है।

0: कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
1: उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते, मुल्क के मुफाद में हर छोटा और बामानी कदम जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसों और कारपुलिंग को अपनाने के जरिए पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील का इरादा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालात के मामूल पर आने तक सोना खरीदने से गुरेज करने की भी अपील की। एक अहम सियासी और तारीखी पेशरफ्त के तहत हेमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी मुद्दत कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से आज हलफ लेंगे। वह आसाम की तारीख में लगातार दूसरी मरतबा इस ओहदे पर फाइज होने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर होंगे। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, डॉ शर्मा और उनकी वजारती कौंसिल को ओहदे और राजधारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के बतौर वजीर आला के अलावा वजारती कौंसिल के चार अराकीन भी आज हलफ लेंगे। ये चार काबिनी वजीर हैं रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दीगर कई मरकजी वजरा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वजराए आला शिरकत करेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब की मेजबानी के लिए गुवाहाटी के खानपाड़ा के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। तकरीब के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा को देखते हुए खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। कामरूप मेट्रो जिला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक और गाड़ियों की हसब मामूल आमोदरफ को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने मगरबी बंगाल हुकूमत के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साबिक वजीर सुजीत बसु को कोलकाता में जुनूबी दमदम म्यूनिसपल्टी भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी हुकाम के मुताबिक सुजीत बसु पर इल्जाम है कि उन्होंने साबिका टीएमसी हुकूमत के दौरान जुनूबी दमदम म्यूनिसपल्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर तकरूरी के लिए तकरीबन 150 उम्मीदवारों की सिफारिश माली फायदे हासिल करने के लिए की थी। उन्होंने बताया कि ईडी ने रिश्वत से हासिल शुदा आमदनी के बराह रास्त शवाहिद का सुराग लगाया है, जिनमें ऐसे फ्लैट्स शामिल हैं जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अफराद को म्यूनिसिपल नौकरियां दिलाने के एवज हासिल किए गए थे। तहकीकती एजेंसी ने उनके बैंक खातों में बड़ी मकदार में नकद रकम जमा होने की भी निशानदेही की है। सुजीत बसु को आज खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। ये थी खबरें। अब ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा जुमे से मुत्तहदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। ये दौरा हाल ही में तय पाने वाले भारत यूरोप यूनियन आजाद तजारती मुआहदे एफटीए के तनाजुर में यूरोप के साथ खासतौर पर तजारत और सरमायाकारी के शोबों में भारत की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम की है। जनाब ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे के ईरान के तजवीज को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज को मुस्तरद किए जाने के जिम्न में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरतेहाल का शिकार है। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई तजवीज को रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल करार दिया। व्हाइट हाउस में जच्चा की सेहत देखभाल से मुतालिक तकरीब में ट्रंप ने शुरका से कहा कि वो अपनी बातों को मुख्तसर करें क्योंकि उन्हें ईरान के मामले पर जनरलों के बड़े ग्रुप से तबादला ख्याल करना है। सदर ट्रंप को इतवार के रोज ईरानी तजवीज मौसूल हुई जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए जंग के खात्मे का कोई रास्ता निकल आएगा। इस जंग से तेल की आलमी सप्लाई के अहम समुद्री रास्ते

0: मौके पर मुनाकिदा सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की अटूट श्रद्धा की अलामत है और ये मंदिर हजारों बरसों से तहरीक का सरचश्मा रहा है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एक अहम खबर को नुमायां तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है कि मुल्क में हर तरह के ईंधन और तवानाई का वाफिर जखीरा मौजूद है, हुकूमत का बयान। इसी अखबार ने एक और अहम सुर्खी लगाई है, हुकूमत ने कहा कि वीवी जी रामजी एक्ट मूल भर के देही इलाकों में 1 जुलाई से नाफिज होगा।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र आवाम से ज़र मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा आज गुवाहाटी में आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्यूनिसपलिटी भर्ती घोटाला मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बमुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनाकिदा मर्दों के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहत जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरी माँ।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग है तो संपर्क करें
10: 0542227658,
11: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: दोस्तों, मधुरिमा कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी रेडियो सखी शेबा खातून। तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार और आदाब।

दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार हमें खुद पर यकीन करने की ज़रूरत पड़ती है। खुद को खुद पर यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं कर सकती हूँ। हिम्मत का हाथ थामना पड़ता है और यही तो आगे बढ़ने का तरीका है। जहाँ दुनिया को लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, वहीं अगर हमें खुद पर विश्वास हो कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।

दोस्तों कहते हैं ना कि हार मान लेना और हार जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। हार जाना खेलने के परिणाम को दिखाता है और हार मान लेना खेलने से पहले ही खुद को कमजोर मानकर फैसला सुना देना है।

0: बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अभी अलविदा मत कहो।

अभी और भी बातें आपसे करनी हैं, गाने भी सुनाने हैं। दोस्तों, अगर खुद पर यकीन हो तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। बात है सिर्फ खुद पर विश्वास करने की। उसके बाद चाहे जिंदगी में कितना ज्यादा अंधेरा क्यों ना हो, आप रोशनी ढूंढ ही लेंगे। अंधेरा चाहे कितना ही घना हो, आपके विश्वास से रोशनी जरूर आएगी और आपको सही रास्ता जरूर मिलेगा।

दोस्तों, विश्वास हर काम को आसान बना देता है। बड़े से बड़ा काम, बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। खुद पर विश्वास करिए।

से बेहतर बनाइए। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, आपके विश्वास और यकीन पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी।

दोस्तों, मधुरिमा कार्यक्रम में आज हमने जिन फिल्मों के गीतों को शामिल किया उनके नाम हैं शोर, यादगार, निकाह इम्तिहान और मिस्टर इंडिया।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मधुरिमा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
2: जिले में स्वगणना प्रक्रिया को नागरिकों का उत्साहपूर्ण समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस ऑनलाइन सुविधा के तहत लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से खुद ही जनगणना कर रहे हैं। अभियान के दूसरे दिन 2400 से ज्यादा नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना पूरी की, जिससे कुल संख्या बढ़कर लगभग 3200 तक पहुँच गई है। जबकि पहले दिन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों समेत 762 लोगों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की थी। ये ऑनलाइन व्यवस्था सरल, सुरक्षित और समय की बचत करने वाली है। नागरिक अपने मोबाइल नंबर के ओटीपी सत्यापन के बाद निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण कर परिवार से जुड़ी जानकारी भर सकते हैं। फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें आवास, परिवार और सामाजिक स्थिति से जुड़े लगभग 33 बिंदुओं की जानकारी मांगी जाती है। फॉर्म जमा होने के बाद नागरिक को एक विशेष SEID प्राप्त होती है, जिसे बाद में सत्यापन के दौरान जनगणना अधिकारी को दिखाना होगा। ये प्रक्रिया 21 मई तक जारी रहेगी और प्रशासन लगातार लोगों को स्वगणना के लिए प्रेरित कर रहा है। बेहतर शिक्षा और उन्नत भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरचंदपुर कला में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों के चेहरे उस समय खुशी से खिल उठे जब उनके मानदेय को बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने की घोषणा का जिक्र हुआ। समारोह का शुभारंभ मारेरा विधायक वीरेन सिंह लोधी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे शिक्षा मित्रों और अधिकारियों ने ध्यान पूर्वक सुना। विधायक वीरेन सिंह लोधी ने शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए। जिले में पोषण और बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने के लिए 3 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की तैयारी तेज कर दी गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को बेहतर वातावरण और सुविधाएं मिल सकें। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जलेसर क्षेत्र के कोसमा, बिचपुर और अवागढ़ के पुनहरा में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। जलेसर के दोनों केंद्रों पर लगभग 27,80,000 रुपए की लागत आएगी, जबकि पुनहरा केंद्र पर करीब 30,22,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र के लिए पहली किस्त के रूप में 10-10 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। इन केंद्रों में बेबी टॉयलेट, बाल अनुकूल शौचालय, मल्टीपर्पज हॉल, किचन शेड, स्टोर रूम और विस्तृत बरामदा जैसी सुविधाएं होंगी। बच्चों के खेलने और गतिविधियों के लिए आकर्षक लॉन भी विकसित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन मॉडल केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, महिलाओं में जागरूकता और किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। खरीफ सीजन से पहले किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग इस बार किसानों को धान की उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाली कई किस्मों के साथ उड़द का बीज भी 50% अनुदान पर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन बुकिंग और फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मनवीर सिंह ने बताया कि जिले के लिए 1,540 क्विंटल धान बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 552 क्विंटल धान बीज प्राप्त हो चुका है और बाकी बीज जल्द ही पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि उपलब्ध कराई जा रही धान की किस्में अधिक उत्पादन देने वाली, रोग प्रतिरोधी और बेहतर गुणवत्ता वाली हैं। विभाग ने किसानों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है, जिससे कि उन्हें योजना का लाभ आसानी से मिल सके। वीरंगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

0: की साइटोपैथोलॉजी लैब ने चिकित्सा क्षेत्र में एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। पैथोलॉजी टीम ने मरीज के हाथ में बनी सामान्य दिखाई देने वाली गांठ की जांच के दौरान फाइलेरिया के जीवित माइक्रोफाइलेरिया की पहचान की है। जांच के दौरान FNC तकनीक के माध्यम से फाइलेरिया के परजीवी की पुष्टि की गई। गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2027 तक देश से फाइलेरिया समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साइटो लैब इंचार्ज डॉक्टर अंकिता शर्मा ने कहा,
1: जब मरीज को सिम्टम आना शुरू होते हैं तो उसके कॉमन जो लक्षण हैं वो हैं बुखार आना, दर्द होना, तो लसिका तंत्र को ब्लॉक कर देता है, उसको खराब कर देता है। तो पैरों में सूजन आना, जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं, तो हाथी पांव नामक बीमारी हो सकती है। फाइलेरिया लाइलाज बीमारी नहीं है जब तक वो लेट ना हो।
2: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
3: कौशाम्बी जिले में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला होमगार्ड कार्यालय का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 284 करोड़ की लागत यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। उन्होंने कहा कि
4: सन 62 में होमगार्ड का विभाग का गठन हुआ। 62 के बाद 17 तक के और 17 से अब तक के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक होमगार्ड विभाग के लिए है, मैं कह सकता हूँ ये कीर्तिमान है। वर्दी भत्ता हो चाहे दैनिक भत्ता हो, उसको माननीय मुख्यमंत्री दैनिक भत्ता एक किया, 42 दिन की ट्रेनिंग को 90 दिन की किया कि हमारा होमगार्ड का जवान दक्ष हो और शारीरिक क्षमता उसकी बढ़े। 17 से पहले कोई होमगार्ड का जवान किसी दुर्घटना का शिकार होकर आता तो 3 लाख रुपए की बीमा राशि होती थी, लेकिन आज होमगार्ड का जवान ड्यूटी पे है, घर पे है, रास्ते में है, कहीं भी है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। साथ साथ हमने जो बैंकों से टाई अप किया है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 35 लाख रुपए बैंक देगी। तो 40 लाख रुपए जब उस परिवार को मिलते हैं तो हम लोगों को कुछ संतुष्टि होती है कि उस परिवार के लिए हम कुछ कर पाए।
3: कौशाम्बी जिले में जनगणना 2027 का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। जिला अधिकारी अमित पाल शर्मा ने बताया कि 7 मई से 21 मई तक स्वगणना हो रही है। इस अवधि में नागरिक स्वयं एवं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से जनगणना वेबसाइट SCS पर दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े विश्वसनीय होंगे, जिससे शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय अभियान में अधिक से अधिक जनगणना ऐप का प्रयोग कर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। कौशाम्बी जिले में जिला न्यायालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 30,000 से अधिक शमनी वादों का निस्तारण किया गया। कौशाम्बी जिले में समाधान अभियान के अंतर्गत कई ग्राम सभाओं में भूमि विवादों की सुनवाई कर अवैध कब्जे खाली कराए गए। अपर जिला अधिकारी राजस्व ने बताया कि टॉप 10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान के अंतर्गत भीती, देहमाफी, कोरीपुर सहित दर्जनों गांव में अधिकारियों द्वारा संयुक्त टीम के साथ विवादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पुलिस और राजस्व टीम का अवैध भूमि खाली कराई गई। कौशाम्बी जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत 192 कार्यों को पूर्ण किया गया। जल निगम एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि 275 पेयजल परियोजनाओं में 192 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 78 परियोजनाओं पर कार्य जारी है, 114 परियोजनाओं में टेस्टिंग और ट्रायल का कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल पहुंचाने की योजना कई गांवों में चल रही है। गर्मी के मौसम में 130 तालाबों के सापेक्ष 40 तालाबों में पानी भरा दिया गया, शेष तालाबों में कार्रवाई जारी है। कौशाम्बी जिले में नई बैरिक का निर्माण होने से बंदियों को जिला कारागार में सुविधा मिल रही है। जेल अधीक्षक अजितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला कारागार में क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध होने के कारण बंदियों को रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पत्राचार के माध्यम से ADG कारागार द्वारा जेल के अंदर बैरिक निर्माण की अनुमति दी गई, जो करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हो गई। बंदियों को गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा। जिला कारागार में बंदियों को शुद्ध भोजन और शीतल जल की सुविधा उपलब्ध है। कौशाम्बी जिले में लक्ष्य के सापेक्ष किसानों से गेहूं खरीद सरकारी संस्थानों द्वारा की गई। जिला विपणन अधिकारी सुशेखर चौबे ने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष 75% किसानों से गेहूं खरीद की गई। किसानों को समय से समर्थन मूल्य का भुगतान बैंक खातों में DBT के माध्यम से किया जा रहा है। जिले में लगभग 2 दर्जन से अधिक क्रय केंद्र संचालित है, जहां पर किसानों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निरीक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि जिले में 1 दर्जन से अधिक थानों और चौकियों पर काफी समय से तैनात पुलिस कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर 1 दर्जन से अधिक जेल की सलाखों में भेजा गया। 2 दर्जन से अधिक पारिवारिक विवादों का सुलह समझौता के आधार पर पत्नी को राजी कराकर नया जीवन व्यतीत करने के लिए पहल की गई। गंभीर आपराधिक मामलों में पैरवी कर न्यायालय में 3 दर्जन से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई गई।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले

0: हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल में अभी आपने सुनी एटा और कौशाम्बी जिलों की खबरें।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार गुमशुदा का नाम आकाशमणि त्रिपाठी, उम्र 31 वर्ष। ये हल्के रंग की गुलाबी शर्ट और नीले रंग की पैंट पहने हुए हैं। ये 20 जनवरी 2026 बिरदोपुर कमच्छा वाराणसी से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी को सूचना मिलती है तो कृपया इस पते पर सूचना दें। प्रभारी निरीक्षक थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी या अपने नजदीकी थाने में सूचना दें।

सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार गुमशुदा का नाम इंद्रजीत कुमार उम्र 31 वर्ष, पिता का नाम शंभुनाथ। इंद्रजीत कुमार की हुलिया इस प्रकार है, रंग गेहुआ, कद 5 फीट, इनके शिक्षा 12वीं तक है। ये 23 जनवरी 2026 सुबह 6 बजे मोहनसराय वाराणसी से लापता हैं। इनका पता है ग्राम कनेरी पोस्ट गंगापुर थाना रोहनिया जिला वाराणसी। इनके बारे में अगर किसी को जानकारी मिलती है तो कृपया इस पते पर सूचना दें, प्रभारी निरीक्षक थाना रोहनिया जिला वाराणसी या अपने निकटतम थाने में सूचना दें।

श्रोताओं, एक और गुमशुदा के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। थाना चौक जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार गुमशुदा का नाम है जूली, उम्र 40 वर्ष, पति का नाम मोहम्मद दिलबहार। जूली की हुलिया इस प्रकार है, कद 5 फीट 2 इंच, ये पिंक कलर का सूट पहने हुए हैं और साथ में नकाब भी पहने हुए हैं। रंग गेहुआ, चेहरा सामान है। बुलेटन थाना चौक जिला वाराणसी की निवासी हैं। ये 31 दिसंबर सन 2025 दिन बुधवार सुबह 11 बजे घर से निकली और वापस नहीं आई। इनको ढूंढने की बहुत कोशिश की गई लेकिन इनका कोई पता नहीं चला। इनके बारे में यदि किसी को जानकारी मिलती है तो कृपया इस पते पर सूचना दें। थाना प्रभारी, थाना चौक, कमिश्नरेट, जिला वाराणसी, या अपने नज़दीकी थाने में सूचना दें।

0: विचारों की अभिव्यक्ति और अधिकार प्राप्ति का आधार सत्याग्रह।
1: आइए अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनाएं।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग का अनुसरण करें।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम।
1: आप सबके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपका मेज़बान फरीदुल्ला खान हाजिर है। सलाम मोहब्बत कबूल कीजिए, आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। सामिन बज़्म, आज हमने अपने स्टूडियो में एक शेरी नशिस्त का इनेकाद किया है। जो शोरा इकराम शामिल हैं उनके अस्माए ग्रामी कुछ इस तरह हैं: जनाब अहमद नबी, जनाब मोहम्मद जलीलुद्दीन समर बदायूनी साहब और डॉक्टर मोहम्मद इसरार खां असरार नसीमी साहब। हम सभी मेहमानों का अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं और सबसे पहले दावत सुखन देते हैं मोहतरम जनाब अहमद नबी साहब को कि वो आएं और इस महफिल को नूर बख्शें।

0: مطلع اور ملاحظہ فرمائیں.
1: جی نائب
0: کہ درگزر کر دیے ستم

0: बहुत
1: दे
0: अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात।
1: चाहे आंसू हो या हो गम
0: बहुत अच्छा है।
1: मेरे। और ये भी शेर देख लें कि वो अगर चाहे तो निकल
0: वो अगर
1: जाए
0: चाहे तो निकल
1: यार।
0: जाएं,

0: क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
1: वरना दुश्वार हैं ये
0: खम मेरे,
1: खम मेरे,
2: वाह वाह
1: और कैसे दिल से उन्हें निकालूं मैं,
0: कैसे दिल से उन्हें निकालूं।
1: कैसे

0: बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
1: कि दे दिया उसने मुस्कुरा के जवाब
0: दे दिया उसने मुस्कुरा के जवाब।

0: और देख लीजिए बयाज़ कुसुमे
1: जी बहुत अच्छा।
0: दे।

0: क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है।
1: कि ये मिला है सिला हुनर का
0: ये मिला
1: मुझे,
0: है हुनर का मुझे।
1: ये

0: क्या बात है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह,
1: पीछे हट जाए अब कदम मेरे।
0: दरगुजर कर दिए सितम मेरे, याद जब आ गए करम मेरे। बहुत ही खूबसूरत अशआर से इस महफिल को रौनक बख्श रहे थे अहमद नबी अहमद बदायूनी। आइए अब एक और शायर जो बदायूं से ही तशरीफ़ लाए हैं, मोहम्मद जलीलुद्दीन उर्फ समर बदायूनी को बुलाते हैं कि वो आएं और इस महफिल को और रौनक बख्शें।
2: मतला हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमा लें। देख ता उम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे,
3: वाह
2: ता उम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे, अब और क्या दिखाएगी ये जिंदगी मुझे।
3: वाह
2: ता उम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे, अब और क्या दिखाएगी ऐ जिंदगी मुझे। शेर समाप्त फरमाए हजरात, देखें। और यह शेर भी समाप्त फरमाए हजरात,
0: जी जी
2: देखें
0: आता हूँ।
2: कि मेरी हयात क्या थी,
0: मेरी
3: मेरी
0: हयात क्या
3: हयात
0: थी,
3: क्या थी,
2: अमावस की रात थी।
0: अमावस की रात थी,
3: क्या
0: क्या बात है, बहुत अच्छा।
2: कहने का, मेरी हयात क्या थी,
3: अमावस की रात क्या थी,
0: अमावस की रात थी,
2: अमावस की रात थी, कुछ जुगनुओं से मिलती रही रोशनी
0: रोशनी,
2: मुझे।
0: क्या बात है,
3: वाह
2: मेरी
3: वाह
2: हयात क्या थी,
3: वाह,
2: अमावस की रात
0: अच्छी
2: थी,
0: मंजरकशी है।
3: जुगनुओं
2: मेरी
3: से मिलती रही
2: हयात क्या
3: रोशनी
2: थी,
3: मुझे,
2: अमावस
0: अमावस की
2: की
0: रात थी,
2: रात थी,
3: वाह वाह,
0: एक
2: कुछ
0: जुगनू कुछ
2: जुगनुओं
0: जुगनुओं से,
2: से मिलती रही
3: वाह वाह
0: रोशनी मुझे।
2: रोशनी मुझे। और एक ये शेर भी देखें हजरात, कि जब तक मैं आईने के मुकाबिल नहीं हुआ,
3: जब तक मैं आईने के
2: जब
0: मुकाबिल
2: तक
0: नहीं हुआ,
2: मैं आईने के
0: मुकाबिल नहीं हुआ,
2: मुकाबिल नहीं हुआ, हर शख्स में दिखाई दी कोई कमी मुझे।
0: क्या बात
3: वाह
0: है,
3: वाह वाह वाह,
2: जब
3: क्या
2: तक मैं
3: कहने का, क्या
2: आईने
3: है,
2: के मुकाबिल
0: बेशक
2: नहीं
0: यही बात,
2: हुआ,
3: वाह वाह वाह,
2: जब तक मैं आईने के मुकाबिल नहीं हुआ,
3: हर शख्स में
2: हर
3: दिखाई दी,
2: शख्स में दिखाई दी
3: क्या
2: कोई
3: कहने, क्या
2: कमी
3: कहने का,
2: मुझे।
3: क्या कहने,
2: और ये शेर देखें हजरात, के बस यूं ही आ गई से मुलाकात हो गई,
3: बस यूं ही आ गई से मुलाकात
2: बस
3: हो गई,
2: यूं ही आ गई से मुलाकात हो गई, दर दर फिरा रही थी जब आवारगी मुझे।
3: क्या है, वाह वाह
2: बस
3: वाह,
2: यूं ही आ गई से मुलाकात हो गई,
3: क्या कहने,
2: दर
3: क्या
2: दर
3: कहने,
2: फिरा रही थी जब आवारगी मुझे।

0: दर दर फिरा रही थी जब आवारगी मुझे। और ये शेर भी देखें अहमद भाई कि रखता हूँ फूंक फूंक के मैं अपना हर कदम, रखता हूँ फूंक फूंक के मैं अपना हर कदम, कहने लगा है जब से जमाना वली मुझे। मैं रखता हूँ फूंक फूंक के मैं अपना हर कदम, रखता हूँ फूंक फूंक के मैं अपना हर कदम, कहने लगा है जब से जमाना वली मुझे। और एक शेर समाप्त फरमाए हजरात, देखें कि मेरे जुनूने शौक के थकते नहीं कदम, मेरे जुनूने शौक के थकते नहीं कदम,
1: मेरे जुनूने शौक से थकते नहीं
0: दर दर फिराती फिरती है दीवानगी मुझे।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा।
0: मेरे जुनूने शौक के थकते नहीं कदम, दर दर फिराती फिरती है असरा साहब, मेरे जुनूने शौक के
1: थकते नहीं कदम,
0: दर दर फिराती फिरती है दीवानगी।
1: बहुत अच्छा है।
0: दर दर फिराती फिरती है दीवानगी,
1: क्या बात है।
0: मेरे जुनूने शौक के थकते नहीं कदम, दर दर फिराती फिरती है दीवानगी। मुझे बतौर खास एक शेर हाजिर,
1: जी जी बिल्कुल,
0: मुझमें असा भाई देखें कि मुझमें कोई फरिश्ता ही करती रही तलाश,
1: मुझमें कोई
0: मुझमें कोई फरिश्ता ही करती रही तलाश, दुनिया समझ सकी न कभी आदमी मुझे।
1: वाह वाह।
0: मुझमें कोई फरिश्ता ही करती रही तलाश
1: जी,
0: दुनिया समझ सकी
1: क्या बात है,
0: कभी आदमी मुझे।
1: बहुत अच्छा है।
0: दुनिया समझ सकी न कभी आदमी मुझे। मक्ता समाज फरमाने
1: जी जी बताओ
0: कि दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों समर,
1: दुनिया को मेरी बातों
0: दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों समर, आती नहीं है लफ्जों की जादूगरी मुझे।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा।
0: दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों समर, आती नहीं है लफ्जों की जादूगरी मुझे।
1: बहुत अच्छा है मुकर्रर इरशाद।
0: दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों,
1: क्या बात है।
0: आती नहीं है लफ्जों की जादूगरी मुझे, और ताउम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे।
1: क्या बात है,
0: अब और क्या दिखाएगी ये जिंदगी मुझे।
1: ताउम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे, अब और क्या दिखाएगी ए जिंदगी मुझे। बहुत ही अच्छे अशार से और बहुत ही खूबसूरत लहजे में अपनी बात सामिन तक पहुंचा रहे थे मोहतरम समर बदायूनी साहब। आइए अब एक और मोहतरम शायर मोहम्मद इसरार खां असरार नसीमी साहब के हुजूर चलते हैं कि वो आएं और इस महफिल को और रौनक बख्शें।
2: गज़ल का मतलब मुलाजा कीजिए।
1: जी जी आता हूँ।
2: क़वाफ़ी कुछ मुश्किल हैं लेकिन आप मफ़हूम से जी समझ जाएंगे, आसान हो जाएंगे। मतलब यूँ है कि सीना हर एक मौज का शक छोड़ जाऊंगा, सीना हर एक मौज का शक छोड़ जाऊंगा, सीना हर एक मौज का शक छोड़ जाऊंगा, यूं अपने डूबने का कलक छोड़ जाऊंगा, यूं अपने डूबने का कलक छोड़ जाऊंगा, गुल बूटे कहकशानो शफक छो

0: बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
1: गुल बूटे कहे कशाओ शफक,
0: छोड़ जाऊंगा
1: छोड़ जाऊंगा मैं अपनी दासता के वरक,
0: छोड़ जाऊंगा
1: जाऊंगा।
0: क्या बात है,
1: मैं अपनी दासता के वरक छोड़ जाऊंगा। दारो रसन की बात मेरे साथ जाएगी।
0: वाह वाह वाह,
1: दारो रसन की बात मेरे साथ जाएगी।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा है।
1: सच बोलने का दुनिया में हक छोड़ जाऊंगा।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह।
1: सच बोलने का दुनिया में हक
0: छोड़
1: जाऊंगा। एक काफिया और देखें।
0: जी जी आता।
1: कि मेरा चमन से जाना भी शबनम से कम नहीं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा है।
1: मेरा चमन से जाना भी शबनम से कम नहीं। रुख पर हरेक गुल के अरक।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
1: रुख पर हरे को गुल के अरक
0: छोड़ जाऊंगा,
1: छोड़ जाऊंगा। गजल का एक शेर।
0: जी जी आता।
1: टूटेगा उनकी आंखों से तारा कभी कभी।
0: क्या बात है,
1: टूटेगा
0: उनकी
1: आंखों से
0: तारा कभी कभी,
1: तारा कभी कभी। इतनी तो रोशनी की रमक
0: छोड़ जाऊंगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है।
1: इतनी तो रोशनी की रमक
0: छोड़ जाऊंगा
1: मेरा ही जिक्र, मेरी ही बातें, मेरी ही याद।
2: क्या कहने,
1: मेरा ही जिक्र,
0: मेरी ही बातें,
1: मेरी ही बातें, मेरी ही याद। दिन रात ये तुम्हारा सबक,
0: बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: दिन रात ये तुम्हारा सबक
0: छोड़ जाऊंगा
1: कैसे छुपा सकेगा वो असरार मेरा खून।
0: कैसे छुड़ा सकेगा,
1: कैसे छुपा सकेगा वो असरार मेरा खून। कातिल की आंखों में भी अलक
0: छोड़ जाऊंगा, बहुत अच्छा है, वाह वाह।
1: कातिल की आँखों में भी अलक
0: छोड़ जाऊंगा।
1: मेरा चमन से जाना भी शबनम से कम नहीं। रुख पर हरे को गुल के अरक छोड़ जाऊंगा।
0: बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। सीना हरेक मौज का शक छोड़ जाऊंगा, यूं अपने डूबने का खलक छोड़ जाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत अशार से और बहुत ही अच्छे लहजे में अपनी बात हमारे सामीन तक पहुंचा रहे थे डॉक्टर मोहम्मद असरार खां असरार नसीमी। अब ये महफिल अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इसमें जो शोराए किराम शामिल थे उनके अस्माए ग्रामी कुछ इस तरह हैं: जनाब अहमद नबी साहब, जनाब मोहम्मद जलीलुद्दीन समर बदायूनी साहब और डॉक्टर मोहम्मद इसरार खां असरार नसीमी साहब। अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लोक संगीत।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
1: प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं राजकुमार तिवारी। पहले सुनते हैं देवी गीत।

0: अब लीजिए सुनिए कहरवा।
1: एक दिन गिरी हो जाई बाबा बुआ पाकर कि एक दिन गिरी हो

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजकुमार तिवारी के स्वर में लोकगीत। इसी के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

लीजिए सुनिए झनकार प्रोग्राम की पहली पेशकश आवार की फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत अन्नू मलिक का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम था बलमा। अब लीजिए सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म का नाम है राजकुमार।

श्रोताओं, हम एक बार फिर से हम आपको बता दें, फिल्म का नाम है राजकुमार, आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की, गीत है संजय पुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कटी पतंग फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। अब लीजिए सुनिए अंधा कानून फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अंधा कानून, अभी आप सुन रहे थे इसी फिल्म का नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। अब लीजिए सुनिए नजराना फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्तों अब लीजिए सुनिए झनकार प्रोग्राम की आखिरी पेशकश पहचान फिल्म से आवाजें मुकेश और सुमन कल्याणपुर की, गीत इंदिवर का, संगीत शंकर जयकिशन का।

इस गीत के साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम, वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का ये प्रोग्राम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। 7905519981 ये प्रोग्राम का नंबर है। 7905519981। आज की फिल्में हम आपको बता रहे हैं और उन्हीं फिल्मों से अपनी फरमाइशें आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेजनी है। कार्यक्रम के दौरान आपसे अनुरोध की एक बारी संदेश भेजें और फिर इंतजार करें, बार बार संदेश आप न भेजें। फिल्मों के नाम हैं आज इस प्रोग्राम में जो फिल्में शामिल हैं, प्यार किया है प्यार करेंगे, एक मिसाल, हीरा पन्ना, नसीब, पवित्र पापी और कच्चे हीरे। प्यार किया है प्यार करेंगे, एक मिसाल, हीरा पन्ना, नसीब, पवित्र पापी और कच्चे हीरे। सबसे पहले फिल्म का नाम जरूर लिखें। कुछ और बात जब भी आप लिखते हैं तो फिल्म का नाम छुप जाता है और फिर वो किसी और गीत के साथ वो संदेश हमें शामिल करना पड़ता है। वक्त रहते यानी 11:30 बजे तक अपने संदेश हमें भेज दें ताकि वो प्रोग्राम में शामिल हो पाए और एक संदेश में एक ही स्थान के 3-4 श्रोताओं के नाम लिखें ताकि गीत भी हम आपको पूरे के पूरे सुनवा सकें और आपके नाम भी शामिल हो जाए। प्यार किया है प्यार करेंगे, एक मिसाल, हीरा पन्ना, नसीब, पवित्र पापी और कच्चे हीरे ये आज की फिल्में हैं और शुक्रिया आपको कि आप फिल्मों के नाम सुनते ही बड़ी तादाद में अपने संदेश हमें भेजते हैं।

साथ ही आपको बता दें कि कल आप कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में हमसे बातें कर सकते हैं। कल बुधवार है, सुबह 10:10 से 11 बजे तक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है। 0542-222-1052 ये हेलो फोन इन फरमाइश का नंबर है। और कार्यक्रम प्रसारित होता है शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच। साथ ही हमारे केंद्र के दोनों ही चैनलों के जो प्रोग्राम हैं वो आप सुनते हैं, उनके बारे में अपनी राय हमें जरूर भेजें। पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में pkldaiarvaranasi@gmail.com पर वो प्रोग्राम यानी पत्र के लिए धन्यवाद रविवार शाम 7:31 पर प्रसारित होता है। और अब बहुत सारे आपके संदेश आ चुके हैं, आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस गीत के साथ। फिल्म में प्यार किया है प्यार करेंगे, शब्बीर कुमार की आवाज, SH बिहारी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

प्यार किया है प्यार करेंगे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शबीर कुमार की आवाज थी, SH बिहारी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की। ग्राम लोहेड़ी महोबा बुंदेलखंड से हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र और अरविंद। हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया और रानी का संदेश माकाली स्थान नौली काजीपुर से आया है। शिवाजी नगर खंडवा से हैं राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन और अक्षय सेन। आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार।

जी हाँ श्रोताओं, और हमें ध्यान रखना है कि आपकी जो फरमाइशें इस गाने के लिए आई हैं वो शामिल हो। एक मिसाल फिल्म का ये गीत था अलका याग्निक की आवाज में। फरमाइशें आप सबकी बठिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, आप सभी हैं पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली के हमारे श्रोता हैं तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कृष्टि पटवा की फरमाइश धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम और अल्ताफ अंसारी। विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक और मयंक मुड़त की फरमाइश बोरखेड़ा पित्रा मल्लू जैन से आई हुई है। गोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पूनाराम देवांगन की फरमाइश पलारी छत्तीसगढ़ से। आप हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, पुनीता सिंह, प्रीति सिंह, कृषि सिंह और वेदा सिंह। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया, शाहिन और नाजिया। नूर महल सीतामढ़ी बिहार से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा। बाजार रोड मुंगीसापुर से हमें सुन रहे हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शविस्ता और मोहम्मद नसीब। शादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। शम्स तबरेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद और हबीब अंसारी, आप सभी हमारे श्रोता हैं मखदूम नगर बजटिया वाराणसी से। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। बजडीहा वाराणसी से मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, अनुल हक अंसारी और सलीम आजाद अंसारी। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना है लदावली मुरादाबाद के श्रोता। जयराम शिंगड़कर, दिशांत कुमार शिंगड़कर और अर्पिता की फरमाइश कोपाली यवतमाल से आई हुई है। रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। ये फरमाइश है प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम कुमार और सौरभ कुमार की दिनारा से। सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, नटखट और

दीपक श्याम कुंवर। गिरा पलारी छत्तीसगढ़ के श्रोता वीरेंद्र साहू, सोनू आशीष और कपिल साहू की फरमाइश। पदमपुर गंगानगर राजस्थान में जगह है, वहां से हमारे श्रोता मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। प्रोग्राम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है हीरा पन्ना। ये गीत बहुत सारे श्रोताओं ने सुनना चाहा। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

हीरा पन्ना फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज से फरमाइशें हमारे इन श्रोताओं की हैं। झारखंड बड़ा बाम्बो सुपाई गांव साई गांव यहां पर है, वहां पर हमारे श्रोता हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती और प्रकाश तांती। ये फरमाइश है गुजरात गांधीग्राम से आई हुई प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी की। कोटा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया के हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा और सोनाली विश्वकर्मा की फरमाइश बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से। दोहरा दें श्रोताओं की हमारे यहां पर आप किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, संगठन या फिर श्रोता क्लबों के नाम न लिखा करें, वो हम शामिल नहीं करते। अमितेश कुमार तिवारी करनई बलिया के हमारे श्रोता हैं। सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और सद्दाम की फरमाइश कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। इसी गीत को चाहने वाले एक और श्रोता दादरी भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और कपिल मेहरा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर के श्रोता मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी और सरफराज अब्बासी, राधेश्याम यादव नगदिलपुर गाजीपुर में हमें सुन रहे हैं। शिवपुरम कॉलोनी से हैं कमला देवी महोबिया, अनय, अनाया और ईशु। प्रवीण, योगिता और कुमारी प्रियाली हागोड़े की फरमाइश कुष्टा बुजुर्ग अमरावती से आई हुई है। लसुड़िया पाता नरसिंहगढ़ के श्रोता हैं गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी और कृतिका। तारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा की फरमाइश चौटाला हरियाणा से आई हुई है। और हमारे श्रोता हैं अड़ार, नांदघाट, छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। रियासत हुसैन सिद्दीकी, राजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत और मोहम्मद रिहान है जसपुर उत्तराखंड से। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कुंवर और तुषार सिंह। छिंदवाड़ा बेरडी से नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस और जयलाम से। नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका और ज्योति ठाकुर की फरमाइश चरौता बार नवापारा बलौदा बाजार से आई है। इसी गीत को सुनना चाहा वाराणसी से परवेज अहमद ने और चंडीगढ़ से सतीश शर्मा और नेत्रपाल सिंह ने। अख्तर खान, अमजद खान, अफजल खान, आसिफ खान, आरिफ खान और सैफ खान की फरमाइश आप है नगर पंचायत गंगापुर वाराणसी से। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड के श्रोता है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और रयान बाबू। शीटे सांगली से हनुमंत शिंदे और ऋषिकेश शिंदे। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और उस्मान अंसारी। गंज डुंडवारा से है आफ्ताब और उनके दोस्त। ये फरमाइश है सारंगपुर राजगढ़ मध्य प्रदेश से धनराज बैरागी और सीमा बैरागी किट्टू की। अंबागढ़ चौकी से हमें सुन रहे हैं रिजवान खान, आयशा सभी, अनस और रेहान। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, महंक गौरव और तन्वी गौहर की फरमाइश।

मोटाला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब, झुमरी तलैया से महेंद्र चौरसिया और महेंद्र विदेशिया, उम्मीद है ये सभी नाम अलग अलग होंगे, सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, फाजिलका पंजाब से, शुभांकर, स्नेहा और बॉबी को शुक्रिया, सुनारपुरा वाराणसी से आप श्रोता हैं हमारे, हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तन्नू की फरमाइश बेड़ी मध्य प्रदेश से आई हुई है, संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू हैं पोटिया कला दुर्ग से। श्रोताओं, वक्त 11:30 का, आज कई प्रोग्राम यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का सफर आप तय कर रहे हैं अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। आपको बता दें, कल आप हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में हमसे बातें कर सकते हैं सुबह 10:10 से 11 के बीच, रुक रुक कर यानी अंतराल के बाद जरूर प्रयास करें आपका फोन लग जाए। हमारी शुभकामनाएं 0542-222-1052 ये नंबर है हमारे प्रोग्राम का। और कार्यक्रम शनिवार को 11 से 12 के बीच और रविवार को 12 से 1 के बीच आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित होता है। हमारे केंद्र के प्रसारण आपको मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब OTT पर एक साथ उपलब्ध रहते हैं। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश, अनवर, कमलेश अवस्थी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है नसीब।

जी हाँ, और आपके ढेरों संदेश हमारा इम्तिहान लेते हैं, और साथ ही आपका इम्तिहान आपके सब्र का कि एक बार संदेश जब आप भेज देते हैं तो बार बार ना भेजा करें। विनय राठौर हमें सुन रहे हैं महरेओ जौनपुर से। सुनीता जी हैं सेबेस्टोपोल फ्लॉक मॉरिशस से, हमारे बेहद नियमित श्रोता, बहुत शुक्रिया आपका। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल ने इसी गीत को सुनना चाहा। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा। सोनाली आशा नारंग और सुरेश नारंग की फरमाइश आई है सहारनपुर से। अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा और आयुषी वर्मा है खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। हदगांव महाराष्ट्र से हमें सुन रहे हैं शंकर गिरबिड़े, दिलीप गिरबिड़े और उनके दोस्त कृष्णा घोड़ के प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, यशराज शिंदे और सुनीता शिंदे हैं रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली के हमारे श्रोता हैं मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, हुमदश पाक और आफरीन कौसर। ये फरमाइश है महाराणा प्रताप कालोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी की। नागपुर महाराष्ट्र से हमें सुन रहे हैं कमल साहनी, पिंकी साहनी और डॉक्टर अफजल मलिक। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। फाजिलका पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा और शालिनी खेड़ा। नेहरू चौक पैठण के श्रोता हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती और पूजा, मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान और इसरार मुरादाबाद दुल्हापुर से। नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। निशा कुमारी, रेशमा कुमारी और देवेन हैं जमशेदपुर झारखंड सुपाही साही गांव से। मंगल जनागल, राही रोशनी जनागल और अंकुर जनागल हैं चकपांच एमडी पत्रोड़ा से। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, परवेज अहमद शुक्लपुरा वाराणसी के हमारे श्रोता। सुदर्शन

शाह पलवी शाह प्रकाश शाह और कुशल शाह पद्मा टॉकीज नेपानगर से। आप हैं साबिया खान, अनस खान, रईस खान, शकील खान और दानियाल खान, कुलेनगर अम्बिवली, मुंबई महाराष्ट्र के श्रोता। बेरेडी से अर्जुन गवनेकर, धीरज सव्वा, शेरे और चंचल ढोमने। बुल्ढाना वर्षिंगी महाराष्ट्र के श्रोता हैं अपोल मानकर, शोभाताई मानकर, अमोल मानकर और दीपाली, साथ में श्लोक कुमार, फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा। प्रवीण की फरमाइश हयात कॉलोनी अररिया बिहार से आई हुई है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, गीतू और निहारिका। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद और इरफान मोहम्मद। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी और रिया, साथ में रेणु की फरमाइश लोहेड़ी महोबा बुंदेलखंड से। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, पब्लो निषाद और तरुण यादव। अभिजात गौहाणकर राही, सरिता गौहाणकर, प्रणीता सिद्धांत गौहाणकर और अर्जुन गौहाणकर हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। मोहम्मद आरिफ राशिद जमाल हैं कोटवा गढ़ी के श्रोता। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और अभी हैं आप सब मजनू का टीला से। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता खुराना, रिधान खुराना, तुलसी मस्किन और वीणा मस्किन। दहीगांव नांदूरा से धोंडू भातूरकर, मंगला भातूरकर और विवेक कुमार। बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, सुंदर और सुमन जायसवाल। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की फरमाइश ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी से। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी हैं रघुनाथपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से। अमित जंघेल, शकुन, आरुषि और ओशिका धमधा ग्राम सुखरी कला के श्रोता है। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है पवित्र पापी। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, गीत और संगीत प्रेम धवन का।

0: क्या सोच के,
1: चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बारिश मक्के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट जा।

इस गाने की फरमाइश आई है आप सबकी, जो फिल्म पवित्र पापी से था, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। अस्तुपुरा मऊ के हमारे श्रोता हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी, और इसी गाने की बहुत पहले से फरमाइश भेजी हमारे श्रोता हैं अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता और पूजा गुप्ता गौंड, पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 वाराणसी से, और साथ ही हैं पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह। आप सभी का शुक्रिया। अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा की फरमाइश है खरकोन सनावस से। तुलसी मस्कीन जी, आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपका नाम एक बार शुरुआत में ही शामिल हुआ है, लेकिन आप लगता है प्रोग्राम बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं। आपने लिखा है कि संदेश नीला हुआ है, लेकिन हम लोग भूल गए हैं। बिल्कुल हमें याद है आपका ये जो नाम है सभी, ये शुरुआत में शामिल हुआ है, तो उम्मीद है आगे से आप इस बात का खुद ध्यान रखेंगे। शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल हैं नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से, और ये जो नाम है ये बहुत बार आते हैं। अशोक वर्मा जी अगर हमें सुन रहे हैं तो एक बारी संदेश भेजें, ऐसी हम उम्मीद आपसे करते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर के हमारे श्रोता। डेर पाटन गुजरात से धीरज वी रब्बारी की फरमाइश। कोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। रश्मि झरना और भरत कुमार हैं राजकोट गुजरात से। एक संदेश में एक ही स्थान के दो चार श्रोताओं के नाम लिखें, और ज्यादा नाम है तो किसी और गाने के लिए दोबारा से भेज सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ही भेजते हैं, अब तो वक्त काफी हो चुका। बाघामुड़ा कुमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी और प्रकाश देवांगन। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से ये फरमाइश गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले की आई हुई है। बीड शहर महाराष्ट्र के श्रोता है नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी और जयश्री महत्रे। संजू आर, अश्विन, शोभनाथ अवस्थी और उनके मित्र हैं शिवराजपुर चुनार मिर्जापुर से आप हमें सुन रहे हैं। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और माधुरी किरण। नारवा इंद्रोका, जोधपुर राजस्थान से नरपत सोनी और वैशाली सोनी। पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की और रविन्द्र रौनक सेन है। चांदनी चौक, गंडई, पंढरिया।

छत्तीसगढ़ से। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, सीतामुनि देवी और जयराम बिंद। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी और बीके पुरी। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। ये फरमाइश है मास्टर एस के पाटिल, मीना रानी पाटिल, प्रियंका और अजय पाटिल की। ज्ञानेश्वर मंदिर हलनी नांदेड़ से संतोष कुमार राव, भारती राव और बेलाबाई सिंह है उमरिया मध्य प्रदेश के श्रोता। निर्माबाद जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह और लवप्रीत कौर। रोहासी छत्तीसगढ़ के श्रोता है मुकेश साहू, नंदिनी और मनीष साहू। ये फरमाइश है छत्रपति संभाजीनगर, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर और सुषमा बोरगांवकर की। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा वहां के श्रोता है अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक। ग्राम ममना हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू और रंजना। बाबू यादव, मनशा यादव, दुर्गेश यादव की फरमाइश। देवकी विहार कॉलोनी सारनाथ वाराणसी से। आमा खोडरा रेंगा खार कबीर धाम से हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम और गीत सरगम नेताम। त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी और शिवनाथ। ग्राम गहमर पकड़ीतर हनुमान मंदिर चांदनी चौक से। रायपुर छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं विनोद वंडलकर और वीणा वंडलकर। मुकेश गोस्वामी और मधु गोस्वामी की फरमाइश उच्च भट्टी बिलासपुर से आई हुई है। आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम है कच्चे हीरे, लता मंगेशकर की आवाज। आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत।

और अब हमें नाम पढ़ने होंगे उन श्रोताओं के जिन्होंने इस गीत को सुनना चाहा। कच्चे हीरे फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज, फरमाइश है आप सबकी। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल।

गांव जाखोस से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल और योगेश कुमार, साथ में दीपक कुमार और पूजा खटक। रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार की फरमाइश आई है। बागरी मोहल्ला रटलाई झालावाड़ राजस्थान के श्रोता है नैना सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदीबाई बागरी। मारहरा दरवाजा एटा के हमारे श्रोता हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी और नावेद हसन अब्बासी, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, पिपरलोड सरगांव से। आरजू बानो, आलिया बानो, नेहा बानो, सिमरन बानो और सना बानो हैं। नगर पंचायत गंगापुर गोला बाजार से।

गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव और दीनानाथ सिंह यादव, आप सभी हैं दिलदार नगर पश्चिम मोहल्ला से। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण और संस्कृति व्हाइट फील्ड बेंगलोर में हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका। शाहकुटी मुगल सराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, डब्लू और माया जायसवाल। जौनपुर रामपुर से हैं, रमईपुर से अवधेश तिवारी, प्रियंका तिवारी और शिवांगी तिवारी। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लें या हिंदी में लिख दिया करें। अनिल मानसी गौरव, कविता मदान, गांधी मार्ग मोतीनगर, नई दिल्ली के श्रोता है। आपने पहला संदेश 11:03 पर भेजा है, उसके बाद 4, 5, 12, 29, 34, 52, ये जो आप रुक रुक कर मैसेज भेजते हैं तो इससे आपका संदेश बिल्कुल पीछे हो जाता है। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला और फरहान लल्ला हैं तेलंगाना भोंगी के हमारे श्रोता। अनिश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से। पुराने भिलाई 3/14 छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी और जीशान अहमद सिद्दीकी की आई हुई है। यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी और तौसीफ हाशमी है नई बस्ती गंज डुंडवारा से। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। सुनील पाठक, कमल पाठक और दीपी कमल होत्रा है अनारकली बाजार जगराव से। कमल साहनी, पिंकी साहनी और डॉक्टर अफजाल मलिक का नाम पहले भी शामिल हुआ है नागपुर महाराष्ट्र से। गांव चोहल्दा बागपत से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया। बीड शहर से हैं किशन, सबकाल आशा, सबकाल और विशाल, सबकाल विशाल मिश्रा, बधवा बाजार माधोपुरी मिलिया जौनपुर से है। गणोखा लालगंज रोहतास बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान और आर के सिंह चौहान। जावेद अख्तर अंसारी, निखत परवीन, नुसरत परवीन हैं कटरा मुबारकपुर से। अब्दुल गफार डाबर, खुशनसीब अब्दुल हक डाबर और जियाउल हक डाबर हैं संजय कॉलोनी खंडवा के श्रोता। ये फरमाइश आई है शमसुल कमर राही और जावेद अख्तर राही की मुबारकपुर आजमगढ़ से। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा हैं टैगोर गार्डन के हमारे श्रोता। राम सकल चौधरी, चोचकपुर बाजार, गाजीपुर से। कोटवा कपिलधारा, सराय मोहाना, वाराणसी के श्रोता हैं। रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एन्द्री ओमना सारंग, शिवांग रोली, अदिति और उनकी माता जी निर्मला त्रिपाठी। पांडु चंदन, उषा चंदन और रानी चंदन हैं।

कुम्हार गली कोलगांव से, ये फरमाइश सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येले और नवदीप येले की, मोढ़ाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर। प्रवीण कुमार बिंद हैं भारती देवी के नाम के साथ कोयलरा भदोही से। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना और हर्षित हैं रघुनाथपुरा गंगानगर से।

नमस्कार और उम्मीद है कल आप बातें करेंगे हमसे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में सुबह 10:10 से। अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़, फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं, सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप,

0: यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
0: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
1: जी
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
0: जी
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
0: जी
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यही पेड़ की छांव में।

0: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
1: विद्या, विद्या,
0: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन, मोहन, मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
0: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
0: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
0: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
2: हाँ, हाँ, हाँ, आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं।
0: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
2: हाँ, हाँ।
4: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
2: हाँ।
4: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
0: जी।
4: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी।
4: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
0: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है।
0: जी।
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
0: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
4: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी।
0: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
4: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
0: जी।
4: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
0: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
4: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
0: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
0: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
4: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
5: ठंडक में खेले।

0: मेखेले भरपूर
1: आग बरसाती धूप।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
5: साथियों नमस्कार।
4: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
5: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
4: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
4: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
5: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
4: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
5: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
4: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
5: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़, तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी

0: सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। एल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। एल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो एल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक एल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार

0: आखिर क्या था? लांस नायक अल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए
7: 0542227658।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658। कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं चारुलता मुखर्जी। पहले सुनिए संत रवि।

मीराबाई की रचना अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थी चारुलता मुखर्जी। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आज प्रस्तुत है रवि कुमार प्रजापति का बांसुरी वादन, राग है भीम पलासी, तबले पर संगति की है ज्ञान स्वरूप मुखर्जी ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रवि कुमार प्रजापति का बांसुरी वादन। राग था भीम पलासी, तबले पर संगति की ज्ञान स्वरूप मुखर्जी ने।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है अब समाचार, हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण उम्मीदवार

0: की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लौ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण कर।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ

0: बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत विश्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले जानकारी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। अमन मिश्र, पिता का नाम यजुवेंद्र कुमार मिश्र, ये मुकुंदपुर पाहो डोमनपुर कछवा मिर्जापुर के निवासी हैं और दिनांक 22 जनवरी 2026 की दोपहर 12 बजे से मोहनसराय वाराणसी से लापता हैं। अमन मिश्र की आयु है 23 वर्ष, का 6 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था जीन्स और शर्ट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो थानाध्यक्ष थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी को मोबाइल नंबर 9454404397 यानी 9454404397 पर सूचना दें।

थानाध्यक्ष थाना चौबे पूर्व वाराणसी से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार राम सूरत, पिता का नाम शोभनाथ, ये चिरई गांव चौबे पूर्व वाराणसी के निवासी हैं और 10 जनवरी 2026 की सुबह 5 बजे से अपने घर से लापता हैं। राम सूरत की आयु है 50 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो थानाध्यक्ष थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना दें। सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त एक सूचना के अनुसार प्रिया पाल, पिता का नाम बालकृष्ण पाल, ये ग्राम चाहिन चौबेपुर खुर्द चोलापुर वाराणसी की निवासी हैं और 22 जनवरी 2026 से ग्राम चाहिन से लापता हैं। प्रियापाल की आयु है 24 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था नीले रंग की जींस और लाल रंग का स्वेटर। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। खेल दर्पण कार्यक्रम रात में 10 बजे लखनऊ केंद्र से रिले होगा, रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में विदुषी किशोरी अमोनकर का गायन। अंजुमन प्रोग्राम होगा रात में 9:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की गाई गजलें सुनवाई जाएंगी रात्रि 8 बजे। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर बातचीत का विषय होगा मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि। डॉक्टर योगेश कुमार यादव से बातचीत की है सतीश कुमार यादव ने। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे राजकुमार तिवारी, इनके गाए कुछ लोकगीत आप लोक संगीत कार्यक्रम में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज युवा साथी सुनेंगे आज की बात, क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत कालबेलिया जनजाति पर जानकारी, यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। धरती के गीत कार्यक्रम में बांग्ला गीत सुनवाए जाएंगे शाम 5 बजे, कलाकार होंगे संजीत मंडल। सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड, ये प्रोग्राम होगा 2:30 पर। 1:45 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 1:15 पर रंगनैया कार्यक्रम में आज चर्चा और गीत संगीत के अलावा प्रिया सिंह से बातचीत सुनवाई जाएगी स्वयं सहायता समूह और रोजगार के अवसर विषय पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिली की जाएंगी।

0: वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से सात निकाती अपील को अपनाने की बात दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है। खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन का और एलपीजी का 45 दिनों का जखीरा मुहैया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में कल नई दिल्ली में हुई काबीना की मीटिंग में ये जानकारी दी गई। हुकूमत ने कहा है कि आवाम को घबराने या ईंधन और दीगर मसनूआत की ज्यादा खरीद करने की जरूरत नहीं है। नीट यूजी 2026 के इम्तिहान को एनटीए ने मंसूख कर दिया है। जल्दी इम्तिहान की दोबारा तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोबारा मुनक़िद होने वाले इस इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों से कोई भी अलग से फीस नहीं ली जाएगी। इम्तिहान में खलल के मामलों की अब जांच सीबीआई करेगी, जिसके लिए सभी अहम दस्तावेज एनटीए सीबीआई को सौंपेगी। वाज रहे कि यह इम्तिहान गुज़िश्ता 3 मई को मुनक़िद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हेमंत विश्व शर्मा ने आज मुसलसल दूसरी मर्तबा असम के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानपारा वाके वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद एक जलसे में डॉक्टर शर्मा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मेंबर असेंबली रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरे और अजंता नियोग ने भी वुजरा के ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकजी वुजरा और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों के वुजरा आला भी इजलास में मौजूद रहे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में मुनक़िद CII सालाना बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में उत्तर प्रदेश में तहफ़्फ़ुज़ का माहौल बना है, पॉलिसी तामीरात में इसलाह हुई है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों के तई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने आज रियासत में सरमायाकारी की नई राहें हमवार कर दी हैं। आज उत्तर प्रदेश ने मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मारूफ रियासत के तौर पर पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज और नाजेबा तबसरा करने के इल्जाम में महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के लीडर सत्येंद्र प्रताप की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अफसरान के मुताबिक ये तनाजो तब शुरू हुआ जब अजेंद्र सिंह लोधी वजीर आजम की उस अपील पर रद्द अमल जाहिर कर रहे थे, जिसमें आवाम से सोना न खरीदने की अपील की गई थी। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। रेवेन्यू काउंसिल के तहत लेखपाल के खाली ओहदों पर तकरूरी के लिए उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 21 मई को रियासत के 44 जिला में खसूसी इम्तिहान मुनक़िद करेगा। कमीशन के एग्जाम कंट्रोलर की जानिब से कल जारी जानकारी के मुताबिक इम्तिहान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अलॉट जिले की आइंदा जानकारी कमीशन की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के बेशतर इज़िला में मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत में मशरकी और मगरबी हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का कयास जाहिर किया। दरियासना आज बिजनौर, अमरोहा और बदायूं में एक बार फिर तेज आंधी के साथ बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया और दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज हुई। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब शहरी महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 और 16 सेकंड हुए हैं। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया।

0: के नमस्ते अमीना, तोहरो के नमस्ते हो।
1: नमस्ते हो लाली बहिन और देखा हो लाली बहिन। तो से मिले बदे अब बहिन लोगन से मिले बदे ना हम हाली हाली भागल आवत है, लेकिन इतना तेज घाम भयल बा ना कि पूछा मत हो।
0: सही कहत हो। घाम अब जेठ के महीना में घाम न होई तब कब होई हो। देखा जेठ का दुपहरिया तब मानल गई है कि घाम जोर का होला, दऊ अपने आगे केहू के नाही देखेला।
1: एकदम सही बात तू कहत हो। तो देखा अगर जरूरत हो तब भाई हम कहब कि घरे से बाहरे निकले, और नाही तो भाई जौन कि घर ही में रहे। और देखा हम एक और जरूरी बात बताई ना कि आज देखा 12 मई के का हुआ देख।
0: अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस हो गए हैं। माने नर्स का मतलब तो जानते हो,
1: एकदम
0: अस्पताले में जौन लोगन सफेद सफेद फिराक पहन के घूमे लीन ना, पहलवा देखी तो कहीं कि अरे के है, जब महतारी हमार बतौलिन, नानकर रहली जब महतारी बतौलिन कि लोगन नर्स हैं, इन लोगन सेवा करेलिन, तो उनके सेवा भाव के आगे समझला कि सब केहू नतमस्तक रहेला।
1: एकदम सही बात तू कहत हो। देखा जब बात कर सो सेवा को उनके ना, तो जब आदमी बेराम हो भाई कौनो तरह का बेरामी हो, आ हॉस्पिटल में ऊ जवन है कि सबकर सेवा बिना स्वार्थ का कर रहल हैं। आ उमन भाई कौनो भी जात पात धर्म कुछ ना देखे नी, एकदम एक भाव से सद्भावना के भाव से सेवा के भाव से सबकर सेवा करे नी, उन्हीं के सम्मान में देखा आज 12 मई के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनावल जाला। तू बताई भाई कैलू
0: आ
1: हुआ।
0: इमन जानत हो जे नर्स दिवस काहे मनावल जात है। इमन जौन फ्लोरेंस नाइटिंगल नर्स रहली ना, नर्सिंग का माने कि गरीब लोगन के चाहे बीमार लोगन के सेवा भाव खातिर जे नर्स के नर्सिंग का स्थापना कैलिन, संस्थापक के रूप में आगे अवलिन, उन्हीं का जन्मदिन पड़ेला। तो उन्हीं के जन्मदिन के धूमधाम से मनावल जाला, और यही से आज के दिन के नर्स दिवस के रूप में मनावल जाला। आ देखा ऐसे सबके जागरूक भी कैल जाला कि खाली नर्से नहीं हो, सब केहू के एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखे के चाहिए।
1: एकदम सही बात का तू। देखा जब सेवा भाव रहेला ना, समाज में भाई सबके प्रति सद्भावना का भाव रहेला, तो आपन समाज विकास करेला। आ अपने देश में भी जाना तो भाई ई ना सोचे कि चाहिए कि नहीं समाज में ई जो जात पात या छुआ छूत कौनो तरह का भेदभाव ना करे के चाहिए, सबके
0: बिल्कुल
1: प्रति सद्भावना का भाव रखे के चाहिए।
0: बिल्कुल। देखा तोरे ई बात पर हम एक बात बताएं कि अगर तू केहू के प्रेम देबू, हाँ केहू के प्रति अच्छा भाव रखबू, दुनिया समाज में सबके प्रति परोपकार का भाव रखबू, तो ऊ एक दिन तोरे पुण्य कर्म के रूप में तोरे आगे आई।
1: एकदम सही बात कह तू। देखा तू परोपकार का नाम ले लू ना, तो हमरे मन में एक बात आ गया कि कहल जाला कि परोपकार से बड़ा कौनो धर्म ना हो।
0: यही से ई न सोचे के चाहे कि अपने स्वार्थ में मनई अगर लग के हर घड़ी अपने बारे में सोचे लना, तो ऐसन मनई जानला धन दौलत तक कुल रहेला, लेकिन आखिरी समय में अकेल हो जाएला। अगर तोहरे पजरे अगर कौनो दुख मुसीबत आवत है, तो ई बतावा पैसवा अपने से दौड़ के नाई ना चल के तुहार मदद कर दी।
1: एकदम सही बात कह तू भाई। देखा पैसा रुपया भी सब कुछ ना होला, रिश्ता सबसे बढ़ के होला। आ देखा सबसे रिश्ता निभावे के चाहिए। आ प्रेम व्यवहार में ना बहुत मन के शांति मिलेला।
0: घर परिवार में भी है भाई, केहू समर्थ है केहू नाही समर्थ है, तो केहू ज्यादा कह देलस केहू कम कह देलस, इमन दाजर ऐसी न होए के चाहिए कि
1: एकदम
0: भाई
1: सही
0: अरे हम
1: बात कह
0: परिवार
1: तू।
0: का खर्चा चलावत ही, हम ढेर खर्चा करत है, तो हम सबसे बड़ है। हाँ
1: और चाहे घरे का घरैतीन हैं तो काम है धंधा में कि भाई हम ढेर करत हैं ऊ ढेर ना करत हैं, हर चीज के मिल बांट के प्रेम से कह लेवे के चाहिए।
0: जेकरे अंदर ई भावना रहेला ना, तो उनके लड़कन बच्चन में भी यही तरह का भावना विकसित होला। हम तो कहीं ना दुनिया समाज में एक एक एक एक करके सबके अंदर जब अच्छी भावना का विकास होला, तो यही तरह से समाज का विकास होला।
1: एकदम। और देखा लड़कन बच्चन के जोन तू बात करत हूँ ना, तो भाई देखा जोन छोट पर से देखी हन तौने ना सीखी हन, तो अगर वो बढ़िया देखियन घरे में तो बढ़िया चीज सीखियन।
0: अजुन तू समाज में बराबरी का बात करत रहलू ना, तो देखा अल्पसंख्यक भैया लोगन बदे, बहनी लोगन बदे सरकार की तरफ से कितना चिकित्सा सुविधा है ना। बहनी लोगन अगर समर्थ नाही हैं, ये तरह का अल्पसंख्यक बहनी लोगन हैं, उनके बदे सरकार की तरफ से कितना जगह तब फ्री में इलाज होता।
1: एकदम सही बात का तू। देखा जे आर्थिक रूप से कमजोर है ना, ओकरे बदे जो ना कि समाज आयुष्मान और जो ना हमार सरकार सरकार है वो आयुष्मान भारत योजना चलाओ था जिमन की साल भरे में 5 लाख रुपया तक का इलाज मुफ्त में हो सकता
0: तो ऐसे भाई जागरूक रहे का जरूरत है भाई के घरे घरे तो तोरे पहुंचाई नहीं तुम लोगन समाज का अगर मन नहीं हुआ जा लोगन तो जागरूक होए के पड़ी आगे आवे के पड़ी और सब चीज बदे जानकारी रखे
1: एकदम भाई जानकारी रही तब ना देखा अपने जानकारी बदे जाके सहजन सेवा केंद्र पर जानकारी ले लें नहीं तो बड़का मोबाइल फोन जो ना

0: सबके लगे हा, ओहू पर बहुत जानकारी मिल जाला, वही से अपन समझ ले, देख ले, जान ले।
1: बिल्कुल सही बात कहत हो मीना। कहीं ना कि जब जानकारी के बात कहत है ना, तो सनेश जौन होलन अपने कार्यक्रम में, ओहू से बहुत जानकारी मिले। हाँ, तो चला पहले सनेश सुन लिहल जाए, फिर आगे का बात कही होई।
0: सुनवा दा लाली बहिन।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे?
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
1: 0542227658।
6: ओ, 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।
8: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: देखा हो सनेश तो हो गई, लेकिन हम लोगन जब ज्ञान का जानकारी का चेतावनी का बात करत है तो आज बहनी लोगन के नीके का बात कही भी सुनवा दी हल जाए।
0: अरे एकदम, देखा हम नीके का बात कही लेके आली न हो कि स्वयं सहायता समूह और रोजगार के अवसर यही विषय पर प्रिया सिंह से बतियावत है शिखा श्रीवास्तव बहन। तो बहन लोगन ई बात कही सुने, अब खूब बढ़िया जानकारी लें।
1: श्रोता बहनी, आप लोगन घरे के साथे साथे बहरे भी अब काम करत हैं, निकलत हैं और अपने आर्थिक स्थिति के मजबूत बनावे खातिर अगर रोजी रोजगार करत हैं तो ई बहुत बढ़िया बात है। और बहुत बहनी लोगन के तो देखिला कि वो समूह से जुड़ जाते हैं और अपन रोजगार करत हैं जौन भी उनके लगे हुनर है, लेकिन बहुत बहनी लोगन के जानकारी नहीं है कि इस समूह से कैसे जुड़ल जाए, इस स्वयं सहायता समूह का होला, इमन कौने तरह से मने रोजगार कह सकेला। तो ई कुल जितना भी प्रश्न है ना, ई कुल का जानकारी देवे बदे आज हमन अपने कार्यक्रम में बुलौले है प्रिया सिंह जी के। ई ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का प्रशिक्षण देवे का कार्य करत हैं और बहुत बहनी लोगन से जुड़त हैं, बहुत बहनी लोगन के रोजगार भी दियावत हैं। तो बहनी आपका अपने कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करत हैं।
9: धन्यवाद।
1: आप बहनी लोगन के पहले ई बता दें कि ई स्वयं सहायता समूह होला का?
9: स्वयं सहायता समूह 10-15 महिलाओं का एक छोटा समूह होता है जो हर महीने थोड़ी थोड़ी जैसे 100 रुपए 200 रुपए की बचत करते हैं और आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और कुछ नए रोजगार शुरू करते हैं, मतलब कुछ छोटा काम करते हैं जो महिलाओं का हुनर है। वो सब महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं, उसमें छोटे मोटे काम करती हैं, बचत करती हैं और उससे उनको एक दूसरे का हुनर की पहचान होती है और उनको रोजगार में सहायता मिलती है उससे उनको।
1: मतलब कि जैसे सब बहनी लोगों ने इकट्ठा होके अपन 10, 20, 25, 50, 100 जितना भी जिक्रे आटा था वो अगर उके जोड़ के इकट्ठा कर ले था तो जे उमन बहुत निपुण रही वो कोनो रोजगार का माध्यम बताई वे शुरू करल जाए।
9: जैसे गांव की महिलाएं हैं तो उनको आता बहुत कुछ है लेकिन वो रोजगार से उनका संबंध नहीं हो पाता, मतलब रोजगार मिल नहीं पाता। तो इससे क्या होता है, समूह से आप इकट्ठा होंगे, किसी कोई महिला अचार पापड़ बनाने में पारंगत है, कोई सिलाई कढ़ाई में है, तो वो अपना एक समूह बनाती है।

0: या छोटी छोटी बचत करती हैं, तो इससे उनको जब भी जरूरत पड़ती है तो उनको आर्थिक लाभ उनको मिल जाता है। सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को आत्मविश्वास आता है कि हाँ अब हम भी सक्षम है आर्थिक रूप से और परिवार को संभालने में।
1: अच्छा, तो ईका सरकार से भी जुड़ल रहेला?
0: जी, सरकार इसमें बहुत मदद कर रही है। सरकार की इसमें आजीविका ग्रामीण मिशन, बहुत सारी इसमें सरकार की सरकारी योजनाएं चलाई हैं। इसमें आपको वो प्रशिक्षण भी देंगे, बैंक से जरूरत पड़ने पे बैंक से लोन भी देंगे। सरकार की बहुत सारी सुविधाएं इसमें चल रही हैं।
1: अच्छा, आप तो बहुत बहनी लोगन से जुड़त हैं और स्वयं सहायता समूह चलवावत भी हैं, प्रशिक्षण भी देत हैं, तो का कोनो ऐसन बात आप श्रोता बहनी लोगन के बताएं कि केहू महिला आपसे जुड़ल हो ए तरह से, या जुड़े में इच्छुक भइल हो, या ओकरे प्रेरणा से और लोग भी जुड़ल हो?
0: हाँ, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें महिलाएं जब आती हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, या हमसे हो पाएगा या नहीं। लेकिन जब ट्रेनिंग दिया जाता है या उनको किसी भी चीज का प्रशिक्षण दिया जाता है, आती हैं तो एक दूसरे को देखकर उनको लगता है कि नहीं हम कर पाएंगे, और सीखते सीखते उनको अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि हम अब आगे खुद भी करेंगे और दूसरों महिलाओं को भी, मतलब हमें देखकर एक सबक मिलेगा कि नहीं हम अपना और अपने परिवार के लिए आगे कुछ अच्छा करेंगे। जी,
1: अच्छा, जो आप महिला का बात बतावत रहलीन हा, उनके बारे में बताएं बहनी
0: हमारे
1: लोगों के।
0: हम जब प्रशिक्षण दे रहे थे हर्बल साबुन शैम्पू का निर्माण का, तो उसमें से एक महिला थी जो समूह से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि जब मैं आई ये काम समूह में जुड़ी तो मेरे घर वाले उतना महत्व नहीं दे रहे थे मुझे कि चलो कुछ कर रही होगी। बाद में मेरे परिवार को बैंक लोन की जरूरत पड़ी तो मेरे पति गए, नहीं उनको मिल पाया बैंक से लोन, ससुर जी गया उनको नहीं मिल पाया। फिर मैं समूह से जुड़ी थी तो मैंने इसका जिक्र किया तो समूह के जरिए मुझे वो लोन बड़ी आसानी से मिल गई। तो मेरे घर वालों ने इस समूह के महत्व को समझा और उनको लगा कि नहीं अब ये काम अच्छा कर रही है और इसे और भी महिलाओं को जुड़ना चाहिए। तो मुझे देखकर गांव की अगल बगल की और महिलाएं भी प्रेरित हुई और उन्हें वो भी समूह से जुड़ी और अपने परिवार को आर्थिक सहयोग दे रही हैं।
1: अच्छा, कोने कोने तरह का रोजगार मन प्रशिक्षण दिया जाला?
0: मैं आप जैसे जो भी कुछ महिलाएं अचार बना रही हैं, कुछ पशु पालन कर रही हैं, कुछ सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, कुछ जैसे जिनको ब्यूटी पार्लर हो गया, वो लोग जिनको जिनके अंदर जो भी अभी जैसे कि हर्बल साबुन शैम्पू या मंदिरों से जो फूल मिलते हैं उससे अगरबत्ती धूप हवन कप इत्यादि कैसे बनाए, इन सब का प्रशिक्षण दिया जाता है। और इन सब का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आप ये सब कर सकती हैं, अपने अपने लिए भी रोजगार, आपके लिए भी और घर परिवार दूसरों को भी आप रोजगार दे सकती हैं। और समूह का आपका ये भी फायदा है कि आप कई महिलाओं को अगल बगल इकट्ठा करके आप एक छोटी उद्यमी बन सकती हैं।
1: अच्छा, तो पैसा कैसे मन फायदा उन लोगों के कैसे दिहल जाला, ये बात तनी बहनी लोगों की फरिया?
0: इसमें आपको अगर समूह से जुड़ेंगी तो आपको कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा और आपको बैंक से भी मतलब जोड़ा जाएगा, आपको समय समय पे ग्राम प्रधान हो गए, अधिकारी हो गए ब्लॉक लेवल पे, और बैंक के जो अधिकारी हो गए वो आपको प्रशिक्षण देंगे, और जो भी आप छोटा छोटा जो पैसे इकट्ठा करी हैं उसको कैसे उपयोग में लाया जाए, तो ये सब प्रशिक्षण के बाद आप एकदम निपुण हो जाती हैं।
1: अच्छा, जैसे मान ली सब बहनी लोगों ने इकट्ठा कर ली पैसा, कुछ लोन भी ले ली हल गई सरकार की तरफ से, तो जब बाजारे में वो सामान बिकेला या ओकर जो फायदा आवेला, तो का जितना बहनी लोगन जुड़ल है इन सबके बराबर बराबर बांट दिहल जाला कि कैसे ओकर विभाजन होला, ई जानल
0: चाहिए? उसमें देखा जाता है कि महिलाएं मतलब किसका कितना सहयोग है, कितना जैसे कि कुछ जगहों पे होता है कि घंटे के हिसाब से देते हैं।
1: अच्छा,
0: कि इस महिला ने एक घंटे में इतने अचार पापड़ या इतने साबुन बनाए, या कुछ जगह पीस के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि एक घंटे में 50 या 60 साबुन बनाए, जैसे हमने साबुन का प्रशिक्षण दे दिया, उनको बता दिया कि ऐसे से साबुन बनता है, फिर वो समूह में गई, वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेकर फिर वो दूसरी जगह गई, अपने समूह में गई, वहां पे लोगों को बताया और सबको ट्रेनिंग दिया। अब उसके बाद वो अपने अपने नाम से अपने ब्रांडिंग के अनुसार वो अब उसको चला रही हैं, तो उसमें अब वो लीडर बन गई, वो ट्रेनिंग ली और लीडर बन गई, और वहां पे वो अब उनके अंडर में कि एक घंटे में महिलाएं कितना साबुन बना रही हैं, क्योंकि कुछ लोग को पसंद आता है ये काम, कुछ लोग नहीं कर पाती, कोई अगर साबुन बनाने में अच्छा है तो कोई उसको पैकिंग करने में अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग के पैकिंग का उनको कितना देना है, या साबुन बनाया है एक घंटे में उन्होंने कितना पर पीस कितना बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग
1: तय करेला कि कितना के देवे के।
0: ये जो लीडर है वो कर सकती है।
1: अच्छा,
0: जो इसको आगे मतलब जो ट्रेनिंग लिया है या जिसको वो बनाया उस पोस्ट पे कर रही है कि हाँ मतलब आप चलो ये काम देख लो, या वो खुद

0: हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट का सामान भी कम है, इसमें आपका पैसा भी कम लगेगा, क्योंकि
1: अच्छा।
0: हर्बल, जैसे आपका हर्बल साबुन वगैरह बना रही है तो आपको नीम, तुलसी, गिलोय, ये सब घर पे उगा सकती हैं। अचार पापड़ सदियों से चला आ रहा है घर पे बनाने का, तो आप घर पे एक बार बना ली, सबसे बड़ा काम होता है मार्केटिंग का, तो उसके लिए भी आप कुछ समूह के महिलाओं को रख सकती हैं, तो इसमें आप घर बैठे कर सकती हैं। प्लस आपके महीने में एक या दो बार मीटिंग होगी, उसके लिए आपको जाना होगा, एक दो बार बैंक में जाना होगा।
1: अच्छा, तो उनके नियमित आय मिले ला, आय पर कैसन फर्क पड़े ला उनके? अच्छा,
0: इससे उनको जो छोटी छोटी बचत करती, तो जब भी उनको जरूरत पड़ता है उनको तो वो तुरंत मिल जाता है। प्लस
1: पैसा
0: बैंक,
1: मिल
0: हाँ सरकार ने भी इसमें जैसे बहुत सारी योजनाएं चलाई है, तो
1: जाए।
0: बैंक का लोन उनको आसानी से मिल, जिसको उनको कम किस्त देना पड़ेगा और उनको आसानी से लोन मिल जाता है।
1: अच्छा, आप तो काम करत हैं, इतना महिला लोगन से जुड़ल हैं, तो का बदलाव उमन आये उन लोगन में का महसूस कई? आप अपने स्तर से बहनी लोगन के तनी बताएं।
0: सबसे बड़ा बदलाव तो आया है कि महिलाओं को आत्मविश्वास आ जाता है, जो चूल्हे तक सीमित रहती है कि नहीं सिर्फ खाना बनाना है, किचन तक मुझे रहना है, वो अब खुद बाहर जाती हैं, बैंक जाती हैं, मीटिंग करती हैं, दूसरों को एक प्रेरित करती हैं, एक स्टोरी बनती है कि नहीं देखो जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और न केवल महिलाएं बल्कि उनको देखकर युवाएं लोग, मतलब युवा लोग भी काफी प्रेरित हो रहे हैं कि अरे जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं।
1: अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपके मन में कैसे ई आयल के हमके स्वयं सहायता समूह के बनावे के ह, और महिला लोगन के प्रशिक्षण देवे के ह?
0: बहुत सारी महिलाएं मतलब मिलती थी तो वो कहती थी कि मतलब मुझे ये सब चीज तो आता है, लेकिन बहुत मुझे घर के कामों में निपुण हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रही हूँ और परिवार को आर्थिक स्थिति में सहयोग नहीं दे पा रही हूँ। तो उनको उस तरह से मतलब उनको प्रशिक्षित किया जाता है, पहले तो कि आपके अंदर खुद आत्मविश्वास, आपके अंदर जो हुनर है उसके प्रति आपके आपके अंदर आत्मविश्वास हो कि नहीं मेरा हुनर ही मेरा पहचान है। कि जैसे अगर मुझे अचार बनाने कई तरह के आते हैं, जैसे कुछ महिलाएं थी हमारे समूह में, तो उन्होंने बोला कि मैं सोया का अचार बनाती हूँ, टमाटर का अचार बनाती हूँ या व्रत वाला अचार बनाती हूँ, तो कुछ लोगों के लिए बहुत नया था ये। तो हमने बोला कि ठीक है, जब आपका ये आपका हुनर है तो आप इसी से आगे बढ़िए, आपका यही हुनर आपकी पहचान बनेगा, मतलब रोजगार से स्वावलंबन तक मतलब। तो उनको लगा कि नहीं, पहले तो उसे मामूली समझते थे कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जब उन्हें ये चीज बतलाया गया कि नहीं आप जो बना रही हैं व्रत का अचार या कई तरह के पापड़ हो गए, तो वो उसी से आपके घर में रोजगार निकलेगा और आप आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी, अपने बच्चों को शिक्षा में आप सहयोग कर सकती हैं। तो ये चीज उनके उनको बहुत अच्छा लगा। कुछ महिलाएं थी जो कहती थी कि हम तो बस पशुपालन का काम अच्छे से करते हैं, तो हम कैसे करें, जैसे हम गाय रखे हैं अब उसके गोबर का यूज कैसे करें या दूध का, तो उनको भी बताया गया कि आजकल गोबर का जो यूज है उसको जो है कि हवन कप में हो गया और बाकी जो है कि शहरों में इसका काफी मतलब मांग है, तो आप पशुपालन से है तो उनको उस तरह से प्रशिक्षित किया गया कि आपके अंदर अगर पशुपालन के काम आप अच्छे से कर रही हैं तो आप उसी लाइन में आगे बढ़िए। तो ऐसे बहुत सारे महिलाएं थे जो बोले कि हम जैसे पापड़ अच्छा बनाते हैं या हम जो है कि साबुन हम अच्छा, कई तरह के साबुन हम अच्छा बनाते हैं, या कुछ महिलाएं बोले कि हमको सिलाई बहुत अच्छी आती है, तो उनको उस तरह से प्रशिक्षित किया गया। तो आज आज वही महिलाएं खुद मतलब बिना कहीं बाहर गए हुए घर की चीजों से अपना सामान बना रही हैं और उसको जगह जगह उसको सेल कर रही हैं और उनको आर्थिक स्थिति उनकी पहले से अच्छी हुई है।
1: बहुत अच्छी बात आप करत हैं, और ये बहुत अच्छा काम है कि आप घरे के भीतर से महिला लोगन के निकाल के बाहरे लिए लीन, उनके इतना मजबूत बनावत हैं। अच्छा, एक प्रश्न और हमरे मन में आवत है, आपका एक कुल चीज का कुल पढ़ाई पहले से कई लीन, पहले से सोचले रहलीन कि हम ये करब?
0: नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया।
1: अच्छा।
0: जैसे जैसे महिलाएं मिली तो मुझे लगा कि नहीं सब कुछ तो है, लेकिन उन अपने अंदर क्या हुनर है वो पहचान नहीं रही हैं। मैं एक संस्थान साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ बहुत सारी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो मैं एज ए ट्रेनर वहाँ पे गई थी, लेकिन फिर मिलते मिलते मुझे लगा कि नहीं, ये एक अच्छा मंच है महिलाओं को अपने हुनर से पहचान दिलाने का, कि आपका हुनर ही आपका पहचान है और उसी को लेकर आप मत भागिए बाजार की दौड़ में, मत भागिए कि हम नौकरी नहीं कर रहे हैं या हम कैसे हमको रोजगार मिलेगा, या मत अपने आप को कोसिए कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ और दिन भर चूल्हे चौके में। आप कुछ उसी चूल्हे चौके से आप अपने एक छोटी या एक बिजनेसमैन वुमेन बन सकती हैं।
1: और सही बात है इता, ईसन

0: काम है कि वो घरे संभाले के साथ साथ भी कर सकेली। अब बहुत निक लगत है आपसे मिलके, भी बहुत निक लगल। और जौन भी श्रोता बहनी लोगन आपके सुनत हैं एक कार्यक्रम के माध्यम से, वो लोग भी आपकी जानकारी से लाभ ली हैं और आगे आई हैं। अगर उनके अंदर ये प्रेरणा है कि हमके भी कुछ करे के है, कुछ करके आगे बढ़े के है, तो अच्छा चलत चलत श्रोता बहनी लोगन बदे आप कुछ संदेश देहल चाहब।
1: जी, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपने हुनर को पहचानिए कि आपके अंदर क्या हुनर है।
0: जी
1: कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप घर से रहकर बिना बाहर गए आप अपने घर को भी संभाल सकती हैं और अपने लिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के रोजगार की भी संभावना उनको दे सकती हैं। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को पहचानिए और अपने काम को पहचानिए।
0: बहुत निक लगल आपसे बात कही करके। प्रिया सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में लेन। अब बहनी लोगन के स्वयं सहायता समूह और रोजगार के विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे लेन, निक निक जानकारी दे लेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: लाली बहिन
0: हो,
2: देखा हो तू कितना निक का जौन की प्रिया सिंह से बतियालू है कि स्वयं सहायता समूह और रोजगार के अवसर ए विषय पर। अब बहिन लोगन खूब निक का जानकारी ले ले हुई हैं, आयकर लाभ भी उठाई हैं जानकारी लेके। तो पहले अब ये बतावा कि तू बहिन लोगन के गीत गौ नहीं का सुनवावत हो, कब्बे से जोहत हुई हैं।
0: मने तू ना जोहत हो ना, खाली
2: हम
0: बहिने लोग
2: है भाई।
0: तो जेठ का महीना का बात करत रहली है ना, तो घाम इतना जोर कहो था, यही से जुड़ा लिखे गीत तू लोगन के तोहरे संगे संगे बहनी लोगन के भी सुनवा दे।
2: सुनवा दा।

0: नीक रहल ना गीत।
1: अरे बड़ा नीक का गीत रहल हो कि हम तो झूमे लगली, हमके लगत था कि बहिन लोगन भी जरूर झूमे लगल हुई यानी गीत सुन के।
0: लेकिन मीठ मीठ गीत के बाद मीठ मीठी जो खाए वाला अनार ले ले हु हाथे में ना, तो काहे ले ले हु भाई एकर गुनो बता दा।
1: अरे देखा हो अनार तो इतना गुण से भरपूर भाई की पूछा मत। कि देखा पहले तो अनार भाई जेके भाई खून का कमी हो ना, आयरन का कमी अगर हो गल हा, और चाहे नहीं हो तो अनार का जे सेवन करी खाई, चाहे ओकर जूस बना के पीही, तो देखा उसे क्या होला कि खून का कमी दूर हो रहा।
0: एकरे संगे संगे ना ओके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे का गुण होला। कि भाई अगर अनार का सेवन करे मने ही ना, तो बराबर ओके बीमारी रोग से बचल रही
1: एकदम अजानत हो। दूसर बात ना कि ये पाचन सुधार में भी बहुत सहायक होला हो।
0: लेकिन जानत हो मीना, पाचन सुधार में सहायक होला एकर जूस बना के मत पिया, अगर ऐसे दाना एकर खाए हाँ, चबा के हाँ,
1: तो बहुत फाइबर इमन जो होला ना भाई बहुत बढ़िया रहे। देखा साथे साथे त्वचा और बाल भी अपन जो है ना कि बढ़िया रहला। अनार का अगर जे सेवन करत है ना तो ओकर बाल बढ़िया रही, और जो चेहरा है वो अपने आप ही चमके लगी।
0: माने जैसे अनार का दाना चमकेला वैसे बहनी लोगन भी चमके लगी हैं। तो भाई कौने बात का देरी है, रोज अपने अनार अपने भोजन में मीठे फल उनके सेवन करे के चाहिए। भोजन के बाद चाहे भोजन के पहले जौन भी मौसमी फल होकर सेवन करे, स्वस्थ रहे। हाँ अस्वस्थ रहे का बात कर रही थी, तो देखा धूप का बात कह लिया हमन, तो धूप में भी अगर बच के न रहिए तो स्वस्थ न रहिए, डॉक्टर जाए।
1: एकदम सही बात कर तू, देखा जोन मौसम चलत है ना, तो भाई ऐसा भी ध्यान रखे कि घामे से आदमी आवत हो तो बड़ी तेज तरास लगल रहे थे। लेकिन हम तो ये कहा कि 2 मिनट पहले छहाय के तब पानी पिए।
0: चश्मा भाई नहीं लगा के चले, लाज शर्म के छोड़ दे ना, सोचे कि भैया हम चश्मा लगा के चलो तो केहू का करी, धूपे वाला चश्मा निकल लगाए के निकले बहन।
1: एकदम सही बात करो तो वो लाली बहन।
0: और देखा बतियाई ना, तो बतियावे में समय बीतल जाई पता न चली, लेकिन घड़ी बीच में आके कह था कि अब चले का बेरा होता। हाँ तो चला बहनी लोगन से विदा लिहल जाए, कहल जाए नमस्ते।

ग्रामीण महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम मंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत। इस कार्यक्रम में कलाकार हैं राजकुमार तिवारी। पहले सुनिए इनकी गाई पूर्वी।

दादरा अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे राजकुमार तिवारी। इसके साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद 2:15 पर होंगे दोपहर समाचार। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: This Republican Senator Lindsey Graham called for a complete re-evaluation of Pakistan's role as a mediator to end the U.S.-Iran war that broke out on the 28th of February and has been put on pause since the 8th of April. British Prime Minister Keir Starmer is facing mounting pressure from within his own Labour Party. More than 60 Labour MPs are reportedly urging him to set a timetable for stepping down. The demand follows the party's poor performance in recent local elections across England and Wales. According to media reports, several Labour lawmakers have privately and publicly called for a change in leadership amid fears that Prime Minister Starmer's leadership could hurt the party's prospects ahead of the next general election. Responding to the calls to quit, the UK Prime Minister pledged that he would prove his doubters wrong. Mr. Starmer said this while giving a speech in London. Back home, benchmark domestic equity indices declined around 1.4% in the afternoon session today. The Sensex plunged 1,048 points to 74,967, while the Nifty shed 305 points to 23,511 when reports last came in. The broader market at the National Stock Exchange also declined. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave conditions at isolated places over Gujarat, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rajasthan and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has issued an orange-coloured warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya and also predicted heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim tomorrow. Bihar and Uttarakhand are also likely to witness thunder squall with wind speed reaching up to 60 kilometres per hour tomorrow. Meanwhile, warm night conditions are expected to prevail at isolated places over Rajasthan throughout this week. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NEET exam for admission to undergraduate medical education cancelled over paper leak allegations, CBI probe ordered. Hemanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term. CBI takes over probe into murder of West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari's aide, Chandranath Roth. President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण

0: प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत विश्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार

0: पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर और नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को

0: नॉर्वे पहुंचेंगे, वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाने तराने।
3: सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस कार्यक्रम में उन सुहाने तरानों की बात कर रहे हैं जो अपनी मधुरता और विविधता के कारण आज भी लोकप्रिय हैं।

सौ जन्मों का सुख एक जन्म जो साथ मेरे हमराही हो, सौ जन्मों का सुख एक जन्म जो साथ मेरे हमराही हो। दिल पर लिख दूं दिल की बातें, गर चाहत वाली स्याही हो।

मोहब्बत ही क्या जो दिल की बातें लफ्जों में बयां की जाएं, वो मोहब्बत ही क्या जो दिल की बातें लफ्जों में बयां की जाएं। आशिकी का मजा तो तब आए जब खामोशी से मेरे दिल की बात तेरे दिल में उतर जाए।

इसी गीत के साथ सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मिलूंगी आपसे फिर और कुछ सुहाने तरानों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाने तराने।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।

0: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @AIR वाराणसी। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। डीटीएच, डीआरएम, वेब्स, ओटीटी और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बांग्ला लोकगीत। कलाकार हैं संजीत मंडल।

धरती के गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बांग्ला लोकगीत, कलाकार थे संजीत मंडल। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: पर नए हो तो ज्यादा ऊंची उड़ान ठीक नहीं, शक्ल अच्छी हो पर हो कड़वी जबान ठीक नहीं। यहीं रह जाएगी ये दौलत, ये रुतबा, ये रसूख, घर किराए का हो तो इतना सामान ठीक नहीं।
1: वाह, बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे सच कहूँ ना दोस्तों, तो हम इंसानों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि हम बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पे गुरूर करने लग जाते हैं।
0: लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमको इसे पॉजिटिव तौर पर लेना होगा। हमें गुरूर तो होना चाहिए, लेकिन अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर, अपने काम पर और अपनी ईमानदारी पर।
1: ईमानदारी का अभाव ना दोस्तों हमारे अंदर ठहराव डाल देता है, तो हमें अश्योर करना चाहिए कि हम जो भी काम करें वो ईमानदारी से करें।
0: और फिर ईमानदारी के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो वो इबादत समझ के करें, और फिर हमें इसी में बरकत और सुकून दोनों मिलेगा।
1: क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि खुदा भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता है।
0: और फिर जब उसकी मदद आती है तो आपका काम भी बोलता है, और जब काम बोलने लगे तो नाम तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन इस नाम और काम की हेरा फेरी में हमारा तारुफ नहीं किया आपने। तो मेरे डिजिटल इरा की डिजी वॉरियर्स, आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अतरंगी साथी तैयबा मारूफ,
1: और इसी साथ को निभाने मैं भी हाजिर हूँ आपकी दोस्त अपराजिता। तो स्वीकार कीजिए अपनी दो साथियों को और स्वीकार कीजिए इसी के साथ हमारा सादर सप्रेम नमस्कार।
0: तो देखा ना दोस्तों, आज मैं अपने साथ साथ अपने उस साथी को लाई हूँ जिसे कोई ना पराजित नहीं कर सकता, इसीलिए तो इसका नाम है अपराजिता। वैसे ये बताओ, तुम्हारा नाम रखा किसने?
1: ये नाम तो मेरी मम्मी ने रखा है।
0: ओहो, यानी दोस्तों मुझे लगता है ना, बचपन में जब इसको कोई अपनी जिद पूरी करवानी रहती होगी तो ये ना अपने घर वालों से रो रोकर अपनी जिद पूरी करवाती रही होगी, तभी इसके पेरेंट्स ने हार मानकर इसका नाम अपराजिता रख दिया होगा, है ना?
1: कर लो मजाक, तुम बताती हूँ तुम्हें।
0: देख रहे हैं ना दोस्तों, अगर आज हमारी नोकझोंक में मैं कमजोर पड़ी तो समझ लीजिएगा कि मेरा पाला ना अपराजिता से पड़ा है। लेकिन ऐसी नौबत ना आए इसके लिए ना मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है, वो बताऊं मैं दोस्तों? मैं ना इसकी पसंद का एक गीत सुना देती हूँ जिससे कि इसका गुस्सा इसकी नाक से बिल्कुल फुर्र हो जाएगा।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है

0: उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
1: ओ
3: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ
3: 0542227658।
4: तो दोस्तों, गुस्से गर्मी वाले माहौल को थोड़ा कम करके अब वापस से हम अपने टॉपिक पर आते हैं और पूछते हैं अपनी दोस्त से कि इस बार की गर्मी के मौसम में क्या तुमने कुछ नोटिस किया नया?
5: तुम किस बारे में बात कर रही हो देवा?
4: यही कि इस बार ना ऊपर वाले ने सोच लिया है कि एक साथ ही हमें सारे मौसम की सैर कराकर ही मानेंगे।
5: हाँ, ये तो सही कहा तुमने। कभी एक्सट्रीम हीट हो जाती है, कभी अचानक बारिश होने लग जाती है।
4: यानी जहाँ हम कहते थे कि मौसम से तेज तो इंसान रंग बदलती है, लेकिन अब इसका उल्टा बोलना पड़ेगा कि इंसान से तेज तो मौसम ही रंग बदल रहा है। यानी ऐसी पलटी मार रहा है कि बस एक ही दिन में अलग अलग जगहों की सैर हो जा रही है।
5: सच में, लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि पहले से मौसम का पैटर्न पूरी तरह से बदलता जा रहा है।
4: लेकिन मेरे दोस्तों, ये विषय ना वाकई गंभीर है और हमें इस क्लाइमेट चेंज का कारण समझना होगा, जिसमें से सबसे पहले हमें पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा जो रीजन होता है वो हमारे प्लांट्स की कमी ही है।
5: ये बात तो तुमने सही कही। एक्सपर्ट्स भी तो कहते हैं कि ग्रीनरी कम होने से डायरेक्टली क्लाइमेट पर इसका असर पड़ता है, और अब तो हमें ये महसूस भी होने लग गया है।
4: मतलब सीधी सी बात है कि जब पेड़ पौधे कम होंगे या हरे भरे नहीं होंगे तो एनवायरमेंट के साथ साथ हम सब के जीवन पर इसका असर दिखेगा ही।
5: दोस्तों, वैसे प्लांट्स और उनकी हेल्थ तो हमारे लिए हर रोज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज के दिन स्पेशली प्लांट्स के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, जो हर साल 12 मई को मनाया जाता है।
4: बिल्कुल दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि पौधे सिर्फ हरियाली ही नहीं देते बल्कि पूरी दुनिया के जीवन का आधार भी हैं। फूड, ऑक्सीजन से लेकर मेडिसिन और क्लाइमेट बैलेंस प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं।
5: लेकिन सोचने वाली बात तो ये है ना कि जब ये पौधे ही अनहेल्दी हो जाएंगे तो इंसान और एनवायरनमेंट पर इस पर कितना बड़ा असर दिखेगा।
4: दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने प्लांट हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझते हुए ही आज के दिन को, यानी 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ डिक्लेयर किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना हेल्दी प्लांट्स को लेकर, उसकी हेल्दी लाइफ को लेकर, कि ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं।
5: बिल्कुल दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्लांट डिजीजेस की वजह से क्रॉप्स डेंजर में चली जाती हैं, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी पर डायरेक्ट फर्क पड़ता है।
4: तो दोस्तों, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये भी बताया गया है कि दुनिया का लगभग 80% फूड जो है हमारा प्लांट से आता है। मतलब ये हुआ कि अगर पौधे ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो फूड क्राइसिस तो होगी ही।
5: एग्जैक्टली, इसीलिए दोस्तों साइंटिस्ट और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स भी हमें इको फ्रेंडली मेथड्स पर जोर देने को कहते हैं,
4: जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना और नए नए पौधे लगाना।
5: कई बार हम ना अननोइंगली इन्फेक्टेड प्लांट्स या सीड्स घर लेते आते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे क्या होता है कि बीमारी ट्रांसफर होने लगती है प्लांट्स।
4: इसीलिए तो सर्टिफाइड सीड्स और हेल्दी प्लांट्स का ही यूज करना चाहिए। साथ ही गार्डनिंग और फार्मिंग में क्लीनलीनेस, यानी कि जो हमारी साफ सफाई है, इसको मेंटेन करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
5: इसके लिए ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें और अपने साथियों को भी जागरूक करें। और आजकल तो सोशल मीडिया भी एक पावरफुल मीडियम बन गया है अवेयरनेस फैलाने का, क्यों तैयब?
4: बिल्कुल।
5: तो दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हमें यही मैसेज देता है कि हेल्दी प्लांट्स लीड्स टू अ हेल्दी प्लैनेट।
4: तो आइए इस दिन हम सब मिलकर नेचर को प्रोटेक्ट करने का संकल्प लें और पौधों की सुरक्षा को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाएं। तो अपराजिता, ये तो बात हो गई हमारी मोरल ड्यूटी की, अब जरा एंटरटेनमेंट ड्यूटी की भी बात कर ली जाए।
5: हाँ, बिल्कुल,
4: वरना हमारे दोस्त कहेंगे कि कितना बोलती हैं ये सब, जब शुरू हो जाती हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। इतनी बात, इतनी बात, इतनी बात, हाय रब्बा, काश हमारे पास कोई ऐसा रिमोट होता कि इधर क्लिक करते और इनका वॉल्यूम ऑफ हो जाता।
5: पर कोई नहीं साथियों, हम आपको ऐसा मौका ही नहीं देंगे और समय समय पर अपनी बातों ही बातों में कुछ गीत का तड़का भी लगाते रहेंगे।
4: तभी तो आप हमारी बातें और ज्यादा ही पेशेंस और तवज्जो के साथ सुनेंगे।

0: दोस्तों, हमारा देश ना यानी भारत कई प्रकार की संस्कृतियों, लोक कलाओं और जनजातीय परंपराओं का देश रहा है। इन्हीं रंगों में से एक रंग है राजस्थान की प्रसिद्ध कलबेलिया जनजाति और उसका मनमोहक लोक नृत्य, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे।
1: बिल्कुल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध घुमंतू जनजाति है।
0: दोस्तों, इनका पारंपरिक व्यवसाय अगर देखा जाए ना, तो ये उस टाइम पर सांप पकड़ना, सांप के विष का व्यापार करना और सर्पदंश का उपचार करना करते थे। लेकिन आज भी अपनी संस्कृति को संगीत और नृत्य के माध्यम से जीवित रखे हुए हैं। कालबेलिया की सबसे अधिक आबादी की अगर बात करें तो ये राजस्थान के पाली जिले में पाई जाती है, और उसके बाद फिर हम इसे अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में देख सकते हैं।
1: इन्हें इनके पारंपरिक व्यवसाय की वजह से सपेरा, सपेला जोगी या जागी भी कहा जाता है। और इनके लोक नृत्य, गीत और वेशभूषा में भी आपको सांपों से जुड़ी झलक स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। कालबेलिया लोग सांपों को पूजनीय मानते हैं और उनकी हत्या को निषिद्ध समझते हैं।
0: इसके साथ ही दोस्तों, जो इनका नृत्य होता है वो हमारे राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक होता है।
1: कालबेलिया नृत्य की लोकप्रियता का अंदाज़ा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था।
0: दोस्तों, ये समाज आमतौर पर गांव के बाहरी हिस्सों में अपने अस्थायी डेरे बनाकर रहता है, और इन्हें जड़ी बूटियों और पारंपरिक उपचारों का भी अच्छा ज्ञान होता है।
1: तो दोस्तों, कालबेलिया जनजाति एक ऐसा समुदाय है जो भारत की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपरा और कला का एक जीवंत उदाहरण है।
0: और अपराजिता, इनके मनोरंजन का दूसरा उदाहरण तो है हमारी युववाणी। तो युववाणी की इस कड़ी में हम अपने दोस्तों को सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत।

0: चलिए दोस्तों, अब जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं हमारे आज के यूथ डायरी के शब्द, जिसमें हमारा आज का जो पहला शब्द है वो हिंदी शब्द है परिकल्पित, जिसका मतलब होता है कल्पना किया हुआ या फिर सोचा हुआ। और इसका वाक्य प्रयोग करें तो हम कुछ इस तरह कह सकते हैं, एक परिकल्पित संरचना किसी भी सफल परियोजना की मूल आधारशिला मानी जाती है।
1: एंड टुडेज इंग्लिश वर्ड इज लैकोनिक, विच मीन्स ब्रीफ और कंसाइज, यानी संक्षिप्त, एंड इट्स स्पेलिंग इज LACONIC। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन कुड बी अ लैकोनिक अप्रोच टू डिस्कशन एलिमिनेट्स अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ हमने जान लिए आज के अपने दो शब्द, परिकल्पित और लैकनिक। तो मेरे ज्ञानी विज्ञानी दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि घड़ी के कांटों को ना थोड़ा पीछे की तरफ घुमाया जाए और ले चला जाए आपको वर्तमान से अतीत की तरफ।
1: बिल्कुल। तो सबसे पहले बात वर्ष 1899 की, जब आज ही के दिन रूस में यूजीन पीटरसन का जन्म हुआ था, जिन्हें दुनिया की पहली विदेशी योग गुरु माना जाता है।
0: और अब नजर उड़ने उड़ाने पर की जाए तो ले चलते हैं आपको वर्ष 1926 में, जहां आज ही के दिन नॉर्थ पोल के ऊपर से पहली उड़ान भरी।

0: की थी। और दोस्तों आपको बताते चलें कि ये उड़ान ना नोर्स नामक विमान से भरी गई थी। और अब अगली जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे डीजी वॉरियर्स को ही समर्पित है।
1: वो इसलिए क्योंकि 1941 में आज ही के दिन दुनिया के पहले पूरी तरह से स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर Z3 को बर्लिन में पहली बार वैज्ञानिकों के सामने लॉन्च किया गया था।
0: और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं जब अपने दोस्तों से मिलने आया करूंगी ना, तो मैं आपको भी डीजी वॉरियर के नाम से ही बुलाऊंगी।
1: अच्छा, और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये भी जान लेते हैं कि 1459 में आज ही के दिन जोधपुर, जिसे नीले नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना हुई थी।
0: और वर्ष 2017 में आज ही के दिन अहमदाबाद में पहले एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था, जिससे हम हवा की गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई हमारे आज के दिन के इतिहास से जुड़ी कुछ खास खास घटनाओं की। अब अपराजिता, क्यों ना बात जरा मनोरंजन की हो जाए तो कैसा रहेगा?
1: कैसा रहेगा, तुम ये कहो कि सोने पर सुहागा रहेगा।

0: तो दोस्तों अब बात हमारे परिश्रमी युवा साथियों के काम की खबर यानी रोजगार सूचना की। तो हमारी रोजगार सूचना है कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की तरफ से, जिसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी पदों की वैकेंसी के लिए अधिसूचना जारी की हुई है। और आपको बता दें कि ये भर्ती दोस्तों 731 पदों के लिए की जानी है, जिसके लिए आवेदन फॉर्म जो है वो भरने शुरू भी हो चुके हैं
1: और उम्मीदवार 15 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 27 से 30 वर्ष पदों के अनुसार है, जो 1 अगस्त 2026 तक मान्य होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: इसी के साथ अपराजिता, अब बारी है कि हम अपने विनर्स को भी विजिट कर लें, आखिर उन्हें भी तो हमारा इंतजार रहता है। तो
1: हाँ,
0: हम बिना
1: बिल्कुल।
0: किसी देर के अपने उन दोस्तों का नाम अनाउंस करते हैं जिन्होंने हमारे कल के सवाल का सही सही जवाब देकर विनर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है।
1: लेकिन उससे पहले एक बार कल के सवाल पर नजर डाल लें और ये जान लें कि हमारा कल का सवाल आपसे क्या था। तो दोस्तों, कल हमने आपसे पूछा था कि 3 अक्टूबर 1957 को स्थापित आकाशवाणी के विविध भारती चैनल के उद्घाटन दिवस पर प्रसारित होने वाला पहला गीत कौन सा था, जिसका सही जवाब है नाच रे मयूरा।
0: और जिन साथियों ने इसका जवाब दिया है उनके नाम है चंदा चंदौली से और जिला खंडवा मध्य प्रदेश MP से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना, दिव्यांश, सूरज, सूरज कुमार ढाक से। इन लोगों ने हमें सही सही जवाब दिया है। तुम अपनी युववाणी की तरफ से आप सभी दोस्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और ढेर सारी बधाइयां भेजते हैं।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न भी सुनते चलिए। आज हमारा आपसे प्रश्न है कि किस रेडियो स्टेशन का नाम सबसे पहले आकाशवाणी रखा गया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस रेडियो स्टेशन का नाम सबसे पहले आकाशवाणी रखा गया था।
0: तो भेजिए फटाफट से अपने उत्तर हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल youth.eir वाराणसी पर, या फिर हमें मेल कीजिए youth.eirvns@gmail.com पर। और जब तक आप अपने आंसर्स हमें भेज रहे हैं, हम समर्पित करते हैं अपने विनर्स को ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आपका यही साथ, आपकी लगन, आपका जज्बा और आपका ये अपनापन हमारे लिए भी जरूरी है। तभी तो हम आगामी 8 जून यानी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने का अवसर मना पाएंगे। वो 90 साल यानी 9 दशकों का सफर, यादों का सफर, जज्बातों का सफर, आपके भरोसे का सफर।
1: कभी सुबह की शुरुआत भजनों से हुई, कभी खेतों में काम करते किसानों ने रेडियो पर मौसम और खेती की बातें सुनी,
0: तो कभी स्टूडेंट्स ने एग्जाम प्रिपरेशन के प्रोग्राम से सीखा, तो कभी जवानों ने देशभक्ति गीतों के माध्यम से अपने हौसले बुलंद किए।
1: यानी आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं रहा, ये हर घर की एक आवाज़ बन गया। एक ऐसी आवाज़ जो बिना दिखे भी दिल तक पहुंच जाती थी।
0: ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर क्रिकेट की कमेंट्री हो या फिर रात के सुकून भरे गीत, हर पल में आकाशवाणी का साथ रहा।
1: और सच कहें दोस्तों, तो रेडियो से जो एक रिश्ता होता है वो एक अलग ही रिश्ता होता है। आज भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, पॉडकास्ट और रील्स का ज़माना आ जाए, लेकिन रेडियो की वो गर्माहट, वो अपनापन आज भी दिल को छू लेता है।
0: यानी आकाशवाणी ने सिर्फ प्रोग्राम्स नहीं दिए बल्कि देश की संस्कृति, भाषा, कला और साहित्य को एक पहचान भी दी। गाँव से शहर तक हर बोली को सम्मान दिया।
1: तो आइए दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हम सब मिलकर उन अनजानी आवाज़ों को धन्यवाद कहें जिन्हें हमने शायद कभी देखा ही नहीं, लेकिन अपनापन हमेशा महसूस किया। तैयबा, पता है आजकल एक बात मेरे जहन में आ रही है जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ और तुम्हारे साथ शेयर करनी चाहिए।
0: हाँ, बोलो।
1: पता है आजकल बर्थडेज़ हो, एनिवर्सरीज़ हो या कोई भी जैसे स्पेशल ओकेज़न हो, तो लोग आजकल एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने के बजाय प्लांट्स गिफ्ट करना प्रेफर कर रहे हैं।
0: और सच कहूँ ना, ये ट्रेंड ना सिर्फ यूनिक ही नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही हेल्दी और मीनिंगफुल भी है। एक प्लांट जो सिर्फ गिफ्ट नहीं होता, वो एक केयर पॉजिटिविटी का सिंबल माना जाता है।
1: एग्जैक्टली, और शायद इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों से ना सोसाइटी में एक बड़ा चेंज आ सकता है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं ना कि पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को सॉल्व करना सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी
0: है, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। चेंज हमारी डेली हैबिट से ही शुरू होता है। अगर हम इंसान ना बस एक पौधा लगाए और उसकी जिम्मेदारी समझे, तो इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है।
1: सही कहा, क्योंकि सोशल मीडिया पर सेव इन्वायरमेंट ही लिख देने से हमारा नेचर सेफ नहीं रहेगा, उसके लिए हमें ग्राउंड लेवल पर भी एफर्ट्स दिखाने होंगे।
0: और एफर्ट ऐसा जो कि सिर्फ एक दिन का ना हो। तो चलिए, आज एक प्रॉमिस करते हैं कि सिर्फ एक पौधा लगा

0: रहेंगे ही नहीं बल्कि उसका सहारा बनेंगे और उसको संभालेंगे भी। तो इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ दोस्तों अब वक्त हो गया है कि हम अपनी बातों पर ज़रा विराम लगाएं,
1: और जाते जाते हर बार की तरह आपकी दोस्त सहेबा यही गुजारिश करेगी मेरे दोस्तों की, ख्याल रखिएगा अपना, अपनों का और अपने आसपास के लोगों का भी।
0: बिल्कुल, और वक्त का ख्याल करते हुए अब दीजिए इजाज़त मुझे यानी अपना जिता
1: और तैयबा को।
0: नमस्कार, जय हिंद।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार जो रिले होंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए शिक्षा में मेडिकल दाखिला बदे 3 मई के भइल नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कैले के फैसला लेले हो। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी कहले हवे कि ई फैसला विद्यार्थियन के हित आ राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में भरोसा के ध्यान में रखत लिहल गइल बा।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले गुजरात में भइल एगो जनसभा के जरिए पश्चिम एशिया संकट के पीछे विदेशी मुद्रा के बचत बदे देशवासियन से ईंधन बचौले आ विदेशी उत्पादन के उपयोग कम कैले का आग्रह कैले।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 के संबोधित कैले। ए मौका पर वहां के कहले कि जहां कई देशन के पछिला कुछ महीना में आसमान छुअत दाम आ ईंधन के कमी के सामना करे के परल हो, वहीं भारत घरेलू कीमत के अपेक्षाकृत स्थिर रखले में कामयाब रहल बा।
3: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: प्रदेश के महोबा जिला में समाजवादी पार्टी का सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामला में प्राथमिकी दर्ज कैल गैल हो। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप के शिकायत पर महोबा कोतवाली पुलिस थाना में ई मामला दर्ज कैल गैल बा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनावल जा रहा हो। ए मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

0: एगो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नर्सिंग कर्मियन के शुभकामना दिले हमें। वहाँ के कहले हैं कि सेवा संवेदना आ समर्पण क सजीव प्रतिमूर्ति नर्स स्वास्थ्य व्यवस्था क मजबूत नेई हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रदेश के अलग अलग जिलन में कई गो आयोजन कैल जा रहा बा। यही कड़ी में गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उत्कृष्ट योगदान देवे आले नर्सिंग कर्मियन के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव आ सीएमओ डॉक्टर राजेश झा आज सम्मानित कैलें। यह मौका पर महापौर कहलें कि नर्सिंग कर्मी स्वास्थ्य सेवा का रीढ़ हम हैं।
1: और मैं समझता हूं कि इन सब कड़ियों में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण है तो वो नर्सिंग का प्रोफेशन है। वजह उसकी ये है कि आपका सबसे पहला एनकाउंटर जो है वो आपके नर्सिंग स्टाफ से ही होता है, और कितने बेहतर तरीके

0: योगदान देवयाले नर्सिंग कर्मियन के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव आ सीएमओ डॉक्टर राजेश झा आज सम्मानित कैलें। ए मौका पर महापौर कहलें कि नर्सिंग कर्मी स्वास्थ्य सेवा का रीढ़ हम हैं।
1: और मैं समझता हूँ कि इन सब कड़ियों में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण है तो वो नर्सिंग का प्रोफेशन है। वजह उसकी ये है कि आपका सबसे पहला एनकाउंटर जो है वो आपके नर्सिंग स्टाफ से ही होता है, और कितने बेहतर तरीके से जो है आप उसको काउंसिल करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन दैट कि आप उसको केवल दवा लिखते हैं।
0: मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी जिलन में आज हुआ बिहने कहीं कहीं बरखा और गरज चमक के साथे बौछार पड़ले का संभावना जतौले हो। विभाग एही इलाकन में बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेयार चलने का आज खातिर ऑरेंज अलर्ट वहीं बिहने खातिर येलो अलर्ट जारी कैले बा। विभाग के मुताबिक पूर्वी जिलन के तराई वाले इलाकन में आज कहीं कहीं ओलो पड़ले का अनेसा बा। ई समाचार बुलेटिन हमने के यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी मौजूद हो। एकरे सतही भोजपुरी समाचारन के बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर एक नजर। खेल दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे विदुषी किशोरी अमोनकर का गायन। किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर, जिसमें मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक विधि विषय पर डॉक्टर योगेश कुमार यादव और सतीश कुमार यादव की बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही राजकुमार तिवारी के गाए लोकगीत भी सुने जा सकेंगे। गैर फिल्मी गीतों एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन प्रसारित होगा रात 9:30 पर।

रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल। फिल्म संगीत श्रोता सुन सकेंगे अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर शाम 7 बजे, 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में और रात्रि 8:15 पर रस माधुरी में। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर एक नज़र। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में सुनिएगा पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन रात्रि 10:30 पर और अक्षत प्रताप सिंह का गायन सुबह 7:31 और दिन में 12:45 पर। सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में राइजोबियम कल्चर एवं इसकी उपयोगिता विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुनिएगा सुबह 6:10 पर और विचार बिंदु 6:30 पर। सुबह 6:35 पर गर्मी के मौसम में होने वाले रोग और होम्योपैथिक उपचार विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ आप सुन सकेंगे सुबह 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह 7 बजे और मधुरिमा 8:45 पर। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुन सकेंगे दिन में 11 बजे से। महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी दिन में 1:15 पर, जिसमें अन्य कार्यक्रमों के अलावा होगा गीत संगीत, सेहत ज्ञान और गृहलक्ष्मी टिप्स। युवा साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम

0: होगा शाम 5:15 पर, जिसमें कल के आकर्षण होंगे आज की बात, मार्गदर्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर, जिसमें अन्य कार्यक्रमों के अलावा डॉक्टर सुधीर सिंह जिसमें अन्य कार्यक्रमों के अलावा रामनाथ और साथियों के गाए लोकगीत आप सुन सकेंगे। शाम 7:00 अंग्रेजी कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर सुप्रिया सिंह की टॉक, फैमिली द फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यूज। रात 8:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी रूमी दत्ता। गैर फिल्मी गीतों एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन होगा रात 9:30 पर। दिनेश भारती के लिखे नाटक तस्वीर का प्रसारण होगा रात 10:00। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर वी के श्रीवास्तव। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत, लेकिन पहले ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।

अंदाज अपना अपना इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे विक्की मेहता, बहरोज चटर्जी और साथियों की आवाज़ों में। और अब अगला गीत फिल्म एक्शन रिप्ले से, आवाज़ें हैं दलेर मेहंदी और ऋचा शर्मा की।

0: दलेर मेहंदी, ऋचा शर्मा और साथियों के गाए फिल्म एक्शन रिप्ले के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजे
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम् द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मन्त्रिणा सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे 15 परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटंस अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे संस्थया सूचितं यत् छात्रहितं राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाल्याः विश्वसनीयता च रक्षितं एषः निर्णयः स्वीकृतः। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् प्रश्नपत्र सम्बद्धानां आक्षेपाणां विस्तृत अन्वेषणार्थम् एषः विषयः केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणाय प्रेषितः। एतदर्थं संस्था पूर्ण सहयोगं प्रदास्यति तथा अन्वेषणाय आवश्यकानि साहित्यानि अभिलेखानि साहाय्यं च उपलब्धं करिष्यति। केन्द्रीय संस्थाभिः आरक्षक बलैः च सह समन्वयनान्तरं प्राप्त सूचनानां आधारेण एषः निर्णयः कृतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम् द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। गुवाहाटी नगरस्य खानापाड़ा स्थिते पशु चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रांगणे आयोजिते समारोहे राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रादापयत्।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরের নামত শপথ লও যে বিধির দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি মই প্রকৃত বিশ্বাস আর আনুগত্য পোষণ করিম।
1: ডক্টর শর্মা মহোদয়েন সহ অন্যে চত্বারহ অপি মন্ত্রিমণ্ডলহ মন্ত্রিত্বেন শপথম স্বীকৃতবন্তহ। তেষু ভাজপা দলস্য পক্ষতহ রামেশ্বর তেলী, अजंता नेयोग च असम गण परिषदः पक्षतः अतुल बोरा तथा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पक्षतः चरण बोरो च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् समारोहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः, अनेके केन्द्रीय मंत्रिणः तथा एनडीए शासित राज्यानां मुख्यमंत्रिणः अपि उपस्थिता आसन्। अनेन सह डॉ शर्मा असम राज्यस्य प्रथमः कांग्रेस रहितः नेता अभवत्, यः अनवरतम् द्वितीयवारं मुख्यमंत्री पदम् अलंकृतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मन्त्रिणां सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्ष

0: तं जनाः अस्मिन् पोर्टले स्वीयां स्वयं गणनां पूरयितुं शक्नुवन्ति। अस्य उपक्रमस्य अन्तर्गतं नागरिकाः स्वेच्छया स्वगृहाणाम् उपलब्ध सैविध्यानां सम्पत्तीनाम् अन्य विवरणानां च सूचनाः सरलतया सुरक्षितरूपेण सरलरीत्या च ऑनलाइन इति आभासीय माध्यमेन पूरयितुं शक्नुवन्ति। क्रिकेट प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं सार्ध सप्तवादने आरप्स्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम राम राम राम। बोल सुमारू भैया
1: रघु के राम राम मोहन भैया।
0: का करत हुआ एगरी खेती किसानी में भैया?
1: मत पूछा हो। हाँ। खेती किसानी में तेज में जानत हुआ
0: का
1: अपन मूंग के तोड़ाई भी करत है। हाँ। और धीरे धीरे जुगाड़ खेले लही ढैचा सनई का सोचते कितने सब सिंचाई करके
0: हाँ।
1: और जोतवा करके ढैचा सनई भी वो दही।
0: ई तो काम देखा एकदम जो ना कि बढ़िया के लिए यही से कहला कि तू बहुत चतुर किसान हुआ और देखा जुगाड़ बना लेला कि देखा आप जो ना कि जैविक विधि से जो ना खेती करे कर तैयारी में हुआ
1: एकदम भैया जानत हुआ मोहन भैया पहले तो
0: हाँ
1: गली जला कृषि विभाग में वहाँ से
0: हाँ
1: जुगाड़ हो गए ढैचा सनई का।
0: एकदम बढ़िया काम
1: हाँ
0: कैला।
1: अच्छा कुछ और जुगाड़ में पड़ल मिल जाई भाई। देखा कहल गल है कि जुगाड़ बनेबा खेती में जुगाड़ है।
0: हाँ।
1: और हमन के जानते मोहन भैया कि
0: हाँ।
1: हमन के किसानी माटी किसानी की जान होला।
0: अरे भैया एकदम सही बात कला जैसे आदमी के देखा तबीयत खराब बोले ना उनके दवाई की
1: हाँ
0: जरूरत ले उसे देखा मिट्टी के भी जो ना कि
1: स्वास्थ्य खराब होला।
0: स्वास्थ्य खराब होला तो ओकर भी समय समय पर जांच करावे के रहे के चाहिए।
1: हाँ
0: आ उम्मीद देखा कहा ना कि देखा रसायन खाद का लोग प्रयोग बहुत ज्यादा करत
1: एकदम
0: हुआ
1: सही कला अंधाधुंध।
0: हाँ आँख मूंद के एकदम
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: खूब
1: हाँ
0: हमार
1: हाँ
0: फसल खूब ज्यादा पैदा हुई
1: हाँ
0: और उसे कहा कि देखा मिट्टी के जो स्वास्थ्य है ना
1: हाँ गड़बड़ा
0: वो
1: एकदम।
0: एकदम खराब हो जाला। आ यही लिए देखा कहल कि देखा कि जौन कला है ना कि सनैया ढैंचा बोर के
1: हाँ हाँ
0: तैयारी में
1: हाँ
0: ही ये देखा बहुत अच्छा काम करत हुआ। आज ये भाई लोग सुनत हुई है ना वो लोग ये काम करें ताकि जो ना कि देखा जितना खेत में सनई ढैंचा बुआई या छिटाई ना
1: भैया
0: उतना देखा वो मिट्टी का स्वास्थ्य जो है ना कि एकदम बढ़िया हो जाए
1: उपजाऊपन आ जाई।
0: उपजाऊपन ही फसल भी पैदा हुई
1: हाँ
0: और देखा निरोग फसल पैदा हुई।
1: एकदम सही कला है। आ जानते हुआ
0: हाँ
1: खाली सोच का अंतर है।
0: हाँ
1: पहली बात है जब जैविक खेती हम करल जाई
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: रसायन से मोह भंग हुई तो
0: हाँ
1: माटी के स्वास्थ्य बतैला
0: अरे भैया
1: सुधरी।
0: पैसा भी बची।
1: हाँ वही
0: हाँ
1: तो और खाद खरीदे पैसा।
0: हाँ
1: दूसर बात अब देखा हमारे के यहाँ घूर खना जाला
0: हाँ
1: घूर
0: हाँ
1: गड्ढा में से कूड़ा जात बाय कंपोस्ट के खाद बनल बाय
0: हाँ हाँ
1: वही में गोबर भी पड़ल बा है।
0: हाँ हाँ
1: अब
0: हाँ
1: का भल की खेते में फेंकवा दा।
0: अरे भैया नीम के पत्ता बाय
1: हाँ
0: हरियर खाद बाय
1: हरियर खाद
0: गोबर
1: बाय।
0: के खाद बाय कुल ले जाके खेते में अगरी देखा जो ना कि हमारे चचा हुआ ना कि सवेरे उठिए तो पहला काम ये कि जितना कुल
1: खरपतवार।
0: गोबर हुआ गोबर
1: हाँ
0: खाद है ना चार छिट्टा रोज ले जाके हर खेते में फेंकियाँ
1: तो बतावा
0: तो
1: तब
0: ऐसे
1: उनका तो
0: कहा।
1: दिमाग में भाई हमारा कौन जैविक खेती हुई माटी मजबूत हुई।
0: हाँ आ देखा जो ना कि कहा ना कि देखा जो ना उसे पैदा होला ना अनाज जो ना जैविक विधि से
1: बहुत
0: वो
1: गुणवत्ता
0: देखा
1: युक्त।
0: गुणवत्ता युक्त तो होला आ बेरामी ना होला उनमें।
1: हाँ डॉक्टर भैया वैज्ञानिक लोग भी कहना कि भाई जैविक खेती से जो फसल हुई तो ओकरे खेले से बेरामी की संभावना कम हो जाना।
0: हाँ तो ये लिए देखा ये कहम ना कि जितना भैया लोग सुनत हुआ आ वो लोग एकर
1: एक
0: ध्यान
1: गुण।
0: रखिया
1: हाँ
0: आ
1: हाँ
0: ध्यान रख के जो ना कि अपने खेत में जो जैविक विधि से खेती बाड़ी करें आ देखा एक बात यो कहम ना कि फसल चक्र के भी अपनावल के चाहिए।
1: एकदम सही कला है। अब
0: हाँ
1: फसल चक्र की बात कराते जैसे जोने में धान बोल रहा
0: हाँ
1: ओमन
0: हाँ
1: दूसरे फसल साल को दूसरा

0: फसिल बोआ है कि नहीं।
1: हाँ
0: तो कहे का मतलब कि फसिल चक्र अपनी मत और अपने आप अपन खेत मजबूत
1: आ
0: की
1: देखा यो कहम ना कि सुमारू भैया कि कुछ
0: भैया।
1: लोग ऐसा हुआ ना कि देखा एक के खेते में हर साल गेहूं बोत हूँ तो गेहूं बोत हुआ
0: नहीं नहीं
1: आ
0: नहीं
1: देखा मैं अगर लगावत हुआ धान तो धाना लगावत
0: ये
1: हुआ।
0: बतावा जैसे रोज तो के रोटी दाल मिली
1: हाँ
0: और भात तो मन न उबिया जाए तरकारी भी ना
1: एकदम सही कला भैया
0: वैसे
1: हम
0: ही।
1: तो एकदम उपजिया
0: हाँ
1: जाइला।
0: तो वैसे ही खेत भी उपजिया जाए कि वही धान वही गेहूँ बोल जाता
1: हाँ
0: चना बोदा अरहर बोदा मटर बोदा
1: हाँ देखा
0: है
1: ऐसे कहा कि खेत का भी जोन हम मन है ना वो फरहर हो जाए एकदम
0: फरार हो जाई
1: आ एकदम ओकर जोन शक्ति है वो बढ़ जाए।
0: और शक्ति बढ़ाओ। बता भैया एक खाद और है
1: हाँ
0: केचुआ वाला
1: ये हाँ
0: हाँ कि नहीं
1: देखा
0: केचुआ वाला
1: एकदम
0: खाद पैदा करा खेती में डाला
1: हाँ
0: मानते का नहीं
1: एकदम
0: गोबर
1: सही
0: गैस
1: बात
0: से
1: है।
0: खाद निकला था ओके डाला।
1: हाँ भाई देखा ये कुल तरीका अपना अपना है कि जो है ना कि जितना किसान भाई लोग हुआ जी देखा चतुर किसान है वो
0: हाँ
1: देखा ये घड़ी जो है ना कि कम लागत में अधिक पैदावार करा था। आ देखा एक बात यो कहम ना कि सुमार भैया
0: भैया
1: कि खेते का जोन जैविक विधि से जोन उत्पादन जोन होता ना अनाज ओकर मांग बाजार में बहुत ज्यादा है।
0: एकदम भैया ओकर मांग भी अधिक है और ओकर पैसा भी अधिक है।
1: आज जोन सब्जी पैदा होता जैविक विधि से वो देखा अलग से देखा ओकर दाम ज्यादा लगत है आ किसान भाई लोग उसे मुनाफा भी कमात
0: भैया
1: हुआ।
0: लोग बाजार में मांग है कि भाई जैविक विधि वाला सब्जी अलग कर दा
1: हाँ
0: धंधा बात की
1: हाँ
0: फल
1: हाँ
0: अलग कर दा
1: हाँ
0: सब रसायन से धीरे धीरे मोह भंग कर था।
1: भैया देखा जरूरी भी है कि रसायन देखा स्वास्थ्य के लिए जो है ना कि ठीक भी नहीं है तरह तरह के बीमारी भी उत्पन्न करेला आ तो रहूं शरीर में आ मिट्टी में भी।
0: हाँ भैया हो
1: हाँ
0: अभी सोचा कि जैसे कि कीटनाशी दवा छिड़कत हूँ लोग
1: हाँ
0: तो रसायन वाला कीटनाशी न छिड़े कि जैविक वाला छिड़का हूँ।
1: हाँ चाहे देखा दवाई हो खे आ चाहे
0: हाँ
1: खाद हो खे उस सब जो ना कि जैविक विधि का हुई तब भाई जो ना कि देखा पैदावार अच्छा हुई या स्वास्थ्य भी लोगों का बढ़िया रही।
0: एकदम भैया सही कहा। अरे बहुत प्रभावित हो गया जैसे कि अभी सोचा
1: हाँ हाँ
0: कि खाद डाल करके जो बरसीम चरील डालना तो गैया गुरु खाना तो दूध में भी वो स्वाद नहीं रह जा
1: हाँ ये तो
0: मानो कि
1: देखा
0: नहीं।
1: बहुत महत्वपूर्ण बात कला है कि देखा जोन सब्जी हैं जोन जैविक विधि से पैदा होते हैं
0: हाँ
1: टमाटर है मूली है और जितना सब्जी है उनकर स्वाद में अंतर आवत है।
0: एकदम अंतर भी आ जाए।
1: हाँ समझ में आ जाते कि जैविक विधि
0: हाँ
1: से पैदा है रासायनिक विधि से पैदा है
0: एकदम सही कहा।
1: तो ऐसे जो ना कि ओकर जोन स्वाद में बढ़िया रहा था ना वो
0: हाँ
1: जो है कि लोग के ज्यादा पसंद आओ था कहे से कि वो निरोग बा जो ना बढ़िया से कोनो उसे खेले के बाद कोनो जो ना शरीर में कोनो प्रकार का बीमारी ना होता।
0: ना होता तो यही कुल मिला जुला के हमन हमेशा यही हमन निहुरा कर जी किसान भाई लोग से
1: हाँ का
0: कि भाई कि अब धीरे धीरे मोह भंग करा रसायन से
1: हाँ
0: और जैविक विधि अपनावा। आ सुना
1: हाँ
0: जे मूंग बोलो हुई मूंग
1: हाँ
0: तोड़ाई भी करत हुई हैं अब
1: हाँ
0: बचले पर जो पलटवा दिए तो हमारे खाद के काम करी।
1: एकदम सही बात कला वही से तू पहले ही से जो ना कि तैयारी में हुआ सनैया डहीचा बोए
0: हाँ
1: कि वो के पलटवा दे वही पर फिर धान जो ना कि लगा दे खाद का काम कर जाई तो ये तो देखा बहुत अच्छा काम कैला। आज किसान भाई लोग जोन हुआ वो जो सुनत हुई है लोग कार्यक्रम के वो लोग भी एक बात पर ध्यान दिया कि अब रासायन खाद का प्रयोग बिल्कुल ना करे के
0: हाँ जैविक
1: जैविक
0: विधि
1: विधि
0: अपनाओ
1: से खेती करें आ स्वस्थ रहें आ सुंदर भी रहें तो
0: सुंदर भी रहे
1: ये कहब कि देखा सुमारू भैया
0: भैया।
1: और कुछ कल क्या हुआ
0: हम तो कुछ नहीं कहते आप बतावा कि अब किसान भाई लोग क्या सुनाओ
1: देखा
0: था।
1: अब तक जैसे बत कही तो हमन का आवरू हुई लेकिन
0: हाँ
1: किसान भाई लोग के कुछ संन्यास भी सुना देवल जाए।
0: सुनवा दा
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं, अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: मोहन भैया संदेश तो सुनवा दला।
1: हाँ भैया एकदम
0: अब
1: सुनवा दिली।
0: बतावा आप पंचलों के का सुनाओ हुआ अपने पंचायती बात
1: देखा ई कहब समारू भैया ना कि
0: भैया।
1: देखा जहाँ खेती किसानी बाय घर परिवार बाय वहाँ देखा खर्चा भी बहुत रहेला तो ये देखा किसान भाई लोग के ना

0: आपकी देखा अपने खेती किसानी के में जो है कुछ और अतिरिक्त आय का स्रोत अपन जो है पैदा करे के चाहिए।
1: चाहिए, बिल्कुल सही दिक्कत हुआ।
0: तो खेती किसानी में तो जो अनाज पैदा होता है बाओ के
1: हाँ
0: बेच
1: हाँ
0: के
1: हाँ
0: घर परिवार चलत बा जो
1: हाँ
0: ना
1: हाँ खुद भी पैसा बचाओ
0: बचत
1: क्या
0: बा जो ना, लेकिन ये कहमने कि देखा कुछ और व्यवसाय भी खेती में हो सकेला
1: कर लो।
0: बढ़िया। जैसे देखा मधुमक्खी पालन हुआ,
1: हाँ हाँ
0: तो देखा जो ने मधुमक्खी पालन के बाद जब हम कह लिए ना, देखा हम बहुत जानकार ना आई होकर,
1: अच्छा
0: हाँ लेकिन देखा ये जानकार हुआ डॉक्टर योगेश कुमार यादव भैया, और
1: हाँ
0: उनसे देखा बातचीत कैले हुआ सतीश कुमार यादव भैया जो अपन संगे रहना ना
1: अच्छा वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन।
0: हाँ देखा मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक विधि से कैसे करल जाए, ये पर बातचीत है तो सुना किसान भाई लोग भी सुनो।
1: सुना था सुना था।
2: पंच भैया लोग देखा हमने लोग किसान ही जा और हमने का खेती की संगे संगे दू पैसा और कहाँ से आमदनी हो जा ये बदे भाई अपने सबसे सुविधा अनुसार का हमने के सुविधा में है पता चलेला कि भाई पशुपालन कर लिया जाए या बकरी पालन भेड़ पालन या मुर्गी पालन या जौन भी पालन कर लिया जाए जौन अपनी खेती किसानी से जुड़ल रहे। ऐसने में मधुमक्खी पालन भी अपने किसानी का एगो हिस्सा है और अगर हमनी लोग मधुमक्खी पालन करत हैं जा तो एमे वैज्ञानिक विधि का अपनावे के चाहिए यही विषय पर हमनी लोग बात बत कही करे बदे डॉक्टर योगेश कुमार यादव जी के बुलेले हैं जा अपनी पंचायती में जे कि कृषि विज्ञान केंद्र बेजवा भदोही में कार्यरत हुआ। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हमनी के कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब आप हमारी भैया लोन के ई बताई कि अगर उ लोग मधुमक्खी पालन करत हुआ तो इससे उनके का फायदा हुई और वो काहे ये मधुमक्खी पालन के करा।
1: बहुत ही अच्छा विषय आज आपने चुना है मधुमक्खी पालन का। तो मधुमक्खी पालन देखिए इसलिए किया जाता है जिससे कि इसे शहद और परागकण इत्यादि के लिए मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं और मधुमक्खियाँ फूलों के रस को शहद में परिवर्तित कर देती हैं और उसे छत्ते में जमा कर देती हैं।
2: अच्छा
1: बाजार में शहद और इसके उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसके कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक व्यवसाय बन गया है। मधुमक्खी पालन से प्राप्त शहद और मोम आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। भारत शुद्ध प्राकृतिक शहद का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मधुमक्खी पालन कृषि से जुड़ा व्यवसाय है जिसमें कम लागत में अधिक लाभ मिलता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिन लोगों के पास खेती की जमीन बहुत कम है जैसे हमारे बहुत से किसान भाई हैं जिनके पास जोत बड़ी नहीं है या जो गांव में हमारे बेरोजगार किसान भाई रहते हैं नौजवान हैं वो भी आमदनी के लिए मधुमक्खी पालन का कार्य कर सकते हैं। और मधुमक्खी कीट वर्ग का सामाजिक प्राणी है जो खुद के बनाए मोम के छत्ते में संघ बनाकर रहता है जिसमें एक रानी कई सौ नर और करीब 50 से 60 हजार श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं
2: अच्छा
1: और बड़ा ही इनका अनुशासित पूरी कॉलोनी होती है
2: अच्छा
1: जिससे
2: मतलब
1: हम लोगों को भी अगर देखा जाए तो उनके अनुशासन से एक सीख लेनी चाहिए।
2: अच्छा डॉक्टर साहब अगर हमारे भैया लोग पालन करत हों तो इससे उन लोग के लाभ का हुई पहले ये हमारे भैया लोग के बताएं।
1: मधुमक्खी पालन से लाभ यह है कि आप उसको कम जगह में कर सकते हैं इसके लिए बहुत खेती की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास खेत नहीं भी है तो आप बगीचों में स्थानांतरित करके मधुमक्खी के बक्सों को उनसे शहद उत्पादन ले सकते हैं।
2: इनमें कौन प्रजाति उन्होंने के बढ़िया रही?
1: देखिए मधुमक्खियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें से एक एपिस डोरसेटा होती है। इसे शहद उत्पादन तो अच्छा मिलता है लेकिन ये बहुत ही आक्रामक होती है और इसको बक्सों में नहीं पाला जा सकता है तो
2: अच्छा
1: इसलिए ये प्राकृतिक रूप से छत्ते बनाकर अपना शहद उत्पादन करती है।
2: अच्छा जोन ई देखे में आवला हमनी के गांव गिराव में या शहर में भी कहीं भी देखे में आवला जोन पेड़ पौधा पर।
1: पौधों पे पानी की टंकियों पे बड़े बड़े छत्ते लगाए रहती हैं वो एपिस डोरसेटा होती हैं। उनको पालना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा ही आक्रामक होता है।
2: अच्छा
1: दूसरी एपिस सेरेना इंडिका ये भारतीय मधुमक्खी है और तीसरी है फ्लोरिया ये छोटी मधुमक्खी होती है। अक्सर पेड़ पौधों के कोटरों में या खंडहरों में या किसी अंधेरे स्थानों पर आप देखते होंगे ये आकार में भी छोटी होती हैं और छोटे पैमाने पर इनसे शहद उत्पादन होता है। हालांकि इनके शहद की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होती है
2: अच्छा
1: लेकिन चूंकि उत्पादन कम होता है इसलिए व्यावसायिक रूप से इनको पालना उचित नहीं है। और एक एपिस मेलिफेरा जो कि इटालियन मधुमक्खी कही जाती है
2: अच्छा
1: ये हमारे देश की नहीं है लेकिन अब चूंकि पूरे विश्व में प्रसारित हो चुकी है और मधुमक्खी पालन के लिए बहुत अच्छी प्रजाति मानी जाती है क्योंकि इसके एक छत्ते से करीब 40 से 50 किलोग्राम तक आप
2: अच्छा
1: शहद प्राप्त कर सकते हैं।
2: अच्छा
1: तो इस तरह से ये जो प्रजातियां हैं इनमें से दो प्रजातियां पालने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं एपिस सेरेना इंडिका जो कि भारतीय है और दूसरा एपिस मेलिफेरा।
2: अच्छा तो ये जो

0: प्रजाति बतावत हैं।
1: जी
0: अगर हमार किसान भैया लोग ए प्रजातियन के को पालन कर चाहत हों
1: हाँ
0: तो उ लोग ओकर बॉक्स को जो नाम बात बतावत नहीं कि ओकर एगो बॉक्स तैयार करके अपने बाग बगीचा में या अगल बगल रखें,
1: जी
0: तो उ लोग बॉक्स कैसे बनावों और वो बॉक्स में पहले से भी कुछ रखे के हुई ताकि वो मधुमक्खी यहाँ की ओकर प्राथमिक
1: बता
0: उपाय
1: देता
0: है, एक
1: हूँ
0: बारे में बताएं।
1: जरूर। इसके लिए देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए कुछ मुख्य प्रशिक्षण संस्थान हैं, जैसे एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा रोड नई दिल्ली में है। ये किसानों को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग देते हैं,
0: अच्छा।
1: बाकायदा उनके रहने खाने की व्यवस्था होती है और सारा कुछ प्रशिक्षण, और उनको बक्से कहाँ से मिलेंगे, मधुमक्खियों की अच्छी प्रजातियाँ कहाँ से मिलेंगी, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं और मुहैया भी कराते हैं।
0: अच्छा
1: इसके साथ ही राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड बी इंस्टीट्यूशनल एरिया अगस्त क्रांति मार्ग हौज खास नई दिल्ली में है।
0: अच्छा
1: तीसरा, केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान ग्रामोद्योग आयोग गणेश खिंड रोड पुणे में है।
0: अच्छा
1: और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भी मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग कराता है, जो कि लाल कोठी जयपुर राजस्थान में है। मधुमक्खी पालन एवं शोध संस्थान कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा भी कराता है। इसके अतिरिक्त आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी जाकर के मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, और इसके जो बक्से होते हैं आप खरीद सकते हैं, बाहर से मिलते हैं, और उसमें कृत्रिम रूप से उसके छत्ते बनाए गए रहते हैं मोम से, और एक बक्से में जो उसके फ्रेम होते हैं उनकी संख्या करीब 8 होती है।
0: अच्छा
1: ज़्यादा बड़े फ्रेम के भी बक्से होते हैं, लेकिन वो थोड़ा उपयुक्त तो नहीं माने जाते हैं, इसलिए 8 फ्रेम वाले बक्से ही उचित माने जाते हैं। उस फ्रेम में मोम से कृत्रिम छत्ते बनाए जाते हैं, और उसमें एक रानी मधुमक्खी रखी जाती है और कुछ श्रमिक मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं। धीरे धीरे करके उनकी कॉलोनी की संख्या बढ़ती चली जाती है, और इस प्रकार से आप मधुमक्खी पालन का बक्सा तैयार कर लेते हैं।
0: ये मधुमक्खी का जो ना प्रजाति बतैनी है, एकर जीवन चक्र का होला? जैसे कोई भैया लोग मधुमक्खी पालन करत हुआ तो वो मधुमक्खी का जीवन चक्र का रही, वो कितना दिन ले उनके लाभ दे सकली, एकरी बारे में बताएं।
1: जी जरूर, किसी भी मधुमक्खी पालक किसान भाई को मधुमक्खियों के जीवन चक्र के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। मधुमक्खी के छत्ते में देखिए 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। एक रानी मधुमक्खी होती है, जो कि छत्ते में एक ही होती है। इसके अतिरिक्त श्रमिक, ये इनकी संख्या करीब 50 से 60 हजार तक होती है एक छत्ते में। और नर मधुमक्खी, जिसको ड्रोन भी कहा जाता है, इनकी संख्या 600 से 1 हजार तक होती है। ये इनकी कॉलोनी की पूरी संरचना है। अब इनका जीवन चक्र 4 चक्रों में होता है। पहली अवस्था है कि इनके अंडे की अवस्था है। रानी मक्खी द्वारा छत्ते के षटकोणनुमा कोष्ठकों में सफ़ेद चावल के दाने के आकार के अंडे दिए जाते हैं। रानी मधुमक्खी एक दिन में लगभग 1600 से 2000 तक अंडे देती है।
0: अच्छा,
1: ये
0: एक
1: अंडे,
0: दिन में?
1: हाँ एक दिन में, ये अंडे दो प्रकार के होते हैं, एक निषेचित अंडे, दूसरा अनिषेचित अंडे।
0: अच्छा
1: तो निषेचित अंडों में से रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी के रूप में विकसित होते हैं, और जो अनिषेचित अंडे होते हैं उसमें से जो निकलते हैं बच्चे, वो आपके नर मधुमक्खियाँ होती हैं।
0: ऐसे किसान भैया लोग कोनी कोनी ऋतु में पालन करके लाभ ले सके ना?
1: देखिए, मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय तो जो है जनवरी से लेकर के मार्च तक का है,
0: अच्छा
1: और इसका मधु उत्पादन का सबसे अच्छा समय जो होता है शहद उत्पादन का, नवंबर से लेकर के आपका मार्च तक होता है, क्योंकि इस समय ढेर सारी बागवानी की फसलें हों या आपकी जो है अनाज वाली फसलें हैं, इनमें तमाम फसलों में फूल आए रहते हैं, उनके पराग इकट्ठा करके मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं, और सबसे उपयुक्त समय होता है मधुमक्खी पालने के लिए।
0: तो जैसे कि आप ऋतुन को बात करते नहीं है, तो ये ऋतुन में इन उनका देखभाल लोग कैसे करें?
1: इस समय तो देखिए, इनके खाने की पूरी व्यवस्था उपलब्ध प्रकृति के द्वारा रहती है, तो इस समय तो इनको कोई आवश्यकता नहीं रहती अलग से खिलाने की। लेकिन जब गर्मी आती है और उस समय जब परागकण के उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उस समय चीनी का सीरा बना करके इनको हफ्ते में 2 बार दिया जाता है,
0: अच्छा
1: जिससे कि ये अपनी कॉलोनी छोड़कर ना भागें और उन भोजन प्राप्त होता रहे।
0: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भैया लोग मधुमक्खी जो पालन कैले हों तो
1: जी
0: इन्होंने की मधुमक्खी बदे कोना कोना चीज से खतरा हो सकेला, एकरी बारे में बताएं हमारे किसान भैया उनके।
1: मधुमक्खियों के अनेक शत्रु होते हैं, जिसमें मोमी कीड़ा, ड्रैगन फ्लाई, मकड़ी, गिरगिट, बंदर, भालू इत्यादि होते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो मधुमक्खियों को पहुंचाता है, वो मोमी पतंगा, जिसको वैक्स मॉथ भी कहते हैं,
0: अच्छा
1: उससे ज़्यादा नुकसान होता है। यह मधुमक्खियों का सबसे बड़ा शत्रु है। छत्तों की मोम में अनियमित आकार की सुरंग बनाते हुए चलता है। जैसा कि आप जानते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है षटकोण आकार का होता है, और ये जो मोमी पतंगा है वो आड़ा।

0: छा उसको छतों को नुकसान पहुंचाता हुआ चला जाता है और धीरे धीरे करके इस तरह से वो सारे छतों को खराब कर देता है और मधुमक्खियां वहां से पलायन कर जाती
1: अच्छा,
0: हैं।
1: एक और
0: इससे
1: उपाय क्या रही?
0: इसका उपाय यही है कि इसमें गंधक का धुआं दे बक्सों को खाली करके मधुमक्खियों से, और साथ ही जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं वो छत्ते को जब बनाती रहती हैं बीच बीच उसको कुतरती रहती हैं, तो जो उसका बुरादा और जो कचरा गिरता है पीली में इकट्ठा हो जाता है उसको समय समय पर आप साफ करते रहें, और बक्सों को खोल करके सूर्य की रोशनी में 2-3 दिन तक रख दें जिससे कि इसके लार्वा नहीं पनप पाते हैं, और इसको जब सुड़ियाँ नहीं पनपती हैं तो इससे बचाव हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, भैया लोग मधुमक्खी पालन कर ले ले हुआ, ठीक,
0: जी
1: उन्होंने कहल जाओ कि मधु तैयार भी हो गई है, तो ओकर उ लोग चुनाव कब करें कि ओके वो बक्सा से निकाले के है और ओके बाजार में भेजे के है, ये बारे में तनी भैया उनको बताएं।
0: देखिए, जब शहद तैयार हो जाती है तो बीच बीच में बक्से की फ्रेम को निकाल करके उसको हमारे किसान भाई चेक कर सकते हैं, और जब शहद भर जाती है उसमें उसकी फ्रेम में, तो उसकी फ्रेम को बाहर निकाल करके उसको एक मधु निष्कासन यंत्र कहते या चरनर कहते हैं उसको, एक ड्रम होता है और उसमें अलग अलग खांचे बने होते हैं, और जो उसके बक्सों से फ्रेम को निकाल करके उसमें लगा दिया जाता है और एक हैंडल लगा होता है, उसे जब घुमाते हैं तो आप केंद्रीय बल की वजह से वो शहद ड्रम की दीवारों पर जाकर निकल कर लगता है, और धीरे धीरे एक टोंटी से आप नीचे उसको एकत्र कर सकते हैं, और एकत्र करने के बाद उसको छान करके साफ करके आप रख लेते हैं। और बहुत से हमारे किसान भाई अपना एक समिति बनाए हुए हैं, उसके माध्यम से सारे लोग अपना शहद इकट्ठा करके भी कंपनियों को बेच देते हैं या स्थानीय बाजार में बेचते हैं। इस प्रकार से जो है वो अपने उत्पादन की मात्रा के अनुसार अपना लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन एक बात इसमें हम थोड़ा जोड़ना चाहेंगे
1: हाँ
0: कि मधुमक्खी पालन उन्हीं क्षेत्रों में किया जाए जहाँ पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में बागवानी फल वाली या अनाज वाली फसलें या फूल पौधों की फसलें बहुत आयत में होती हों, जिससे कि इनको वर्ष भर पराग
1: खुराक।
0: मिलता रहे और इनकी जो है भोजन की आवश्यकता पूरी होती रहे, और साथ ही इसका उत्पादन भी अच्छा हमें मिले। क्योंकि इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सिर्फ जनवरी नवंबर से लेकर के फरवरी तक आप जो है इससे उत्पादन प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर आपको इसको चीनी की चाशनी पर रखना पड़ेगा।
1: तो मतलब जहाँ खेती बाड़ी होके वहाँ
0: जहाँ
1: एकर
0: जी जी विशेष रूप से जहाँ पर फूलों की खेती 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र में होती हो या कुछ अच्छी फसलों फलों की खेती हो उसमें आप कर सकते हैं मधुमक्खी पालन, तो आप निश्चित रूप से उससे लाभ उठाएंगे।
1: तो मतलब कि ए विधि से अगर किसान भैया लोग मधुमक्खी पालन करत हों तो उनके जरूर लाभ हुई। डॉक्टर योगेश कुमार यादव जी, आप हम लोग के कार्यक्रम कृषि जगत में ही नहीं एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मोहन भैया, बातचीत तो बहुत बढ़िया सुनवा दिला कि मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक विधि का बा।
1: हाँ
2: डॉक्टर योगेश कुमार यादव से सतीश कुमार यादव के बातचीत बहुत सारगर्भित रहल। आ
1: हाँ
2: एक बताओ बता देना कि देखा कैसे कैसे बचे के है मधुमक्खी पालन में,
1: हाँ
2: है सावधानी करी है लोग तो भाई मदद अच्छा मिली
1: हाँ ये
2: मिली
1: बात
2: ना।
1: बिल्कुल सही बात कला।
2: अब मोहन भैया,
1: हाँ
2: आज तो हमारे मन के तो ही आज लोग सुना दा
1: हम अगर लोकगीत गाय ना तो यहाँ से भाग जीबा जो ना
2: तो केकर सुनवात हुआ।
1: तो हमरे जगह देखा ये राजकुमार तिवारी भैया हुआ,
2: हाँ हाँ हाँ
1: इनकर जो लोकगीत है तो हूँ सुना, हमहूँ सुनी, आप किसान भाई लोग भी सुना।
2: सुनवा दा।

0: इतना बता के जहिया कैसे दिन बीती रामा। गाओ था ना भैया लोकगीत राजकुमार तिवारी भैया।
1: हाँ बहुत बढ़िया इनके लोकगीत रहे भैया का। आ देखा ई कहब ना कि सुमारू भैया
0: भैया
1: कि अब देखा लगे हाथी जो ना कि काल अपने पंचायती में का का कार्यक्रम हो एकर भी जानकारी किसान भाई लोग के दे देवल जाए।
0: तो कल बता दो बिहने का हुई।
1: कल देखा बिहाने 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम हुई और में देखा राइजोबियम कल्चर और एकर उपयोगिता ये
0: अच्छा
1: विषय पर दिनेश कुमार सिंह भैया अपन जानकारी दी। हाँ
0: और कल संजय के पंचायती में देखा बहुत बढ़िया बातचीत हुई, एकरे साथ लगौनई भी हुई।
1: अच्छा
0: हाँ ये बात कल कहो गल।
1: हाँ
0: अब देखा कुछ बताया था पंच लोग के कि धीरे धीरे देखा मौसम धूप करेर होता है,
1: हाँ
0: तो ऐसे में जब भी नौतहकारी करे निकले चाहे कोनो बर बाजार करे निकले
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: का करें।
1: अरे भैया तो गमछा वमछा लेके निकले ठंडा पानी पी के निकले सर और ढाक के निकले छाता ओता भी
0: हाँ
1: ले ले।
0: छाता होता भी ले ले सही कला, और कहीं मतलब पानी के शरीर में कमी ना हो पाओ।
1: हाँ भैया देखा घामे में निकलबा आ शरीर में पानी ना रही
0: तो लू मार
1: तो
0: दही।
1: लू मार दी तुरंत जो है ये लिए देखा जब निकले तो पानी ठंडा पी के निकल।
0: अब भैया देखा पहले तो हमार गैया या चराव जाल जाए
1: हाँ
0: तो पतिल की डोरी रहे लोटा वाली, और हम लोटा बगीचा में खड़ा होकर के
1: हाँ
0: कौन जरा वही नारा में से निकाल के पानी पी रहा जाए, और गुड़ हमारे गठी उड़ा रह जाए।
1: हाँ आप तो देखा भैया यो बा कि नारा के भी संख्या कम होती है अब धीरे
0: हाँ
1: धीरे।
0: हाँ बस देखा हमारे जागरूक होकर के नारा का भी जो बनल गांव में
1: हाँ
0: ओकर
1: हाँ
0: सर सफाई गर्मी में करा करके हैं
1: हाँ वो
0: तो
1: के जिंदा रखा के जरूरत है।
0: हाँ तब पानी के स्रोत
1: अरे
0: बनल
1: भैया
0: रहिए।
1: जो ना कि जब हम छोट रही ना तो भैंसिया के ऊपर हम बैठ के चरावी जो ना
0: तो बतावा।
1: आ इतना बढ़िया हमन के लगे जो ना कि चरावे में कि ये समय का मौसम देखा ही देखा गोरू चौवा चरावे का लोग बहुत लोग जो ना गांव में देखा अपन छोड़ देव ना यही बाने टहरा देव ना
0: भले टहरा लेके दोपहरिया में ना निकले भैया
1: नहीं
0: तब
1: दोपहरिया में नहीं भैया इस सवेरे सांझे खाली
0: हाँ
1: रही
0: नौ दस
1: थी।
0: बजे घरे उठा लिया हुआ।
1: हाँ नहीं तो देखा भैया जो ना गर्मी जो ना दिन में बहुत ज्यादा हो जाता इससे बचे की जरूरत है।
0: हाँ सुनो आप चले के बेला भी होते तो पंच लोग से आज्ञा मांगा।
1: पंच लोग से आज्ञा मांगा के लेकिन देखा एक बात और बता देते ही
0: कहा बताता।
1: कि
0: हाँ
1: देखा जो मौसम चला था ना
0: हाँ
1: इनमें देखा मौसमी जो फल हुआ
0: ओका सेवन जरूर करें
1: ओकर
0: लोग,
1: सेवन देखा भैया लोग जरूर करें।
0: आम का पन्ना निबुआ
1: हाँ
0: है।
1: आ देखा ककड़ी बाहिरमाना खरबूजा
0: हाँ
1: इस सब का
0: हाँ
1: सेवन करें ऐसे देखा स्वास्थ्य बढ़िया रही आ गर्मी भी ना लगी। तो एक संगे देखा पंच लोग से अब विदाई।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे निशान फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था गुलशन बावरा ने और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का ये गाया गीत है, फिल्म का नाम है खट्टा मीठा। शब्द रचना गुलजार की है और धुन तैयार की है राजेश रोशन ने।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

का संगीत। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये गीत। शब्द रचना नक्श लायलपुरी की है और धुन बनाई है खयाम ने।

थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना कछुआ से प्राप्त सूचना के अनुसार अमन मिश्र, पिता का नाम यजुवेंद्र मिश्र, निवासी ग्राम मुकुंदपुर पाहो, पोस्ट डोमनपुर, थाना कछुआ, जिला मिर्जापुर। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र 23 वर्ष, लंबाई 6 फीट, रंग गोरा है। ये 22 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार के दोपहर 12 बजे मोहनसराय वाराणसी से घर के लिए निकले और वापस नहीं आए। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया संबंधित थाने को सूचित करें।

थाना चौबेपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार राम सूरत, पुत्र का नाम शोभनाथ, निवासी ग्राम चिरई गांव, पोस्ट चिरई गांव, थाना जिला चौबेपुर। ये 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार की सुबह 5 बजे भोर में कहीं चले गए और उसके बाद वापस नहीं आए। इनका रंग सांवला, लंबाई 5 फुट 1 इंच, उम्र 50 वर्ष है। इनके बारे में भी कोई सूचना मिलने पर कृपया संबंधित थाने को सूचित करें। थाना चौबेपुर से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार प्रियापाल, पिता का नाम बालकृष्ण पाल, निवासी ग्राम चाहिन, पोस्ट चौबेपुर खुर्द, चोलापुर वाराणसी। इनकी उम्र 23 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा है। ये दिनांक 20 जनवरी 2026 को लगभग 10:30 बजे सुबह घर से डीएवी शिक्षण संस्थान रौना चोलापुर के लिए निकली और वापस नहीं आई। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया संबंधित थाने को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम। प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, सोने की खरीद को टाले।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज असम में नव निर्वाचित एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मंत्रिमंडल के नव नियुक्त सदस्यों को उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में आज यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी को गंभीर हालत में SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों का उपचार जारी है। पुलिस उपायुक्त नगर

पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।

0: सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। चंदौली में बीते 24 घंटों में 3 लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति को बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए अपराधी ने 24 घंटों में ट्रेन में यात्रा करने वाले 2 लोगों और अस्पताल में भर्ती एक महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ में अपराधी ने तीनों हत्याओं की बात कबूल की थी। ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में आस्था और सेवा का संगम दिखाई दिया। जनपदों के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के अवसर पर रामकोट परिक्रमा में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखने को मिली। बिजनौर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रसाद बांटा। लखनऊ में भी बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अलीगंज के पुराने और नए हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर समेत अन्य मंदिरों को बड़े मंगल पर भव्य रूप से सजाया गया है। इन मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। दिन में तेज धूप के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नजर नहीं आई। शहर भर में सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन कर सेवा की परंपरा निभाई। भंडारों में प्रसाद वितरण के साथ शीतल पेय और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में आवागमन बाधित हो गया। एक रिपोर्ट।
2: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। आज दोपहर जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
0: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अनुमान है।
3: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहां धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट में हल्का बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, उसका सबब जारी रहेगा कल के लिए। उसके बाद मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
0: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला कौशल विकास संस्थान है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत रामपुर में 15 दिवसीय विशेष शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटी कला कार्य से जुड़े कुम्हार और परंपरागत कारीगरों को आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इच्छुक कारीगर 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा

0: रद्द, सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम। प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
2: आकाशवाणी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

शराबी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। प्रकाश मेहरा के बोल थे और बप्पी लाहिरी का संगीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म भीगी पलके से। आवाज़ एक बार फिर से किशोर कुमार की है और इस गीत को लिखा है MG हशमत ने।

भीगी पल के फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। अगला गीत है फिल्म शालीमार से, आवाज लता मंगेशकर की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

दोस्ताना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं नीरज का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया फिल्म शर्मीली का ये गीत।

शर्मीली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की गाई गजलें। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी।
1: न जाने कितनी यादें इनका पीछा करती होंगी और इनकी जिंदगी में सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं होता। डैडी, इसी ख्याल पर शालू ने एक नज़्म लिखी है, वो सुनिए।
2: सुनाओ बेटे।

0: जोशीला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी के बोल थे और आरडी बर्मन का संगीत। अगला गीत मोहम्मद रफ़ी का ही गाया है, फिल्म का नाम है गाइड। शब्द रचना शैलेंद्र की और धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।
1: रात

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया आप सुन रहे थे पारस मणि फिल्म का गीत। अगला गीत आइए आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश का गाया हुआ। फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया।

आबरू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ मुकेश की थी। और रस माधुरी कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपके लिए लाए हैं फिल्म गजल से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है और धुन तैयार की है मदन मोहन ने।

0: कैसे।
1: गजल फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए

0: उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: कि आईसीसीआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस

0: इसको ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और MR अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी तहकीकती ब्यूरो सीबीआई ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 के मुबैना पेपर लीक के मामले में एक केस दर्ज किया है। एजेंसी ने वजारत तालीम के आला तालीम के महकमे की जानिब से मौसूल एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर यह मामला दर्ज किया है। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि उसने नीट यूजी इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक हो जाने के मुतालिक इन खिलाफ वर्जियों के साथ एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें मुजरमाना साजिश, जालसाजी, मुजरमाना एतमाद शिकनी, चोरी और सबूतों को खत्म करने की कोशिश और इम्तिहानात में नामुनासिब तरीकेकार इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक अवामी एक्ट 2024 के तहत खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। नई दिल्ली में नीट इम्तिहान की मनसूखी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने बताया कि एनटीए तलबा के लिए दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करेगी और ये मुनसिफाना तरीके से मुनक्किद किया जाएगा और दोबारा इम्तिहान के लिए कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे और हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे।
0: इससे कबल आज दिन में एनटीए ने इस माह की 3 तारीख को मुनक्किद किए गए नीट यूजी 2026 इम्तिहान को मनसूख करने का फैसला किया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस की खसूसी कार्रवाइयों से मुतालिक ग्रुप एसओजी ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। एसओजी ने कल एक मुबैना सरगना को जयपुर से हिरासत में लिया था, जिसका नाम मनीष बताया जाता है। इससे कबल जराये के मुताबिक राजस्थान पुलिस एसओजी ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मुबैना साजिश रचने वाला सिकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार शामिल है। इसके अगले दिन नीट का इम्तिहान देने वाले 4 तालिब इल्मों को भी गिरफ्तार किया गया था। नासिक पुलिस ने भी नीट पेपर लीक मामले में मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया था। बीजेपी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्व सरमा ने मुसलसल दूसरी मुद्दते कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया।
2: मैं श्री हेमंत बिस्व सरमा ईश्वर नाम शपथ लाओ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के हमराह कानून साज असेंबली के 4 अरकान ने भी काबीनी वुजरा की हैसियत से हलफ लिया। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजनता नियोग, असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मुख्तलिफ मरकजी वुजरा और एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला ने इस तकरीब में शिरकत की। तमिलनाडु में जोसेफ विजय की क्यादत में 9 मुंतखबशुदा टीवी के हुकूमत के लिए कल अक्सरियत की आजमाइश से कबल सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीलियां रूनमा हुई हैं। एआईए डीएमके हुकूमत को हिमायत फराहम करने के मामले में 2 ग्रुपों में बच गई है। साबिक वजीर आला और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडापड़ी के पलानास्वामी की क्यादत वाले ग्रुप ने पार्टी के मेंबरान असेंबली को हिदायत दी है कि वो टीवी के हुकूमत की हिमायत न करें। सीनियर लीडर अग्री कृष्णामूर्ति ने खबरदार किया है कि किसी एमएलए ने पार्टी व्हिप की खिलाफ वर्जी की तो उसे पार्टी से बदतरफी का सामना करना पड़ेगा। इधर 30 मेंबरानी असेंबली की हिमायत का दावा करने वाले एक और ग्रुप ने एसपी वेलोमनी को एआईए डीएमके की कानूनसाज पार्टी के लीडर के तौर पर चुन लिया है। ग्रुप के लीडरों ने साबिक वजीर सीवी शनमुगम की रिहायशगाह पर एक मीटिंग के बाद आज मीडिया से मुलाकात की। शनमुगम ने ऐलान किया कि यह ग्रुप अक्सरियती वोट के दौरान टीवी के हुकूमत की हिमायत करेगा। حکومت کو امہ مکل

0: देते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत कभी दबाव में नहीं आया और चैलेंज भरे दौर में हमेशा ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। अहलकारों, अवामी शिकायतों और पेंशन के महकमे के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की सदारत करेंगे। काफी वक्त से इल्तवा में पड़ी 985 शिकायतों पर, जिनका ताल्लुक 37 वजारतों और महकमों से है, अदालत में बरमौका हल के लिए गौर किया जाएगा। पेंशन और पेंशन याफ्तगान के महकमे ने बताया कि अब तक 15 पेंशन अदालतों के जरिए तकरीबन 28,000 मामलों पर गौर किया जा चुका है, जिसमें से तकरीबन 20,000 को बरमौका ही निपटा दिया गया, जिससे कामयाबी के 71% की शरह का इजहार होता है। स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मुश्तरका तौर पर तीसरी जमात से आठवीं जमात तक के तलबा के लिए हिसाब किताब पर मबनी सोच और मस्नूई जहानत से मुतालिक एक नई दरसियात तैयार की है। इस पहल के मुतालिक बात करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि यह दरसियात पहले ही नाफिज कर दी गई है। उन्होंने मजीद मुतला किया कि एनसीईआरटी नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं जमात के लिए भी मस्नूई जहानत की निसाबी किताबें तैयार कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने कल के लिए राजस्थान में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। कल तक गुजरात, महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए साहली कर्नाटक में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहने की पेशगोई की है। इस दौरान मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 से 3 दिनों के लिए शिमाल मशरकी खत्ते, अंडमान और निकोबार जजायर और अरुणाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमेरिका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। सेंसेक्स 1456 पॉइंट्स या 1.92% की कमी के साथ 74,559 पर बंद हुआ। निफ्टी में 436 पॉइंट्स या 1.83% की कमी आई और यह 23,380 पर बंद हुआ। गैर मुल्की करेंसी की मार्केट में आज रुपए की कदर में 32 पैसे की कमी आई और एक डॉलर की कदर रिकॉर्ड कम होकर 95.63 रुपये हो गई। बैडमिंटन में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल मर्दों की डबल्स की भारत की सरकर्दा जोड़ी थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स के इफ्तिताही मुकाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 23-21, 21-10 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के ब्रायन जेरमी गॉन्टिंग और मोहम्मद हाइकल से होगा। बैंकॉक में इस साल बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट के लिए भारत ने 27 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता भेजा है। आईपीएल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय के टीवी के हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला अख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है, जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से 2 रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन।

कुछ एहसास शब्दों में नहीं ढलते, कुछ रिश्ते वक्त के साथ भी नहीं निकलते, और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे रूह को छू जाती हैं।

इश्क जब दुआ बन जाए तो लफ्ज़ों से सिर्फ खैरियत उतरती है, और जब किसी की खुशी अपनी खुशी से बढ़कर लगने लगे तो दिल बस यही कहता है।

इस गज़ल के साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम अंजुमन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

श्रोताओं नमस्कार। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ देवराज। श्रोताओं, यूं तो क्रिकेट किसी भी फॉर्मेट में खेला जाए, ये खेल सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है और न केवल आकर्षित करता है बल्कि लोग इसे दीवानगी की हद तक पसंद करते हैं। और जब बात आईपीएल की होती है तो भारत में ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मनोरंजक और व्यावसायिक मंच बनता है। ये टूर्नामेंट युवा भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के साथ खेलने, आर्थिक मजबूती और खेल को ग्लैमर के साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन करने का अवसर प्रदान करता है। आईपीएल न केवल क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करता है बल्कि पर्यटन, खानपान, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में भारी

0: राजस्व उत्पन्न करता है। ये भी कहा जा सकता है कि ये केवल क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि भारत में क्रिकेट की संस्कृति को बदलने वाली एक व्यावसायिक क्रांति है। क्यों है लोगों में और खिलाड़ियों में आईपीएल के प्रति इतना जुनून और इसका क्या महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, आइए जानते हैं शरद श्रीवास्तव से।
1: भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग आज की तारीख में न सिर्फ क्रिकेट बल्कि पूरे खेल जगत की एक बेहद लोकप्रिय और चर्चित इवेंट बन चुकी है, जिस पर पूरी दुनिया की उत्सुकता भरी निगाहें टिकी रहती हैं। और महज भारतीय क्रिकेट प्रेमी ही नहीं, पूरे क्रिकेट जगत में सभी खेल जानकार, विशेषज्ञ, पूर्व खिलाड़ी तथा आम खेल प्रेमियों के मध्य इस वक्त यदि चर्चा का कोई सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है तो वह आईपीएल ही है। वर्ष 2008 में अपने प्रारंभ के समय जिस आईपीएल की वैश्विक ब्रांड वैल्यू करीब $2 बिलियन यानी 1700 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वह आज बढ़कर लगभग 6 गुनी यानी $12 बिलियन हो चुकी है, जो कि भारतीय मुद्रा में तकरीबन 10,200 करोड़ रुपए बैठती है। वर्ष 2008 में बीसीसीआई ने कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमों के साथ आईपीएल के आयोजन की शुरुआत की थी। यह वो समय था जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 फॉर्मेट का चलन प्रारंभ ही हुआ था। उस वक्त तक विश्व स्तर पर क्रिकेट में मुख्यतः 5 दिन के टेस्ट मैच और 50 ओवर प्रतिपारी वाले एक दिवसीय मुकाबले ही लोकप्रिय हुआ करते थे। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठा था कि क्या T20 फॉर्मेट वाली आईपीएल व्यावसायिक रूप से अपने कदम जमा पाएगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यह सारी आशंकाएं निराधार साबित हुई। आईपीएल न केवल व्यावसायिक रूप से बेहद कामयाब साबित हुई बल्कि इसकी आशातीत सफलता ने पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट को भी लोकप्रियता के चरम पर पहुंचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आईपीएल की सफलता ने दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी व्यावसायिक कामयाबी की एक नई राह दिखाई और नतीजा यह हुआ कि आने वाले सालों में दुनिया के अन्य कई हिस्सों में भी आईपीएल की तर्ज पर प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीगों के आयोजन शुरू हो गए। इस तरह के कुछ प्रमुख टूर्नामेंटों में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इंग्लैंड की इंग्लिश क्रिकेट लीग, दक्षिण अफ्रीका की SA20, पाकिस्तान की PSL और वेस्टइंडीज की कैरेबियन प्रीमियर लीग के नाम लिए जा सकते हैं। इनके अलावा श्रीलंका, USA, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के क्रिकेट बोर्डों ने भी अपने यहाँ प्रोफेशनल T20 लीग के आयोजन प्रारंभ किए। ये अलग बात है कि इन तमाम लीगों में से अधिकांश व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई और कुछ सीजन के बाद बंद हो गई। दरअसल आईपीएल की जबरदस्त व्यावसायिक कामयाबी के लिए जिम्मेदार है इसका सुव्यवस्थित ढांचा और अनुभवी प्रोफेशनल टीम, जो कि मैदानों और क्रिकेटरों के प्रबंधन से लेकर प्रसारण, टिकट बिक्री, प्रचार और आर्थिक मुद्दों तक आयोजन के प्रत्येक पहलू को बड़े प्रभावी ढंग से संभालती है। इस सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि साल दर साल आईपीएल की प्रसिद्धि, लोकप्रियता और व्यावसायिक कामयाबी में बढ़ती ही जा रही है। आज यह न सिर्फ विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग बन चुकी है बल्कि दुनिया भर की तमाम प्रोफेशनल खेल लीगों में भी चौथे नंबर पर आ गई है। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आईपीएल ने इंग्लैंड की मशहूर फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2008 में 8 टीमों के साथ आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था। उस वर्ष शेन वॉन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब जीता था। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें कुल मिलाकर 5-5 बार आईपीएल चैंपियन बनने में कामयाब रही हैं और उनके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार आईपीएल खिताब जीता है। समय के साथ आईपीएल में उतरने वाली टीमों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, साथ ही टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि और विभिन्न टीमों द्वारा अपने प्रमुख खिलाड़ियों को दी जाने वाली अनुबंध राशि भी कई गुना बढ़ चुकी है। 2008 के पहले सीजन में जहां टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक बनने के लिए DLF समूह ने प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपए की बोरी लगाई थी, वहीं आज टाटा समूह ने 2024 से 2028 तक के 5 वर्षों के प्रायोजन अधिकार 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष में हासिल किए हैं। लेकिन आईपीएल की सबसे बड़ी खासियत यह है, अपनी लंबी कामयाब यात्रा के दौरान अब यह महज एक खेल टूर्नामेंट नहीं रहा है बल्कि एक बहुत बड़ा व्यावसायिक अवसर बन चुका है, जिसका लाभ असंख्य व्यक्तियों, कॉरपोरेट हाउसेस को होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी इससे कई रूपों में लाभान्वित हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की, जिनके लिए आईपीएल के जरिए से सर्वोच्च मंच पर अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका हाथ लगा। इस मंच पर सही वक्त पर चमक जाने वाले कई युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के द्वार भी खुलते देखे गए। और इनमें देशी और विदेशी दोनों ही तरह की प्रतिभाएं शामिल।

थी। विभिन्न टीमों द्वारा अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी अच्छी खासी रकम में अनुबंधित किए जाने की जो परिपाटी आईपीएल ने शुरू की, उसकी बदौलत क्रिकेट को करियर बनाने का ख्वाब देखने वाले युवाओं की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। युवा प्रतिभाओं के अलावा खेल से अवकाश ले चुके पूर्व दिग्गजों के लिए भी आईपीएल ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। ऐसे तमाम नामचीन खिलाड़ी आज कमेंटेटर, तकनीकी विशेषज्ञ

0: कमेंटेटर, तकनीकी विशेषज्ञ, कोच के रूप में विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जुड़कर अपनी आजीविका चला पा रहे हैं। अब बात करते हैं देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर आईपीएल के प्रभाव की। एक प्रमुख अखबार के सर्वे के मुताबिक आईपीएल के जरिए से देश में लगभग 12.5 लाख रोजगारों का सृजन हुआ है। इनमें होटल, पर्यटन, टैक्सी, खानपान तथा विज्ञापन सेक्टर में बने अवसर शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अप्रैल और मई के 2 महीनों में, जबकि आईपीएल का सीजन अपने पूरे शबाब पर होता है, उस दौरान देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। सीजन के दौरान विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के लिए खेल रहे विदेशी स्टार खिलाड़ियों के प्रशंसक उनका प्रदर्शन देखने के लिए निश्चित रूप से भारत पहुंचते हैं। यदि देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में आईपीएल के प्रत्यक्ष योगदान की बात करें तो अब तक आईपीएल प्रबंधन, आयकर व जीएसटी के रूप में भारत सरकार को करीब 3,500 करोड़ रुपए की कर राशि अदा कर चुका है। इसे भी आईपीएल के एक सकारात्मक योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आईपीएल आज की तारीख में महज एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक व्यापक जीवन दृष्टि अर्थात परसेप्शन की शक्ल ले चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर तो वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभाव डाल ही रहा है, साथ ही इसके अनूठे बिजनेस मॉडल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी समृद्धि की एक नई राह दिखाई है।
1: श्रोताओं, खेल न केवल शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं बल्कि मानसिक मजबूती के साथ व्यक्तित्व विकास में भी ये योगदान करते हैं। इनसे ऊर्जा का सदुपयोग होता है और आजकल खेल एक शानदार करियर विकल्प भी बन गया है जो युवाओं को न केवल नाम बल्कि अच्छी आय भी प्रदान करता है। बस आवश्यकता है प्रतिभाओं को खोजकर एक मंच देना और कुशल प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जनपद मथुरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, आइए सुनते हैं जिला खेल अधिकारी राकेश यादव से की गई ये बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
2: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जिला खेल कार्यालय से जुड़कर जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
3: हमारे यहाँ सुबह और शाम, सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक प्रशिक्षण का कार्य चलता है, जिसमें हमारे पास 8 कोचेज हैं। फुटबॉल, हॉकी, फेंसिंग, जूडो, बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, ये सारे और स्विमिंग के हम लोग 8 लोग हैं। तो बच्चे आते हैं यहाँ रोज प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने यहाँ चले जाते हैं और उनको जितने भी हमारे कोचेज हैं सब बहुत डिसिप्लिन और अनुशासित हैं। बच्चों को स्किल पर और उनकी फिजिकल फिटनेस पे काम किया जाता है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं।
2: और वर्तमान में हमारे जिले के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों से संबंधित किस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं?
3: हमारे पास सभी ग्राउंड आधुनिक तरीके से बने हुए हैं, जैसे फेंसिंग का है उसमें पिस्ट वगैरह है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। जूडो है, जूडो का हॉल है, मैट्स हैं। कुश्ती है, कुश्ती का हॉल है, मैट्स हैं। तो सारे उन मानकों पर है जो एक बाहर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। तो वो हमारी सरकार साथ में बहुत अच्छे सहयोग कर रही है, खेलों को आगे बढ़ा रही है। खेलों में बहुत सारे पुरस्कार सरकार के द्वारा, सरकार नौकरियां भी खेल कोटे से देने लगी है, ये सब है।
2: जिला खेल कार्यालय से खिलाड़ी किस प्रकार से जुड़ सकते हैं इसके बारे में और बताएं।
3: बड़ी सरल प्रक्रिया है, हमारे यहाँ जो कोचेज हैं 8 खेल के या और अन्य खेल के, तो उनमें आता है बच्चा एक 18 साल से नीचे है वो 210 रुपये उसका पूरे साल का कार्ड बनता है। जो हमारे यहाँ फीस एक है सरकार द्वारा निर्धारित, उससे लेके 210 रुपये में पूरे साल का एक कार्ड वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने लगता है। सुबह शाम आके वो कार्ड आइडेंटिटी कार्ड रहता है, मिनिमम फीस है, आ सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करा कि जिस खेल में इच्छुक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उस पर फिर हमारे कोचेज उस बच्चे पे काम करते हैं, काम करके वो बच्चा हमारे जिले के लिए, हमारे मंडल के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए खेलता है।
2: जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर आते हैं सीधा अपना यहाँ जुड़ सकते हैं या वो किसी स्कूल से संबंधित होना चाहिए?
3: ऐसा कुछ नहीं है किसी स्कूल से, लोकल बच्चे गार्जियंस आते हैं अपने घर से बच्चे लाते हैं। जरूरी नहीं है कि स्कूल का बच्चा है, सारे बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं तो वो इंडिविजुअल गार्जियंस ले आता है। कोई स्कूल नहीं आ रहा है, उनकी संख्या नहीं हो रही है तो वो सीधा आ सकता है। तो ऐसी

0: कोई उसमें पाबंदी नहीं है।
1: वर्तमान में किस खेल में विशेष रूप से खिलाड़ियों की रुचि देखने को मिल रही है?
0: यहाँ जो बेल्ट है हमारी मथुरा की या मथुरा के आसपास की, वो कुश्ती वाली है। तो कुश्ती यहाँ का एक समझ लीजिए जनपद का खेल है, यहाँ के लोकल खेल है। तो कुश्ती में ज़्यादा बच्चों की रुचि रहती है। तो यहाँ हमारा खेलो इंडिया का सेंटर भी कुश्ती का ही चल रहा है, तो उसमें बच्चे लाभान्वित होते हैं, खेलने जाते हैं।
1: और इसके अलावा और किन किन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है?
0: एथलेटिक्स में है, फुटबॉल में है, सारे बच्चे, जूडो में है, बैडमिंटन में भी है, सारे खेलों में बच्चे पर्याप्त हैं।
1: यहाँ पर स्टेडियम में एक तरणताल बना हुआ है, तो उसमें क्या विशेष सुविधा है, क्या उसके लिए यहाँ विशेष कोच रखे हुए हैं?
0: बिल्कुल, स्विमिंग का मैं खुद हूँ, तो मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ। लाइफ गार्ड है, उसकी प्रक्रिया आजकल में पूरी हो जाएगी, रेगुलर चालू हो जाएगा। अभी भी स्विमिंग पूल चल रहा है, उन बच्चों को एडमिशन है जो बच्चे स्विमिंग जानते हैं या स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, उन सारे बच्चों को हम एडमिशन दे रहे हैं और चला रहे हैं स्विमिंग पूल।
1: तैराकी में भी क्या कुछ विशेष रुचि देखने को मिल रही है?
0: हाँ, तैराकी में जो बच्चे हैं वो आते हैं, अपने कॉम्पिटिशन में भाग भी लेते हैं और अपना प्रैक्टिस करते हैं।
1: सरकार के द्वारा खेलो इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ हमारे जनपद के खिलाड़ियों को किस प्रकार मिल रहा है?
0: पूरे इंडिया स्तर पर खेलो इंडिया भारत सरकार की स्कीम है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है पूरे देश में। तो हर एक जनपद में अलग अलग खेल है। हमारे यहाँ कुश्ती का चयन हुआ है, जो कुश्ती खेल है वहाँ 30 बच्चों का चयन किया जाता है और उन 30 बच्चों को रेगुलर अभ्यास किट वगैरह हमारी सरकार द्वारा दिलाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके बच्चों का पूरा ध्यान दिया जाता है।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन उनको एक सही मंच नहीं मिल पाता है। तो ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में भी खेलों को लेकर क्या कोई विशेष योजना है?
0: जी बिल्कुल, विशेष योजनाएं इस बार जो विधानसभा स्तर पर विधायक खेल स्पर्धा, जिले स्तर पर सांसद खेल स्पर्धा, वो ही उसी का भाग है जो ग्रामीण अंचलों से जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वो पहले विधानसभा स्तर पर भाग लेंगे, फिर सांसद खेल स्पर्धा वे जिले स्तर पर, और इसके बाद जोन स्तर पर आगरा में जोन होगी, फिर इसके बाद स्टेट होगी। ऐसे उन बच्चों को अवसर दिए जाते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए।
1: मथुरा जनपद में मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम के अलावा अन्य जगह भी स्टेडियम वगैरह या अन्य सुविधाएं खेलों से संबंधित मौजूद हैं?
0: जी, जैसे हमारा एक समकक्ष विभाग है, हम लोग मिलके काम करते हैं, जिला युवा कल्याण अधिकारी, वो माट में उनका स्टेडियम है, कोसी में है, एक शेरगढ़ में है, 3 उनके बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनके व्यूज वगैरह हैं तो उसको देखते हैं।
1: जो खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन वो प्रतिभावान हैं, तो ऐसे खिलाड़ी अगर खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या सरकार द्वारा उन्हें कुछ सहायता या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है?
0: जी बिल्कुल, कराई जाती है जूनियर स्तर पे, सब जूनियर स्तर पे और सीनियर स्तर पे। हमारे यहाँ एक क्लब क्रीड़ा कोष की व्यवस्था है, जो खेल साथी पोर्टल पे अच्छे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट से लेके 6th प्लेस तक पोजीशन है, वो राष्ट्रीय स्तर पे है और प्रतिभावान है, अच्छे खिलाड़ी हैं, गरीब हैं, उनको एक क्लब क्रीड़ा कोष के माध्यम से आर्थिक सहायता उनके उपकरण खरीदने पर, उनके भोजन पर, उनके अभ्यास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा एक कोष बनाया गया है, उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और यहाँ से 4 तीरंदाजी में बच्चे हैं और 2 कुश्ती में हैं, उनको लाभ अभी तक हम 14 लाख रुपए दे चुके हैं तीरंदाजी पे और लगभग 4 लाख रुपए कुश्ती पर।
1: इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार से भी कुछ सहायता मिलती है?
0: बिल्कुल, जब बच्चा अच्छा अचीव करने लगता है तो छात्रवृत्तियाँ हैं, खिलाड़ी को पुरस्कार राशि है जो हमारा विभाग सब देते हैं।
1: आगे आने वाली कुछ विशेष बड़ी प्रतियोगिताओं के बारे में बताना चाहेंगे?
0: हम इस साल 26-27 में बहुत सारी यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, बहुत सारे जिले और मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी, तो उनमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कैसे कराना है।
1: यहाँ जो खिलाड़ी जुड़े हुए हैं तो समय समय पर उनको प्रतियोगिताओं के बारे में और ट्रायल्स के बारे में सूचित किया जाता है।
0: बिल्कुल, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से खिलाड़ियों का जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक जनमानस तक हमारी बात पहुंचे, सरकार की बात पहुंचे। सरकार खेल के रूप में बड़ा काम कर रही है, तो वो बच्चे पार्टिसिपेट करें और प्रतियोगिताओं में भाग लें।
1: ऐसे अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर देते हैं और उनको खेलों से दूर रखते हैं? देखा जा रहा है कि आजकल खिलाड़ी जो हैं खेलों में भी बड़ा देश का नाम रोशन कर रहे हैं और

0: अपना अच्छा कैरियर बना रहे हैं, तो क्या संदेश रहेगा इसको लेकर आपका?
1: खेल में अनुशासित रहें बच्चे और अपना बेस्ट करें, ये नहीं देखें कि ये आइडियल, सबके आइडियल होते हैं, उनके भी आइडियल हैं, उन आइडियल को पकड़ें। जैसे आप एथलेटिक्स के हैं तो पीटी उषा वगैरह या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, हमारे थ्रोअर हैं अभी चोपड़ा जी, उनका इतिहास देखें कि इतना कितना ये वर्क करते थे, जब ये सफल हुए तो उस पर फोकस करना पड़ेगा। बच्चों को जो ट्रेनिंग करने वाले हैं तो वो जरूर वो अचीव करेंगे जो उनने किया। नीरज चोपड़ा ने जो अचीव किया, हमारी उड़न परी कहलाने वाली पीटी उषा थी, उनने बहुत अचीव किया। हमारे नामी ग्रामी आप जानते ही हैं, दद्दा ध्यानचंद का नाम सुना होगा आपने, वो तो महान हस्ती थे। उनके जन्मदिवस पे हम लोग 29 अगस्त को बढ़िया खेल डे बनाते हैं और बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं।

0: और अब श्रोताओं खेल की सुर्खियों के साथ हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
1: खेलों में सबसे पहले बात खेल हॉकी की। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 समारोह में महिला टीम की स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी नवनीत कौर और पुरुष टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 1980 के मास्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य और पूर्व कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में हार्दिक के अलावा सुखजीत, संजय और अभिषेक शामिल हैं। 2025 की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब बलजीत सिंह पुरस्कार विधु देवी खारी बम को दिया गया, जबकि हॉकी इंडिया प्रगट सिंह सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार संजय ने जीता। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अजीत पाल सिंह पुरस्कार सुमित को और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का धनराज पिल्ले पुरस्कार सुखजीत सिंह को मिला। सभी खिलाड़ियों को 5-5 लाख का चेक दिया गया। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 48 टीमें तैयार हो गई हैं। पिछले 2.5 साल से क्वालिफाइंग प्रक्रिया चल रही थी। उत्तरी मेक्सिको के मॉन्टरी में मंगलवार को खेले गए अंतर महाद्वीपीय प्लेऑफ में इराक ने बोलिविया को 2-1 से हराकर 48वां और अंतिम स्थान हासिल किया। यह मैच बोस्निया हर्जेगोविना की यूरोपीय प्लेऑफ में 4 बार के चैंपियन इटली पर पेनल्टी शूटआउट में उलटफेर भरी जीत के कुछ घंटे बाद खेला गया। क्वालिफाइंग के आखिरी दिन यूरोप की 8 टीमें 4 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाली एक अन्य टीम कांगो थी, जिसने मेक्सिको में जमैका को 1-0 से हरा दिया। स्वीडन, तुर्की और चेक गणराज्य तीनों ने यूरोपीय प्लेऑफ में क्वालिफाइंग किया है। स्वीडन ने पोलैंड को 3-2 से, तुर्की ने कोसावा को 1-0 से, चेक गणराज्य ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। विश्व कप 11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। यह पहला अवसर होगा कि विश्व कप फुटबॉल में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने मेलबर्न में जबरदस्त कारनामा किया। वे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के चैंपियन बन गए हैं। 22 साल के अल्कराज ने पुरुष एकल के फाइनल में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-2, 7-5 से हराया। अल्कराज का यह 7वां ग्रांड स्लैम है। पहली बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रचा था। सर्बिया के जोकोविच का 25वां ग्रांड स्लैम जीतने का सपना टूट गया। हालांकि जोकोविच के पास हर रिकॉर्ड है। उन्होंने रोजर फेडर और राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास सेरेना विलियम्स से एक और अधिक खिताब है। सेरेना के नाम 23 एकल खिताब हैं। जोकोविच टेनिस के दमदार खिलाड़ी रहे हैं। कोर्ट पर उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। उनकी सर्विस और बैकहैंड ड्राइव देखते ही

0: बनता है। जोकोविच से आने वाले समय में भी बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा। भारत में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी और क्रिकेट को जरूर शामिल किया जाएगा, जबकि कबड्डी, योगासन, खो खो और मलखम जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों में से दो को जगह दी जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे की अध्यक्षता में इसके प्रतिनिधिमंडल ने पिछले सप्ताह मेजबान शहर अहमदाबाद में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। हमारे पारंपरिक खेलों में से कबड्डी, मलखम, खो खो और योगासन में से दो को शामिल करने का प्रयास है। ग्लासगो में इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में बजट में कटौती के कारण क्रिकेट और हॉकी को शामिल नहीं किया गया है। खेल मंत्री ने कहा कि भारत में होने वाले खेलों में इसकी वापसी होगी। भारत में अब खेलों को प्राथमिकता में रखा जा रहा है। भारत में 2010 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। भारत में फॉर्मूला वन रेस की वापसी होगी। इसके लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत में 2013 के बाद रेस नहीं हुई है। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के 10 वर्षीय आरित कपिल स्पेन के मेनारका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के अंतिम दौर में ऑस्ट्रेलिया के सैमुअल असाका के साथ ड्रॉ खेलकर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर आईएम नाम हासिल करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आरित ने यह उपलब्धि 10 साल 7 महीने की उम्र में हासिल की। प्रतियोगिता में आरित का सबसे शानदार प्रदर्शन अर्जेंटीना के 12 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ओरो के खिलाफ रहा, जिन्हें शतरंज की दुनिया का मेसी कहा जाता है। टिपे सिगेमन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट के 31वें संस्करण में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने शानदार शुरुआत करते हुए दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पहले दौर में ड्रॉ पर रोक दिया। मैच के दौरान कार्लसन ने क्वीन साउंड पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने सटीक बचाव करते हुए 24वीं चाल चलकर पास्ट प्यादे के खतरे को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े को सक्रिय करते हुए स्थिति को सरल बनाया। रुक के आदान प्रदान के बाद सफेद मोहरों के पास जीत का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचा और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ये टूर्नामेंट क्वालिफाइंग शतरंज के सबसे मजबूत आयोजनों में से एक माना जाता है। इसमें 2024 के विजेता नॉर्डरबेक, 2021 के चैंपियन जॉर्डन वान फॉरेस्ट और स्वीडन के नंबर एक खिलाड़ी निल्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी खिताब के लिए मुकाबला कर रहे हैं। क्रिकेट के खेल में आईपीएल का 19वां संस्करण चल रहा है। ये टूर्नामेंट मई के अंत तक चलेगा। इस समय आईपीएल टूर्नामेंट अपने रोमांचक दौर में चल रहा है। प्रत्येक टीम प्लेऑफ में आने के लिए संघर्ष कर रही है। टूर्नामेंट में अब तक 50 से ज्यादा मैच हो चुके हैं। इस समय में खेले जा रहे सभी टीमों के सभी मुकाबले टूर्नामेंट के लिए अहम माने जा रहे हैं। अभी तक पहले नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद, दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स, तीसरे स्थान पर आरसीबी और चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमें हैं। इस बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने सभी को प्रभावित किया है। सूर्यवंशी ने आकर्षक क्रिकेट खेली है। सूर्यवंशी बहुत जल्द भारतीय टीम में खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा, संजू सैमसंग, रिंकू सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स की दो बार मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आईपीएल क्रिकेट अपने चरम पर है। कौन जीतेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आईपीएल क्रिकेट भारतीयों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। खेल जगत में महीना उपलब्धियों और संघर्ष से भरा रहा। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: श्रोताओं, खेल दर्पण के आज के इस अंक में बस इतना ही। आलेख वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुत करता थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है अजय कुमार के स्वर में राग जोग में ध्रुपद गायन।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विदुषी किशोरी अमोनकर का गायन, राग है संपूर्ण मालकौंस। तबला संगतकार हैं बालकृष्ण अय्यर और सारंगी पर हैं उस्ताद सुल्तान खान।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी किशोरी अमोनकर का गायन। तबला संगीतकार थे बालकृष्ण अय्यर और सारंगी पर थे उस्ताद सुल्तान खान। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक

0: अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशियाई की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has